मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप सभी को आयुष तोमर का नमस्कार।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना की शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस देशकान के साथ।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। अभी आपने सुना अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ में ये भजन। कार्यक्रम में लीजिए अब प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष किशोरी अमोनकर की आवाज़ में ये अगला भजन।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है मन्ना डे व साथियों की आवाज़ में

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम वंदना अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम वंदना का समापन हम कर रहे हैं लता मंगेशकर के आवाज़ में इस भजन के साथ।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत विषय है पशु पक्षी संरक्षण और वाचन स्वर तुलिका शर्मा का है।
1: हमारी लापरवाही बहुत से जीव जंतुओं के संकट का कारण बना हुआ है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लोग जानते हैं कि यहाँ पास में घाटी गांव में सोन चिरैया अभयारण्य बना हुआ है। सोन चिरैया जो इस क्षेत्र की शान थी, लोग प्रेम से अपने घर के छोटे बच्चों को, खासतौर पर लड़कियों को सोन चिरैया कहकर बुलाते थे। यही सोन चिरैया इतने बड़े संकट से जूझ रही है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यदि आंकड़ों की माने तो पूरी दुनिया में इस समय सिर्फ 150 सोन चिरैया का अस्तित्व बचा है और इनमें से अधिकांश राजस्थान में हैं। राजस्थान के जनजातीय कबीले इनकी रक्षा प्राणपण से करते हैं। सिर्फ अभयारण्य बनाकर वहाँ पशु पक्षियों के स्वतंत्र विचरण को प्राथमिकता देना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अभयारण्य के आसपास जो गांव हैं, जो शहर हैं, वहाँ भी बहुत से प्रयास करने होंगे लोगों को जागरूक करने के कि ये पशु पक्षी हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि इनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा हम हैं। सोन चिरैया, जिसे राजस्थान में गोडावण कहते हैं, इस समय स्थिति ये है कि प्रोजेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इन पक्षियों को खाने के लिए शिकार किया जाता है। ये पक्षी चूंकि ज़मीन पर अपने अंडे देते हैं और घास के मैदान कम होते जा रहे हैं, तो इन्हें प्रजनन के लिए भी स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ये तो पक्षी हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि किसानों के मित्र ही हैं। लेकिन बाघ और तेंदुए जैसे जानवर, जो शिकारी जानवर हैं, इनसे मनुष्य खौफ की वजह से भी दूर रहना चाहता है। यकीन जानिए श्रोता साथियों, ये भी हमसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इनके आवास पर हम धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं, तो ये इनकी मजबूरी है कि ये हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं। मुंबई ऐसा शहर है जिसके परिसर में राष्ट्रीय उपवन है। इस हरियाली से जहां आम आदमी को सुकून मिलता है, वहीं भू माफिया इसे मुद्दे की तरह उछालते हैं। अक्सर इस जंगल में जानबूझकर आग लगाई जाती है कि इसका वन क्षेत्र घट सके, जिससे आगे इसमें एक आईटी पार्क बनाया जा सके। सोचकर देखिएगा, क्या हमारे लिए आईटी पार्क आवश्यक है या धरती के ये फेफड़े बचे रहें, ये आवश्यक है। मनुष्य के लिए प्रकृति की हर देन आज संसाधन बन गई है, रिसोर्स बन गई है। हम ये सोचते हैं कि इसका फायदा उठाना हमारा हक है, लेकिन इस हक के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हमारे हो जाते हैं, जिनको यदि हमने पूरा नहीं किया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। श्रोताओं, महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति सदियों से तेंदुओं के साथ रहती है। उनकी रक्षा करते हैं उनके वन देवता, जिन्हें वो वाघोबा कहते हैं, ऐसे भगवान जिन्हें बाघ या तेंदुए के रूप में दर्शाया जाता है। कभी कभार उनकी भेड़ बकरियों को तेंदुआ उठा भी लेता है। ऐसा घटित होने पर वो उस जानवर को पकड़ने या मारने की नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कि उन्हें भी अपने पेट पालने का और जीने का हक है। हमने गोडावण की बात की थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की थी। राजस्थान की बिश्नोई जनजाति उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी तरह दूसरे अन्य आदिवासियों के रहन सहन, सोच और आस्था की भी हम सराहना करते हैं। कर्नाटक के हलक्की जनजाति की तुलसी गौड़ा का उदाहरण हमारे सामने है। 12 साल की उम्र से वो वन विभाग की मदद कर रही हैं। इन्हें आज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। 30,000 पेड़ उन्होंने लगवाए हैं या फिर ऐसे संरक्षित पौधों की प्रजाति की रक्षा की है। पेड़ों के प्रति इस अगाध स्नेह को देखते हुए और उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। विकास, धन और पर्यावरण के महायुद्ध में तुलसी गौड़ा एक सैनिक से कम नहीं है। क्लाइमेट चेंज पर हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन ये सारी बहसें बड़े बड़े मंचों पर वातानुकूलित कमरों में बैठकर की जाती हैं। बंजर, वीरान और सुनसान धरती पर जो काम करते हैं, उन सभी सेना नायकों को

हमारा सैल्यूट है। आप अपने स्तर पर प्रयास करें पर्यावरण को संरक्षित करने का। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत विषय था पशु पक्षी संरक्षण और वाचन स्वर तूलिका शर्मा का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज की ये संगीतमय प्रस्तुति।

रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

0: ये थी श्री रामचरितमानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत लीजिए सुनिए ये सामयिक चर्चा, जिसका विषय है जैविक खाद कैसे बनाएं। उक्त विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं होती हैं, वहां पर हमारी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन लिया जाए। फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भी अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जिस अनुपात में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके अनुरूप हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही है। हमारी फसलों की पैदावार एक निश्चित पैदावार पर रुक जाती है। रासायनिक खादों की कीमत भी अधिक होती है, जिससे फसल उत्पादन का लागत व्यय अधिक बढ़ जाता है। खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए और लागत व्यय कम करने के लिए अपने फार्म पर जैविक खादें बनाएं। जैविक खाद बनाने के लिए पौधों की सूखी पत्तियां, धान का पैरा, पौधों की जड़ें और फसलों के अवशेष प्रयोग में लाए जाते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए टांका तैयार करते हैं। टांका धरातल के ऊपर बनाएं। टांकों का आकार 12 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा बनाते हैं। टांका की लंबाई और ऊंचाई आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं, लेकिन टांका की चौड़ाई 5 फुट से अधिक न रखें, क्योंकि टांका की चौड़ाई 5 फुट से अधिक रखने पर वायु का संचरण ठीक का नहीं हो पाता है। टांका बना लेने के बाद पहले टांके के धरातल पर कूड़े करकट, पत्तियों, सड़े गले कचरे की 9 इंच मोटी परत लगा देते हैं और इसमें जैविक क्रियाएं कार्य करने के लिए इस परत को पानी से नम कर देते हैं। उसके बाद गोबर का पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद राख फास्फेट का बुरकाव करते हैं। राख फास्फेट का बुरकाव कर देने के बाद खेत की मिट्टी की हल्की परत लगा देते हैं, क्योंकि खेत की मिट्टी में लाखों की संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं, जो टांका के अंदर जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। इसी तरह टांका भरते जाते हैं और टांके में 10 परत लगा देते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि यह टांका भरने का कार्य 1-2 दिन में पूरा हो जाए। टांका भरने के बाद जैविक क्रियाएं कम हो जाती हैं और टांके का तापमान भी कम होने लगता है। उस समय पीएसवी कल्चर और एजिटोबैक्टर का घोल बनाकर खाद से भरे टांकों में सब बल से गड्ढे करके उनमें भर देना चाहिए। पीएसवी कल्चर और एजिटोबैक्टर के घोल से टांका में जो राख फास्फेट डाला जाता है वह घुलनशील अवस्था में हो जाता है। इस तरह यह खाद 90 दिन में बनकर तैयार हो जाती है और इस खाद को फसल में प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खादें रासायनिक खादों की अपेक्षा सस्ती भी होती हैं और इनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होती हैं। अपने फार्म पर आसानी से जैविक खाद बना सकते हैं। रासायनिक खादों के लगातार प्रयोग करने से खेतों में कड़ापन आ जाता है, जिससे मिट्टी की यौगिक संरचना बिगड़ जाती है। जैविक खादों से मिट्टी की यौगिक संरचना बनती है और अधिक समय तक पानी धारण करने की क्षमता विकसित होती है। मिट्टी में भुरुरापन आ जाता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास अधिक होता है। पौधे अधिक गहराई से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और दाने सिडोल और चमकदार बनते हैं। जैविक खादों का प्रयोग करने से रासायनिक खादों पर किए जाने वाले खर्च में कमी की जा सकती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है। खेतों, पशुशाला और घरों के निरर्थक जीवांश अवशेषों का समुचित उपयोग हो जाता है। खादें अच्छी तरह पकी होने के कारण दीमक और खरपतवारों की रोकथाम में कमी संभव है। जैविक खादें बनाएं और प्रयोग करें। जैविक खादों का फसलों में प्रयोग करना काफ़ी लाभदायक है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत आपने सुनी ये सामयिक चर्चा, जिसका विषय था जैविक खाद कैसे बनाएं, और उक्त विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
1: धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं। प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 पिटारा में सुनिए।
5: आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
6: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार सलमान खान।
4: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
8: 8700001-4242।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, लीजिए सुनिए संस्कृत और हिंदी में समाचार। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
9: सभी वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की

प्रातः 7:20 पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम कहानी। शीर्षक होगा पुनर्जन्म और कहानीकार होंगी स्वास्थी मालवीय। प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से होगा। प्रातः 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। कलाकार होंगे गौरी पंडित। प्रातः 9:00 आप सभी के लिए प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। प्रातः 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कलाकार होंगे कमल कामले और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वायलिन पर राग गुर्जरी तोड़ी। प्रातः 10:05 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा।

प्रातः 11 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 12 बजे आप सभी के लिए प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 12:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से सुन सकेंगे आप कार्यक्रम संग्रहालय से। दोपहर 1 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति ग्वालियर जिले की होगी। चर्चा के विषय होंगे मानव सभ्यता के विकास में स्त्री का महत्व और बच्चों में डालें पंचुअलिटी के संस्कार, साथ ही साथ जल संरक्षण की शुरुआत घर से। दोपहर 1:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोक संगीत, प्रस्तुति ग्वालियर जिले की होगी, कलाकार होंगी अर्चना जाटव। दोपहर 1:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा, प्रस्तुति ग्वालियर जिले की होगी, कलाकार होंगी स्मिता घांगरेकर। दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से 4:58 तक आप आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से सुन सकेंगे समस्त कार्यक्रमों का प्रसारण।

0: 5:02 पर आप सुन सकेंगे युववाणी कार्यक्रम। प्रस्तुति ग्वालियर जिले की होगी। चर्चा के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पर भारत का भारत पर प्रभाव और प्रधानमंत्री द्वारा जनता से अपील, साथ ही साथ भारतीय ऊर्जा संरक्षण। 5:33 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। 6:00 प्रस्तुत रहेगा NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। 7:20 पर कार्यक्रम चौपाल आप सभी के समक्ष आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रस्तुत किया जाएगा। 8:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा। इसी के साथ हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब यहीं संपन्न होती है।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधु

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। विश्व के नेताओं ने दी बधाई। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को हराया। अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक 4,399 दिनों का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत 12 से 18 जून 2026 की अवधि में जिले के प्रत्येक विकासखंड नगरीय निकाय मुख्यालयों पर जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे। तेलंगाना की अदालत में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। भाजपा की शिकायत पर यह कार्यवाही राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी ने की है। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की बैठक भी होगी। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों तथा सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने फर्जी खातों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय, पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा और वसूली तंत्र, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्मों का बेहतर प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली में अधिक जवाबदेही, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी सुझाव दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर

0: AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पुरुष क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया। रंगिरी दम्बुल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। सभी मैच दम्बुल्ला में खेले जाएंगे और फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के शासकीय संभागीय आईटीआई नंदानगर में 11 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी जिले में संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। शिवपुरी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 6 साल पूरे होने के अवसर पर 1 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आगर मालवा जिले के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। देने के उद्देश्य से 12 से 18 जून तक विकासखंड और नगरीय निकाय स्तर पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित हमारे शिक्षक ऐप प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीकी रूप से सक्षम बना रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है पुनर्जन्म। कहानीकार हैं स्वाति मालवीय।
1: कहानियाँ किरदारों से बनती हैं या किरदार कहानी से? सभी किरदारों की कुछ ना कुछ कहानियाँ तो होती ही हैं, तो क्या सभी पर कहानी कही जा सकती है? या कहानी कहने के लिए कुछ विशेष होना आवश्यक है? किसी विशेष घटना या दुर्घटना का होना आवश्यक है? या साधारण परिस्थिति पर भी कहानी लिखी जा सकती है? क्या अरुणिमा जैसी साधारण महिला जो अपनी घर गृहस्थी में मग्न है, ना कोई महत्वाकांक्षा ना कोई सपने, इस कहानी का प्रमुख पात्र हो सकती है? और अरुणिमा की कहानी का सिरा कहाँ से पकड़ा जाए? ये कहानी अरुणिमा की दृष्टि से लिखी जाए या उसकी सखी मनस्वी की दृष्टि से? शायद इस कहानी की भूमिका तभी बन गई थी जब मनस्वी के जीवन में अरुणिमा और अरुणिमा के जीवन में मनस्वी आई थी। मनु रोज शाम की तरह आरू भाभी के सलीके से सजे हुए ड्राइंग रूम में चाय और गप्पों का आनंद ले रही थी और उनको मनाने में लगी थी। अरे आरू भाभी, खूब अच्छा नाटक है, चलो ना देखने। नहीं, आज नहीं चल पाऊंगी। डिनर वगैरह कैसे मैनेज होगा? इन्हें समय पर खाना चाहिए होता है ना, और हम लोग सो भी जाते हैं जल्दी, और आज इच्छा भी नहीं जाने की। आपकी क्यों इच्छा होने लगी? घर ही संभालो जिंदगी भर। मनु थोड़ी क्रोध में और थोड़ी निराश अपने घर चली आई। मनस्वी की अरुणिमा से पहली मुलाकात तब हुई जब मनस्वी नई नई शादी होकर नोएडा से ग्वालियर आई थी। मनस्वी पढ़े लिखे आधुनिक परिवार की क्रांतिकारी विचारों वाली, साहित्य में रुचि रखने वाली लड़की थी। मनु के पति आशीष पिछले 3 साल से ग्वालियर में कार्यरत थे। आशीष भी लिखने पढ़ने में अच्छी खासी रुचि रखता था। जब भी कोई विशेष कार्यक्रम, संगोष्ठी, कवि सम्मेलन या नाटक इत्यादि होते तो वो उसमें ज़रूर शिरकत करता था। इनके घर से कुछ ही दूरी पर रस्तोगी जी का घर था। रस्तोगी जी आशीष के ही विभाग में उसके सीनियर थे। दोनों में उम्र का फासला होने के बावजूद मित्रता थी। मनु ने रस्तोगी जी का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। एक दिन आशीष ने कहा, कल शाम को रस्तोगी जी ने डिनर पर बुलाया है, तुम्हें अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। अगली शाम नवयुगल का रस्तोगी जी के घर जाना हुआ। इतने करीने से सजा हुआ ड्राइंग रूम, हल्के हरे रंग के सोफ़ा कवर, ऑफ वाइट पर्दे, एक एक शोपीस सलीके से रखा हुआ, घर में गजब की सकारात्मक ऊर्जा। रस्तोगी भाई साहब ने गर्म जोशी से उन दोनों का स्वागत किया और अपनी दो प्यारी प्यारी बेटियों से परिचय करवाया, आद्विका टिक्की और आराध्या मिक्की, जो उस वक्त बमुश्किल 8-10 वर्ष की रही होंगी। बस एक ही मिनट बाद मिसेस रस्तोगी भी आ गई। मनस्वी ने अरुणिमा को देखा तो देखती ही रह गई। इतनी सुंदर, इतनी सौम्य, इतनी आकर्षक, ऐसी जादुई मुस्कान कि दिल के आर पार हो जाए। थोड़ी देर की औपचारिक बातचीत के बाद खाना परोसा गया। जितनी परफेक्ट उसकी प्रस्तुति, उतना ही स्वादिष्ट भोजन। कितने प्रेम और आग्रह से भाई साहब और भाभी ने खिलाया। मनस्वी तो अरुणिमा भाभी के तिलस्म में बंध गई। दिन बीतते गए, धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ती गई। मनस्वी कब मनु और अरुणिमा कब आरू भाभी हो गई, पता भी नहीं चला। दोनों के बीच नैसर्गिक प्रेम था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था, बस एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहजता। समय के साथ उनकी प्रगाढ़ता इतनी बढ़ गई कि करीब करीब रोज़ ही बैठकी होने लगी। लेकिन जब कभी वे दोनों परिवार बैठकर बातें कर रहे होते, तब अक्सर बातचीत में भाई साहब अपनी पसंद नापसंद को बताते और उसमें मैं शब्द का प्रयोग अधिक रहता। मुझे हल्के रंग पसंद हैं, मुझे समय का पाबंद होना पसंद है, मुझे सब चीज़ें करीने से लगी हुई व्यवस्थित पसंद हैं, आदि आदि। मनु को यह बात खटकती पर अरुणिमा कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। समय की पाबंदी, मूवी देखना, रेस्टोरेंट जाना, यहाँ तक कि पर्दे के रंग, बच्चों के कपड़े, सभी में भाई साहब की ही राय मानी जाती। भाभी, आपको याद भी है अपनी शादी से पहले की ज़िंदगी? आपको क्या पसंद था, आपकी क्या सोच थी, कभी भाई साहब ने पूछा? या बस घर गृहस्थी में खुद को स्वाहा कर देने का विचार है? देखो मनु, समय, परिस्थिति और उम्र जैसे जैसे बदलती है, खुद को बदलना ही होता है। कुल मिलाकर खुद की इच्छाओं को मार दो, त्याग की मूर्ति बन जाओ, बस सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो। मनु नाक फुलाते हुए बोली, तेरी नाक फूल जाती है गुस्से में, बड़ी प्यारी लगती है तब। आप मेरा मजाक बनाओ, है ना? आप रहने दो, नेम प्लेट पर नाम तक तो है नहीं आपका, आप जैसी महिलाओं के लिए ही लिखा गया है, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। देख मनु, जब बच्चे हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, तब माता पिता का सबसे पहला दायित्व है उनको अच्छा सुखमय माहौल देना। घर में शांति हो, सुकून हो, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अपना घर और अपने ही बच्चे हैं ना, उनके लिए कुछ भी करने में कैसा सेक्रीफाइस, कैसा कॉम्प्रोमाइज़। भाभी की शहद जैसी मीठी आवाज़ और उनका ठहर कर बात करना, बस इसी के आगे मनु विवश हो जाती। आरू भाभी की बातें उसे अच्छी तो लगती पर सही नहीं लगती। एक दिन मनु आरू भाभी के घर पहुंची तो देखा भाभी युद्ध तो युद्ध स्तर पर सफाई पर लगी हैं, स्टोर रूम साफ किया जा रहा है। गजब भाभी, आज तो खजाना बिखरा हुआ है, मैं कुछ मदद करा दूँ? हाँ करा देना, तू मुझे सामान झाड़ कर देती जा, मैं जमा दूंगी। दोनों काम में जुट गए कि तभी मनु को पुराना जमाने का सूटकेस दिखा। इसमें क्या है भाभी, क्यों संभाले हो इसे? कुछ खास काम का तो नहीं, मेरी शादी के पहले की कुछ चीज़ें हैं, भाभी ने कहा। ओहो, लव लेटर है क्या आशिकों के? मनु ने चूहल करते हुए कहा। भाभी का चेहरा लाल तो हुआ पर उन्होंने तुरंत संभाल लिया। कहाँ के लव लेटर, कहाँ के आशिक, ऐसा कुछ रोचक नहीं है इसमें। मैं तो देखूँगी, इसमें क्या है? बच्चों जैसी जिद की मनु ने। ऐसा कर, तू अभी इसे अलग ही रख दे, देख लेना सारे लव लेटर, तेरे जी को तसल्ली हो जाए। भाभी की हंसी खनकी। मनु ने सच में ही वो सूटकेस खोला जैसे कोई जादू का पिटारा खुल गया हो। भाभी की पुरानी तस्वीरें, कुछ सर्टिफिकेट्स, पुरानी डायरी, कुछ किताबें, ग्रीटिंग कार्ड, पुरानी चिट्ठियाँ, पुरानी पत्रिकाएं, अखबार की कटिंग, सब कुछ एक नई कहानी कह रहा था। मनु को आज महसूस हुआ कि वो आरू भाभी को तो अच्छे से जानती है, लेकिन अरुणिमा को जानने की तो उसने कभी कोशिश ही नहीं की। अरुणिमा तो कविताएं, कहानियां लिखा करती थी, एनसीसी की कैडेट हुआ करती थी, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेती थी, स्टेज पर नाटक भी करती थी, सहेलियों के साथ ठहाके लगाती थी। ये सब पिछले जन्म की बातें तो नहीं हैं? फिर कैसे पिछला सब मिटा दिया गया? हमेशा से सुनती थी महिलाओं के कई जन्म होते हैं, एक शादी के बाद, एक माँ बनने के बाद। तो क्या हर जन्म के साथ पिछला सब भुला दिया जाता है? लड़की के ससुराल पहुँचते ही सब बदल जाता है? ठहराव के भाव से इतर भाव दिखा आज भाभी के चेहरे पर। आज अरुणिमा दिखी मनु को, जो चहकते हुए अपनी डायरी, अपनी पुरानी तस्वीरें मनु को दिखा रही थी। देख, ये मेरे जन्मदिन की फ़ोटो है, खूब रौनक रहती थी मेरे जन्मदिन पर, इतना हुल्लड़ करते थे सब मिलकर। मनु एकदम रुआंसी हो गई। तुझे क्या हो गया? अरुणिमा ने मनु के चेहरे को छूते हुए कहा। ये आप हो भाभी, अब खुद को देखो, क्या मिल गया खुद का अस्तित्व ख़त्म करके? इतना पढ़ने लिखने और इतना कुछ करने का क्या फ़ायदा हुआ बताओ ज़रा? आप कभी अपने बारे में सोचते हो? यहाँ तक कि आपकी दिनचर्या भी रस्तों की भैंसा भी तय करेंगे। घर के हर कोने में उन्हीं की छाप है। आपको कभी लगता भी है कि ये आपका घर है? ये तस्वीरें फ्रेम होकर दीवारों पर लगी होनी चाहिए थी, ये किताबें बुक शेल्फ में सजी होनी चाहिए थी। इन बहुमूल्य यादों की जगह स्टोर रूम तो नहीं हो सकती? यादें तो मन में होती हैं, उन्हें दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। खुश रहने का, आदर्श जोड़े होने का अच्छा ढोंग कर लेती हो आप। इतनी आग क्यों है तेरे भीतर? भाभी ने उसी ठहराव से कहा। जैसा तुझे लगता है वैसा कुछ नहीं, जिसे तू ढोंग समझ रही है उसे समझदारी कहते हैं। आपकी बातें ठीक भी हों भाभी, फिर मैं तो ऐसे नहीं रह पाऊँगी। मेरे घर में जो निर्णय होंगे मेरे और आशीष दोनों के होंगे। ईश्वर करे जैसा चाहती है वैसा ही हो, बस खुश रहना हमेशा, भाभी ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा। दिन बीतते गए। एक दिन आशीष ऑफिस से आया और उसने मनस्वी को बताया कि रस्तोगी भाई साहब का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है। ट्रांसफ़र हो गया मतलब? कैंसिल नहीं करवाएंगे? नहीं, वो तो चाहते ही थे, बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनकी आगे की पढ़ाई वहीं बेहतर हो पाएगी, आशीष ने कहा। मनु आँख में आंसू भरे आरू भाभी के पास पहुँच गई। यह निर्णय भी भाई साहब का ही है ना? दिल्ली जाते समय भी भाभी यह कहकर गईं, खुश रहना मनु। और मनु ने कहा, थोड़ा अपने लिए भी जीना भाभी। 6 महीने लगे मनु को संभलने में। शुरू शुरू में खूब बातें होती थीं, लेकिन समय, दूरी और व्यस्तता तो अपना काम करती ही है। संपर्क हमेशा बना रहा पर अब उतनी नियमित बातें नहीं होती। मनु के 2 बेटे हो गए, मनु उनमें व्यस्त हो गई। मनु को अक्सर भाभी की बातें याद आती और अब समझ में भी आती। वे सोचती कि भाभी इस परिस्थिति में होती तो क्या करती। मनु धीरे धीरे उसी उम्र और उसी अवस्था में पहुंच रही थी जिस अवस्था में अरुणिमा तब थी। उधर अरुणिमा की बेटियां बड़ी हो गई थीं। आज टिक्की दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से स्नातक कर रही है और मिक्की IIT रुड़की से इंजीनियरिंग कर रही है। अरुणिमा अब यदा कदा साहित्यिक गतिविधियों में जाया करती है। वे उसे कभी कभी घर की फ़ोटो भी भेजती। अब नया बुकशेल्फ आ गया है, कुछ तस्वीरों को लिविंग रूम की दीवारों पर जगह भी मिल गई है। वो नई कहानियाँ लिख रही हैं।

0: कभी किसी पत्रिका में छप भी जाती हैं। मनु बहुत खुश होती ये सब देखकर। फिर आया अगस्त। इसी महीने में मनु का जन्मदिन आता है। मनु के लिए एक पार्सल आया है, उसमें एक उपन्यास है जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म, लेखक अरुणिमा। मनु तो मारे खुशी के कांपने ही लगी। ऐसे अनोखे उपहार की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके साथ एक पत्र भी था। कांपते हाथों से ही मनु ने वो पत्र खोला। एक एक शब्द मोती से पिरोया हुआ, वही इसने, वही ठहराव। और पत्र के अंत में यही लिखा था कि तू ना आई होती जीवन में तो ये उपन्यास भी कभी ना आता, जिसकी लेखिका अरुणिमा है। अरुणिमा रस्तोगी नहीं, खुश रहना मेरी मनु। अब मनु के पास तो इतने सुंदर शब्द भी नहीं थे ये बताने के लिए कि भाभी ने ही तो उसे जीवन जीना सिखाया, वो उन्हें किन शब्दों में धन्यवाद दे। अब ये कहानी का सिरा है या अंत? कुछ कहानियों के सिरे कभी पकड़ में नहीं आते।
1: अभी आप सुन रहे थे कहानी, शीर्षक था पुनर्जन्म, कहानीकार थी स्वास्ति मालवीय। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:32 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म परिणीता से। बोल स्वानंद किरकिरे के हैं, संगीत शांतनु मोइत्रा का है और आवाज़ है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। आइए सुनते हैं फिल्म परिणीता का ये गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम के अगले गीत को शामिल करने का, जिसको लिखा है नीलेश मिश्रा ने। संगीत प्रीतम दास का है और आवाज़ है पैपॉन और सुनिधि चौहान की। आइए सुनते हैं फिल्म बर्फी से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम में लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म बदलापुर से ये गीत, जिसको लिखा है प्रिया सराइया और दिनेश विजन ने। संगीत सचिन जिगर का है और आवाज़ आतिफ असलम की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये अगला गीत।

0: हर गुरुवार सुबह 8:30 से 9 बजे सुनिए स्वराज संस्थान भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में समय है अब कार्यक्रम के अगले गीत को प्रसारित करने का। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रंग दे बसंती से। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने, इस गीत में संगीत दिया है AR रहमान ने और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है AR रहमान और नरेश अय्यर ने। आइए सुनते हैं फिल्म रंग दे बसंती से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत फिल्म रंग दे बसंती का ये गीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं फिल्म बंटी और बबली के इस गीत के साथ, जिसको लिखा है गुलजार ने। संगीत शंकर एहसान लॉय का है और आवाज़ सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की है। आइए सुनते हैं फिल्म बंटी और बबली से कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये अंतिम गीत।

0: गुरुवार सुबह 8:30 से 9 बजे सुनिए स्वराज संस्थान भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः के 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही देर में किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
5: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
9: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
10: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
9: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया

0: सेमीकंडक्टर तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
2: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम साइरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964.

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज कलाकार हैं गौरी पंडित, और लीजिए सुनिए सुनिए इनकी आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज कलाकार हैं गौरी पंडित। कार्यक्रम सुगम संगीत अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं कलाकार गौरी पंडित की आवाज़ में इस गीत के साथ।

0: लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर कार्यकाल आज 4,399 दिनों का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। नई दिल्ली में आज एनडीए की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए कहा है कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। ये कार्यवाही राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तेलंगाना की अदालत में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक हुई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों तथा सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में जानकारी दी। और पुरुष क्रिकेट में कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोता साथियों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आयुष तोमर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिवस के बारे में जिसकी महत्वता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। जी हां, संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के बीच आपसी समझ, सम्मान

और सहयोग को बढ़ावा देना है। मानव सभ्यता का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं। इन संस्कृतियों ने अपने ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य और जीवन मूल्यों के माध्यम से मानव समाज को समृद्ध बनाया है। किंतु जब विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद की कमी होती है, तब गलतफहमियों और संघर्ष का जन्म लेना स्वाभाविक है। इसके विपरीत संवाद लोगों को एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की प्रेरणा देता है। आज का विश्व वैश्वीकरण के युग में प्रवेश कर चुका है। संचार और तकनीक ने देशों के बीच की दूरियां कम कर दी हैं। ऐसे समय में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच संवाद का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। संवाद हमें यह सिखाता है कि भिन्नता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक शक्ति है। विभिन्न विचारों और परंपराओं का आदान प्रदान मानवता को नई दिशा देता है। भारत इस दृष्टि से एक अद्भुत उदाहरण है। हमारी संस्कृति सदियों से वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत पर आधारित रही है। भारत ने हमेशा विविधता में एकता का संदेश दिया है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, रीति रिवाज और जीवन पद्धतियाँ होने के बावजूद समाज सौहार्द और सहयोग के साथ आगे बढ़ना स्वाभाविक है। यही भावना सभ्यताओं के बीच संवाद की मूल आत्मा है। संवाद केवल देशों के बीच ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों, समुदायों और पीढ़ियों के बीच भी होना आवश्यक है। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं और अपने विचार सम्मान पूर्वक रखते हैं, तब विश्वास और समझ का वातावरण बनता है। यही प्रक्रिया शांति, सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव की आधारशिला है। आज विश्व अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी, हिंसा, असमानता और सामाजिक विभाजन। इन समस्याओं का समाधान केवल एक देश या एक संस्कृति के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए सभी देशों और सभ्यताओं को मिलकर कार्य करना होगा। आपसी संवाद और सहयोग के माध्यम से ही हम एक बेहतर और सुनिश्चित रूप से सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। युवा पीढ़ी की भूमिका भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवाओं को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने, उनका सम्मान करने और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। शिक्षा, साहित्य, कला, संगीत और डिजिटल माध्यम इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में संवाद, सहिष्णुता और सम्मान के मूल्यों को ज़रूर अपनाएंगे। हम विविधताओं को स्वीकार करेंगे और मानवता के साझा हितों को सर्वोपरि रखेंगे। यही सच्चे अर्थों में सभ्यताओं के बीच संवाद की भावना है और सही रूप से यही विश्व शांति का मार्ग भी है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर और आपके साथ है आपका रेडियो मित्र आयुष तोमर। श्रोता साथियों, पर्यावरण और मानव का संबंध उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव का अस्तित्व। मानव प्रकृति की गोद में जन्म लेता है, उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है और उसी के संसाधनों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पर्यावरण और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, वन, पर्वत, नदियाँ

मुनियों ने पेड़ों, नदियों, पर्वतों और जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश भी दिया है। पृथ्वी माता की अवधारणा में हमें यह सिखाती है कि हम प्रकृति के स्वामी नहीं बल्कि उसके संरक्षक हैं। यही कारण है कि हमारे त्योहारों, परंपराओं और लोक जीवन में प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना दिखाई देती है। लेकिन आधुनिक युग में विकास की दौड़ ने पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। बढ़ता औद्योगिकीकरण, वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण, प्लास्टिक और अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, जल संकट और जैव विविधता के क्षरण के रूप में सामने आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, कई क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ हमारे असंतुलित व्यवहार का परिणाम भी हैं। जब पर्यावरण प्रभावित होता है तो उसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जल और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं को भी पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों और युवाओं में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना समय की आवश्यकता है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को अपना कर्तव्य समझेगा, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ पृथ्वी दे सकेंगे। अंत में हमें यह समझना होगा कि मानव और पर्यावरण का संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि सह अस्तित्व का है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मानव जीवन भी सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। प्रकृति का संरक्षण वास्तव में अपने देश का संरक्षण है। हम सभी का ये संकल्प होना चाहिए कि हम सभी पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे और धरती को हरा भरा तथा स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
4: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
5: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
4: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
5: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
4: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
5: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
4: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
5: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
6: पानी रे पानी,
7: पानी पानी रे पानी,
4: आओ मिलकर करें प्रयास,
5: शुद्ध पानी हो सबके पास।
8: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर के तहत आपके लिए एक रोज़गार सूचना हम लेकर आए हैं जो कि हर युवा के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। रोज़गार संबंधित है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज से। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदन तिथि 20 मई 2026 से शुरू हो चुकी है, अंतिम तिथि 11 जून 2026 रखी गई है आवेदन करने के लिए, और शुल्क अदा करने के लिए भी अंतिम तिथि 11 जून 2026 है। 13 सितंबर 2026 को इस परीक्षा का रिटर्न टेस्ट होगा और इसके एडमिट कार्ड आपको एक सप्ताह पूर्व इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। पद UPSC के द्वारा निकाले गए हैं। आवेदक का जन्म 1 जुलाई 2003 से पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए, तभी वो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कुल 100 पद, एयरफोर्स एकेडमी के 32 पद, इंडियन नेवल एकेडमी के 26 पद और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 293 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आवेदक को किसी भी स्ट्रीम में बैचलर की डिग्री धारित करना अनिवार्य है। नेवल एकेडमी के लिए अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में बैचलर्स होना ज़रूरी है। एयरफोर्स के लिए किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, परंतु 10वीं और 12वीं में फिजिक्स सब्जेक्ट का होना अत्यंत आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.nic.in पर जाकर पता कर सकते हैं और साप्ताहिक रोज़गार समाचार पत्र के माध्यम से भी आपको इसकी और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रोज़गार सूचना ज़रूर पसंद आई होगी। श्रोता साथियों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर अब अपने समापन की ओर है और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का समापन हम कर रहे हैं फिल्म एक्शन रिप्ले के इस गीत के साथ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है कलाकार कमल कामले के द्वारा ये वायलिन वादन, और वायलिन वादन में ये प्रस्तुत कर रहे हैं राग गुर्जरी तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार थे कमल कामले और इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया वायलिन वादन में राग गुर्जरी तोड़ी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, 10 बजने को हैं। जिले की चिट्ठी का प्रसारण अक्सर कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: वाचन स्वर दीपा सिंह। नरसिंहपुर जिले में पारा 43 से 44 डिग्री होने के बाद अब तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो रही है, तो वहीं गर्म हवाओं की जगह धीरे धीरे उमस अपना स्थान ले रही है। खेती के नजरिए से ग्रीष्मकालीन मूंग खेतों में तैयार होकर अंतिम दौर में है, वहीं किसान कटाई की तैयारी में नजर आ रहे हैं। भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के अंतर्गत वर्तमान सत्र के लिए ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन जारी है। उप संचालक कृषि मोरिस नाथ ने बताया कि मूंग और उड़द के लिए तहसीलवार कुल 46 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मूंग के 13,000 से अधिक, उड़द के लिए 14,000 से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। जिले में किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति का आकलन करने हेतु व्यापक स्तर पर मृदा नमूना संग्रहण कार्य किया गया है। नरसिंहपुर जिले में कुल 4,400 मृदा नमूने संग्रहित किए गए हैं। मृदा परीक्षण के माध्यम से भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन कर किसानों को उनकी भूमि के अनुरूप उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह प्रदान की जाती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले से प्रदेश के 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में योजना की 36वीं किस्त के रूप में 1835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए माताओं और बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 296.34 करोड़ रुपए लागत के 40 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान नरसिंह की ये भूमि वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम की साक्षी रही है। नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसे शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। वहीं गाडरवारा की तुअर दाल देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। पिछले दिनों नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित जल संवाद कार्यशाला में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने वैश्विक जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल को बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। उन्होंने प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण के लिए भूजल भरण की विशिष्ट तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। पिछले दिनों पीएम श्री शासकीय कन्या नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काटरवारा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि धरती का आंचल हरा भरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है बल्कि एक यादगार पल है और एक मौका भी है। आज के दिन हम संकल्प लेकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा जरूर लगाएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मानवाधिकारों से जुड़ी योजनाओं क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीयन शिविर का आयोजन नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर में किया गया। शिविर में 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के असंगठित क्षेत्र के कार्यरत श्रमिकों को योजना में पंजीयन कर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश की खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभिनव पहल पर जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के माध्यम से जिले के विकास से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, स्वावलंबन और अधिकारों से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, स्टोर रूम, मदर रेस्ट रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:05 होने को हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है हल्द्वानी से कमला की, साथ ही साथ कानपुर से सौम्या नयाल और दीपेंद्र सिंह नयाल की, और इन सभी ने फरमाइश की है फिल्म गाइड से इस गीत की, जिसको लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत सचिन देव बर्मन साहब का है और आवाज़ लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर फिल्म गाइड का ये गीत।

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। राजेश कुमार वर्मा की, प्रीति वर्मा की और कार्तिक और आर्यन वर्मा की। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की। गांव जाखौद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक की। इसी के साथ टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म अभिमान से इस गीत की, जिसको लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत सचिन देव बर्मन का है और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश को कार्यक्रम में शामिल करने का समय आ गया है। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है ग्राम गामरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल की, बाबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल की, साथ ही साथ चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल की। इसी के साथ अजीत नगर मैलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाडली पोती रौनकदीप कौर ने भी हमें फरमाइश भेजी है। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म काला पानी से इस गीत की, जिसको लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है सचिन देव वर्मन ने और आवाज़ दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अज समझे

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहे ना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ बेहतरीन नगमे। कार्यक्रम की अगली फरमाइश बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये हमारे नियमित श्रोता हैं और ये हमें लगातार अपनी फरमाइश भेजकर ये बताते हैं और ये जताते भी हैं कि ये हमें हर बार, हर दिन, हर रोज़ सुनते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संदलपुर आंत्री से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, चांदनी यादव और दीपक यादव की। और इन सभी लोगों ने हमें फरमाइश की है फिल्म ज्वेल थीप से इस गीत की, जिसको लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने और आवाज़ है लता मंगेशकर और भूपेंद्र की। इसी गीत की फरमाइश हमें नेहरू चौक पैठण से भी प्राप्त हुई है। फरमाइश करता है डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और बेबी सिया जाधव, और साथ ही साथ जालना शहर सोमनाथ से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। और इन सभी ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और इनके बेटे चटकू मटकू। हमें एक फरमाइश और प्राप्त हुई है छठिया पोखर डुमराव से फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार और बिहार भवन दिल्ली से अकरम कुटरिया और उल्लाह कुटरिया की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश करी है फिल्म दो रास्ते से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आनंद बख्शी का ही है और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म नमक हलाल का ये गीत जिसको लिखा था अनजान ने, संगीत बप्पी लहरी का था और आवाज़ थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। अभी आपने सुना। इस गीत की फरमाइश हमें की थी कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग चंदन ने। इसी के साथ इसी गीत की फरमाइश हमें की थी भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने भी, और ये सभी लोग थे दतरंगी से। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये गीत बेहद पसंद आया होगा। अब समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का, जो कि है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की। साथ ही साथ बिहारी कॉलोनी महासमंद छत्तीसगढ़ से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार, कल्लू मल्लू और कालिया बेलदार। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म प्रिंस से इस गीत की, जिसको लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर फिल्म प्रिंस का ये गीत।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

फिल्म ड्रीम गर्ल का ये टाइटल सॉन्ग, जिसको लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और अपनी आवाज़ दी थी किशोर कुमार ने। बेहद ही खूबसूरत गीत, और इसकी फरमाइश हमें की थी शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टैमा ज़िला खरगोन मध्य प्रदेश से, डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा ने। और इन सभी की फरमाइश पर हमने आपको सुनवाया ये गीत। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं फिल्म सागर के इस गीत के साथ, जिसको लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत राहुल देव बर्मन का है और आवाज़ है किशोर कुमार की। और इस गीत की हमें फरमाइश की है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड ने। इसी के साथ इसी गीत की हमें फरमाइश प्राप्त हुई है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी की। और इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये कार्यक्रम का अंतिम गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का ये अंतिम गीत।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल आज 4,399 दिनों का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में एनडीए की बैठक आयोजित होगी। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे। प्रदेश में 12 से 18 जून की अवधि में प्रत्येक विकासखंड नगरीय निकाय मुख्यालयों पर जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। ये कार्यवाही राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तेलंगाना की अदालत में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण की गई। राज्य सरकार ने शासकीय सेवा के लिए 2 बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी नियम को निरस्त कर दिया है। उज्जैन शहर की सीमा में मांसाहारी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस संबंध में उज्जैन नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भोपाल के रविंद्र भवन में आज शाम 7 बजे अगरबत्ती नामक नाटक का मंचन किया जाएगा। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तेज हवा और बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फ़ोन इन कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुने।
1: नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त श्वेता। बशीर बद्र साहब का एक मशहूर मतलब कहना चाहिए एक लाइन है जिन्हें मैं कहना चाहूंगी, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समुद्र से मिला दरिया नहीं रहता, जहां दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, है ना। तो आप भी इस बात के लिए हमसे सहमत होंगे कि हमारा और आपका भी रिश्ता एक प्यार भरा स्नेह भरा रिश्ता है, और आज हम इसी कार्यक्रम से भी इसी तरह जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब हम चाहेंगे आपके पसंदीदा गीत सुनवाएं, जिसके लिए आप हमें फ़ोन करेंगे इन नंबरों पर 2660902, बाहर के श्रोता साथी एसटीडी कोड लगाकर 0755 हमें लगाकर फ़ोन कर सकते हैं और अपने विचार और अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं। तो इंतज़ार है हमें आपके फोन। जी
2: हेलो।
1: हाँ हेलो, हमारी आवाज़ आप तक आ रही है?
2: जी दीदी आ रही। नमस्कार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
2: जी दीदी, मैं अपना पहले परिचय दे दूं फिर।
1: जी जी,
2: मैं
1: जी।
2: दादू वैद का पुरवा, तिंदवारा जिला बांदा, उत्तर प्रदेश से रोशन सिंह बात कर रहा हूं दीदी।
1: रोशन सिंह यादव, कहां से बात कर रहे हैं आप एक बार?
2: रोशन सिंह।
1: हाँ जी,
2: यादव नहीं।
1: अच्छा अच्छा, सॉरी, रोशन सिंह। कहां से
2: जी?
1: जगह का नाम?
2: दादू वैद का पुरवा, तिंदवारा जिला बांदा, उत्तर प्रदेश।
1: जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में फोन करें गीत सुनने में। पहले बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
2: दीदी फिल्म का नाम तो मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन गाने के बोल हैं, चेहरा तेरा जब जब देखूं प्यारा है तुझ पे।
1: चलिए हम सर्च तो करेंगे, लेकिन बताएं ना आप कौन से फिल्म का गीत है, ये नहीं याद है?
2: मतलब मुझे फिल्म का नाम नहीं पता।
1: चलिए एक और बता दीजिए हमें, है ना, एक और फिल्म का। हाँ, एक और गाना।
2: एक और, मैं यही वाला बस सोच के आया था। मतलब
1: आपकी पसंद के तो और भी गीत हो सकते हैं, है ना।
2: जी जी, वो मतलब फिल्म का गाना वो भी नहीं है, मतलब गाना है वो भी ऐसे ही।
1: जी,
2: कोई फिल्म नहीं है, भला किसी का को हम साथ साथ हैं का है।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल,
2: मतलब ये तो सच है कि भगवान है।
1: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, है ना।
2: जी जी जी जी जी।
1: तो
2: दीदी मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
2: जी दीदी, मैंने आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है और आपकी आवाज बिल्कुल सुनीता सिंह दीदी जी से मिलती
1: है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, है ना।
2: जी
1: जी, जी, जी, जी, जी। तो बताइए कैसा है वहाँ मौसम का हाल चाल?
2: दीदी मौसम को हवाएं चल रही हैं, मतलब रोज बादल हो रहे हैं और बारिश हल्की हल्की हो रही है, ज्यादा तो अभी नहीं हो रही है, छिटपुट वर्षा हो रही है।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
2: तो मतलब गर्मी तो है ही वाला।
1: हाँ,
2: गर्मी का क्या कहना है,
1: सही बात है ना। और थोड़ी क्या होता है कि हमें ठंडक तो मिलती है, लेकिन उसके बाद थोड़ी उमस भी शुरू हो जाती है ना।
2: जी जी, हल्की बारिश होती है तो फिर से उमस हो जाती है, शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा ही मतलब सबकी आधारा है, अब हम ही पेड़ पौधे कटवा रहे हैं, लगवा नहीं रहे हैं कोई, मतलब
1: जी जी जी बिल्कुल
2: जी, है ना, इसीलिए हमें गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो
1: बहुत
2: मतलब हमारे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे दीदी लगे हुए हैं, करौंदे के हैं, नींबू के हैं, आम के हैं, और भी मतलब बहुत सारे महुए के हैं, कनायर के हैं, मतलब फूल होते हैं जो।
1: बहुत बढ़िया, आपने पेड़ पौधे लगा के रखे हुए हैं, और आपकी बात सुनकर हमें अच्छा भी लगा और सारे लोगों तक ये संदेश भी पहुंच रहा है कि अपने आसपास पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, है ना।
2: अगर पेड़ कटाएं तो चाक दीदी लगाएं, हम यही
1: बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हम यही चाहेंगे, क्योंकि अपने चारों तरफ अगर हरियाली होगी तो निश्चित रूप से गर्मी कम होगी, है ना। आपने फोन किया,
2: यही अपने श्रोताओं से जो भी सुनना चाहते हैं तो उनसे
1: बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे। जी बिल्कुल जी, जी। तो आपने फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: जी दीदी, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ बहन जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
0: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
1: जी, तो चंदेल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना।
0: नहीं,
1: तो
0: सही
1: सब
0: है बहन जी, सही है।
1: हाँ सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप।
0: बस बहन जी, मैं आपकी दुआ और भगवान की कृपा से बढ़िया हूँ,
1: जी
0: और मैं कि आप भी बढ़िया हो।
1: बिल्कुल, हम भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आपसे बात करके। अपनी जगह का
0: जी,
1: नाम बताएं जरा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
0: ग्राम सनोतिया, जिला गुना,
1: जी
0: मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन
1: जी
0: जी।
1: तो बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
0: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा खानदान,
1: जी
0: और गाने के बोल रहेंगे, नील गगन पे उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया।
1: बहुत ही प्यारा गाना है ये ना। बिल्कुल, अभी मौसम भी कुछ इस कदर हो गया है ना, जहाँ आप रहते हैं वहाँ कैसा

0: क्या है, खेती किसान के लाने बढ़िया कार्यक्रम आते हैं
1: जी,
0: तो वो हमको लाभ दे जाते हैं।
1: जी जी जी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चलिए, आपने
0: आपका शुभ नाम जान,
1: मैं आपकी रेडियो दोस्त श्वेता बोल रही हूँ, है ना?
0: अच्छा।
1: तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बताएं आपके मित्रों के नाम।
0: दिनकर सिंह जी हैं चित्रकूट धाम से
1: जी,
0: और फूलचंद पाल जी हैं मनकारी से, बेटा सिंह यादव जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, और भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, सभी को यह गाना डेडिकेट रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने इतने अपने सारे मित्रों का नाम लिया, हमें भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ दीदी, नमस्ते। आपके
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी।

0: राजेंद्र नगर, गंजबासोदा, जिला विदिशा।
1: जी, तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपने फोन किया है कार्यक्रम,
0: बिल्कुल
1: फोन
0: बिल्कुल
1: करें गीत सुने में, है ना?
0: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही
1: जी
0: जगह लगा।
1: हाँ, तो कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: आज हमें सुनना है बॉर्डर फिल्म का,
1: बॉर्डर फिल्म का गीत। जी
0: संदेश आते हैं, चिट्ठी आती फौजी भाइयों के लिए।
1: बिल्कुल, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है दीदी, पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाता हूँ मैं, उसी की तैयारी चल रही है
1: अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप रेडियो भी
0: आज।
1: सुनते हैं?
0: अरे दीदी, कम से कम 18 साल हो गई हमारे लिए रेडियो बिल्कुल सुनते सुनते।
1: हाँ, आज मैं अच्छा, बहुत अच्छा लगा, है ना, कि आप
0: बिल्कुल
1: हमारे
0: दीदी,
1: यहाँ।
0: आपके तो हम नींव सोता है और पत्र भी डालते हैं, ग्राम सभा है,
1: अच्छा।
0: सभी कार्यक्रम है, लोक रंग है, पूरे सारे कार्यक्रम सुनते हैं और सुझाव भी आपके लिए हम भेजते रहते हैं।
1: बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: चलिए, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत
0: बिल्कुल
1: बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: दीदी, नमस्ते नमस्ते।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्कार मैम। नमस्कार।
0: जी आपका नाम बताएं। हाँ
1: हाँ, मैं कृष्णवा कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूर मनमोजी बोल रहा हूँ मैं।
0: अच्छा, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है न? और
1: जी
0: आपका फोन लगा है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना? तो पहले
1: अच्छा,
0: बताएं
1: पहले
0: कौन
1: बताना
0: सी
1: बता
0: कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: जी।
0: पहले बताएं आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: मुझे जीने नहीं दूंगा गाना सुनना मैं।
0: जीने नहीं दूंगा, कौन सा गाना है इसका?
1: बादल रेशमा तुम याद ना आया करो।
0: अच्छा, एक और कोई मतलब बता दीजिए।
1: आपके हिसाब से सुना दो मैडम। आज तो आज आपकी आपकी
0: नहीं
1: फरमाइश
0: नहीं
1: सुनेंगे हम।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं, हर इंसान की बहुत सारी पसंद तो बहुत सारी होती है ना फिल्मी गानों की।
1: हाँ
0: एक और हमें चॉइस बता दीजिए, है ना?
1: अच्छा, ये है ना,
0: हाँ
1: ये मुद्दत का मिल जाएगा मैडम।
0: हाँ जी बिल्कुल, है ना? सुनाएंगे आपको।
1: यारी
0: हाँ
1: हमारा
0: बिल्कुल मिल जाएगा।
1: मेरी रहेगा।
0: चलिए आपने देखिए गा के भी हमें सुना दिया है ना? चलिए
1: हाँ जी,
0: आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।
0: फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: जी मेरा नाम बाबू यादव है दीदी।
0: जी
1: और मैं सारनाथ वाराणसी से बोल रहा हूँ।
0: जी
1: दीदी आपका नाम भूल रहा हूँ, जरा बता दीजिए।
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना?
1: जी जी जी।
0: तो सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: हाँ दीदी हमको सुना दीजिए, फिल्म मेरा साया का है कि तू जहाँ जहाँ चले जा मेरा साया साथ होगा, लता जी ने गाया हुआ है।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है ना?
1: जी जी।
0: आपकी पसंद भी बड़ी प्यारी है ना? क्या करते हैं
1: और
0: आप?
1: ये दीदी मेरे श्रीमती जी के लिए डेडिकेट रहेगा विशेष तौर से।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।

0: नमस्ते बहन जी। जी
1: नमस्ते। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
0: मैं ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बात कर रहा हूँ बहन जी।
1: जयपाल यादव
0: जी
1: अच्छा बताएं आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी आज मुझे एक फिल्म का नाम है जुनून, इसमें गीत है जो प्यार कर गए वो कुछ ऐसा गीत है, वो
1: बिल्कुल
0: जुनून फिल्म का है।
1: अच्छा। एक और पसंद का भी गीत बता दीजिए आप, एक और पसंद बता दीजिए अपनी।
0: अच्छा एक और पसंद में तो
1: हाँ
0: एक फिल्म का नाम है जानवर, इसमें गीत है अलका याग्निक जी का गाया हुआ गीत है
1: बिल्कुल
0: मौसम की तरह।
1: बिल्कुल है ना, बिल्कुल
0: जी
1: सुनवाएंगे हम आपको आपकी पसंद के ये सारे मतलब ये गीत। क्या
0: जी
1: करते हैं आप?
0: जी बहन जी, वैसे तो मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ, मतलब जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो जन योजनाएं हैं उन उन तक गरीब असहाय तबके बच्चों को या परिवारों को लाभ दिलाने का काम करता हूँ और खाद्यान्न विभाग से जुड़ा हूँ।
1: जी, और साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं?
0: बिल्कुल, आपके मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सभी सुनते रहते हैं और जो भी आपके यहाँ से ज्ञान से भरी या मनोरंजन से या जानकारी मिलती है तो वो अपने जीवन में और जो खेती से संबंधित उन किसान भाइयों तक पहुंचाना हमारा प्रयास रहता है कि हम उन तक आपके केंद्र से सुनकर उनको लाभ दिलाएं।
1: हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा, और इसी
0: जी
1: तरह आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। फोन करने के
0: जी
1: लिए
0: जी
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: जी नमस्कार,
1: नमस्ते मैम।
0: फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: मैं शिवानी मेहरा बात कर रही हूँ, नीमच से।
0: नीमच से बात कर रही हैं जी। तो कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम मूवी का नाम है गुमनाम और गाने ही बोले मोहब्बत से ज्यादा।
0: गुमनाम। अच्छा, ये पुरानी वाली मूवी ना?
1: हाँ मैम, ज्यादा पुरानी भी नहीं है।
0: हाँ,
1: हाँ 90 के मतलब 90 या 2000 समथिंग की है।
0: अच्छा। एक और अपनी पसंद का गीत बता दीजिए, है ना?
1: सलामी मूवी का जब हाले दिल।
0: हाँ जी। तो क्या करती हैं आप?
1: मैं तो कुछ नहीं करती, मैं घर पर ही रहती हूँ।
0: और रेडियो सुनती हैं? मेरी ख्याल से मेरी
1: हाँ
0: आपसे
1: तो
0: और भी
1: गाना
0: बात
1: वाना
0: हो
1: ज्यादा
0: चुकी
1: सुनती सुनती हूँ।
0: है ना, इससे पहले भी बात हो चुकी। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने कामकाज के साथ साथ रेडियो भी सुनती हैं, है
1: जी
0: ना?
1: मैम, आप कौन जी मैम बात कर रहे हो?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना?
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते। तो आपने फ़ोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

तो ये था कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुनें। हमें आपके विचार जानकर और आपके पसंदीदा गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा। आशा है आप इसी तरह हमें फ़ोन करते रहेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल आज 4,399 दिनों का हो गया है। श्री अमित शाह, डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन और शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। नई दिल्ली में आज एनडीए की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए कहा है कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में प्रत्येक विकासखंड, नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 18 जून की अवधि में जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे और राज्य सरकार ने शासकीय सेवा के लिए 2 बच्चों की अधिकतम सीमा निरस्त संबंधी नियम को निरस्त कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें अपने पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। श्रोता हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। अगली श्रोता मालवा से हैं रतलाम, बलवंत कुमार, राजू वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म आज़ाद से। गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से। श्रोता हैं श्रद्धानंद, अभयनंद, परमानंद आर्य और पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से, स्वर प्रीति सागर के हैं। गीत लिखा हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और अमित खन्ना ने। गीत को

संगीत पर किया राजेश रोशन ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अजमा, सालिया शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ और शाहिद। अगले श्रोता गांधीबाग अकोला से हैं, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

संगीतकार हैं आरडी बर्मन और इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सपना संगीता रोड इंदौर से। श्रोता हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। चलिए सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: लगाए अटक गया
1: क्यों
2: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
3: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
4: दुखी बेदुखी हो।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है अंबेडकर चौक खुरई से। श्रोता हैं राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, रोहित, पूरन, छोटू, डुनडुन। इन्हीं के साथ अगले श्रोता किशोरी बोस हैं, प्रियंका बाथरे, बसंत बाथरे, सरोज तिवारी, अजीत, हिमांशी, नितिन, आशीष और ममता। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार का 5वां भाग।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, लिचू अपने बेटे जगन्नाथ से पीने के लिए पानी मांगता है। जगन्नाथ पानी लेने जाता है। लिचू अपनी पत्नी की लाश को गिद्धों चीलों द्वारा नोचकर खाए जाने के विभत्स दृश्य को याद करता है। शिबू और लिचू अपने समाज की दयनीय दशा और हड़ताल की भयावहता को लेकर बात करते हैं। जुड़वा भाई रामू और बामू ठाकुर साहब की चापलूसी करके उसके साथ नशा करते हैं। दोनों ठाकुर साहब को मजदूर यूनियन की गोपनीय बात बताते हैं। शिबू और यशवंत के बीच यूनियन नेताओं की मौका परस्ती को लेकर गंभीर चर्चा होती है। तभी शिबू को खांसी उठती है और बलगम के साथ खून निकलता है। यशवंत उसे टीबी होने की बात बताता है। शिबू यशवंत से खुलकर बात करता है। यशवंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अब आगे।

0: Narayni! Ô Narayni! Zara darwaza to khol Narayni!
1: खोल रही हूँ जी।
2: नेताजी आप ही साथ हैं?
3: शिबू की तबीयत ठीक नहीं है, जरा खटिया तक इसे पहुंचाने दे।
2: आइए
3: चल चल खटिया पर लेट जा शिबू।
2: क्या हुआ आपको?
3: नारायणी इसे टीबी हो गई है, इसे आराम और अच्छे खाने पीने की सख्त जरूरत है।
2: अच्छे खाने की? घर में खाने के लिए तो होता नहीं, अच्छा खाना कहाँ से लाऊंगी मैं?
3: जैसे भी हो, शिबू की दवा दारू भी बराबर चलती रहनी चाहिए। देख, डॉक्टर ने खास हिदायत दी है।
2: आपने इनकी मदद की, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
3: अरे एहसान कैसा नारायणी, ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। अब मैं चलता हूँ। अच्छा शिबू, अपना ख्याल रखना।
0: यशवंत जी ठीक कहते हैं, मैं अपना ख्याल।
2: आप ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा जी।
0: रोज रोज मीटिंग होती है।
4: अरे भैया, यूनियन का हमको तो कुछ समझ नहीं।
5: मजदूर किसान भाइयों
4: सुनो कुछ कह रहे हैं।
5: आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मजदूर हड़ताल में किसानों का क्या काम। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूनियन किसानों के हक की लड़ाई भी लड़ रही है।
4: अच्छा।
5: ये धरती हमारी माँ है, जब तक किसान और मजदूर अपने अधिकारों के प्रति चौकस नहीं होंगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं।
4: ये बात तो सही।
5: हमें एक होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी।
6: मजदूर किसान

0: यूनियन चाहती है कि जमीन रखने की सीमा 150 बीघा से घटाकर 60 बीघा कर देनी चाहिए।
1: हाँ, 60 बीघा तो
0: जमीन से किसानों को खदेड़ना बंद होना चाहिए। अधिया पर खेती करने वालों को जमीन पर पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कर लेना बंद होना चाहिए। होलसेल व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ब्याज का इंतजाम हो। और भी बहुत से नियम बनाने चाहिए। लेकिन इन मांगों को पूरा करवाने के लिए मजदूरों और किसानों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल को सफल बनाना होगा। किसानों मजदूरों को क्रांति करनी होगी। क्रांति
2: मजदूर किसान एकता।
3: शास्त्री जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
4: शास्त्री जी कहाँ है? शास्त्री जी तो अभी तक आए नहीं हैं।
3: क्या शास्त्री जी अभी तक नहीं आए? तो तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें शास्त्री जी समझ रही थी।
4: यशवंत, लगता है ये महिला पहली बार सभा में आई है। इसे बता कि हम कौन है।
5: अरे नारायणी
3: जी,
5: नारायणी ये शास्त्री जी के एजेंट बलबीर स्वामी है।
3: एजेंट? ये एजेंट का क्या मतलब होता है?
5: एजेंट अंग्रेजी का शब्द है नारायणी।
3: अब मैं क्या जानू अंग्रेजी बंग्रेजी।
5: एजेंट को अपनी हिंदी भाषा में दलाल कहते हैं।
0: ए, ए, ए, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? और ये किस पे हंस रहे हो तुम लोग?
3: दलाल पर तो जमाना हंसता है, फिर हम तुम पर हंस रहे हैं, तो इसमें हैरानी की क्या बात है?
0: क्या कहा? मैं और दलाल? नहीं नहीं, मैं तो शास्त्री जी का सहायक हूँ। सहायक?
3: सहायक? लगता है दलाल को अब सहायक कहा जाने लगा है। कोई बात नहीं सहायक जी, बताइए तो जरा हड़ताल कब तक चलेगी?
0: हड़ताल? हाँ, 15 दिन के भीतर कंपनी हमारे आगे झुक जाएगी। कंपनी को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी, तब हर मजदूर खुशहाल होगा।
2: इस बात की गारंटी दे सकते हैं? बताइए क्या गारंटी है इस बात की? बताइए।
0: देखिए अभी हमारे बीच शास्त्री जी आने वाले हैं और गारंटी भी वही देंगे। भाइयों, शास्त्री जी हमारे बीच आ चुके हैं।
6: अरे
0: आप लोग जोरदार तालियां बजाकर शास्त्री जी का स्वागत कीजिए। अब मैं यूनियन के दलित प्रतिनिधि यशवंत से अनुरोध करूंगा कि वो शास्त्री जी को मजदूरों की ओर से गुलाब के फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत करें। लो, ये हार लो और शास्त्री जी के गले में डाल दो।
5: लाइए बलवीर भाई।
7: शास्त्री जी लीजिए।
8: धन्यवाद साथियों, आज हमने दलित के हाथों हार पहनकर दलितों को सम्मान दिया है। हमारी नजर में दलित भी इंसान है, उनके साथ भेदभाव की नीति का खात्मा होना चाहिए।
5: क्या बात है?
8: हम सभी को मिलकर इस दिशा में पहल करने की जरूरत है।
9: शास्त्री जी
10: जिंदाबाद।
9: शास्त्री जी
10: जिंदाबाद।
9: शास्त्री जी संघर्ष करो,
10: हम तुम्हारे साथ हैं।
9: शास्त्री जी संघर्ष करो,
10: हम तुम्हारे साथ हैं।
9: दलित नेता यशवंत भाई
10: जिंदाबाद। जिंदाबाद।
9: दलित नेता यशवंत भाई
10: जिंदाबाद। जिंदाबाद।
8: साथियों, यूनियन आप लोगों के लिए 2 साल से आंदोलन कर रही है। ये हड़ताल आर पार की लड़ाई होगी। मजदूर किसानों को आशंका सता रही होगी कि हड़ताल के लिए धन कहां से आएगा। धन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनियन की देश भर में 7 शाखाएं खुल चुकी हैं। हर शाखा से धन आएगा। दिल्ली मुख्यालय ने भी मदद करने का आश्वासन दिया है।
3: बलबीर स्वामी ने कहा है कि कंपनी 15 दिनों के अंदर हमारी शर्तें मान लेगी। क्या आप इस बात की गारंटी देंगे?
8: 15 दिन लगे या महीना, कंपनी को हमारी शर्तों के आगे झुकना ही होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई भी मजदूरों का साथ दे रहे हैं।

0: जब किसान भाइयों के हित की बात आएगी तो मजदूर भाई भी किसान भाइयों के साथ खड़े होंगे। इस बात का सबूत आज यहाँ किसान भाइयों की मौजूदगी है।
1: किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता।
0: साथियों, मुझे सूचना मिली है कि सरप्लस मजदूरों की लिस्ट लगा दी गई है, छटनी की जाने वाली है। कंपनी के इस हिमाकत का विरोध करने के लिए हमारे पास हड़ताल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या हमारे मजदूर हड़ताल के लिए तैयार है?
2: क्या होगा हड़ताल से? कंपनी कहती है कि काम नहीं तो पगार नहीं। पगार बिना हम अपना पेट कैसे भरेंगे? क्या इन भाषणों से? नहीं नहीं, हमें नहीं करनी हड़ताल।
3: अरे नारायणी, ये तू क्या गजब कर रही है? इस वक्त तेरा शांत रहना ही अच्छा होगा।
4: अरे यशवंत, तू नारायणी के कान में क्या फुसफुसा रहा है रे? ठीक ही तो कह रही है नारायणी। अरे हड़ताल करवा कर क्यों तू चीलों गिद्धों को निमंत्रण दे रहा है?
5: भाइयों, हम नारायणी की बात का समर्थन करते हैं। हम हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।
6: हम हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।
0: साथियों, साथियों, साथियों, मेरी बात सुनो। आज हम हड़ताल की तारीख घोषित करने वाले थे, मगर लगता है कि हमारे बीच कंपनी के कुछ चमचे भी मौजूद हैं, जो कंपनी के इशारे पर मजदूरों के बीच फूट डालना चाहते हैं। हमारा आंदोलन शुरू होने से पहले ही इसे नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, मगर हम कंपनी के इन दलालों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे।
5: भाइयों, ये शास्त्री झूठ बोल रहा है। अरे चलो भाई चलो, पेट पालने का इंतजाम करे, घर पर बच्चे राह देख रहे होंगे। अरे चलो चलो
6: भाइयों, भाषणों से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी पड़ती है।
0: सारे किए कराए पर पानी फिर गया।
3: क्या करें शास्त्री जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
7: इस पत्थर को क्या देख रहे हो यशवंत? इस पर स्वतंत्रता आंदोलन में 1921 में शहीद हुए अनाम लोगों के नाम खुदे हुए हैं।
8: हाँ वही पढ़ रहा हूँ। अरुण कुमार उर्फ लाल आजाद, सरयू प्रसाद, भगवान सिंह, रामनाथ सिंह और गरीब हुसैन।
7: अरे यशवंत, अरे अभी तुम नौजवान हो, तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं हमें। तुम्हें बहुत बड़ा लीडर बनना है। तुम यूनियन की वर्दी का सम्मान करना सीखो। पर इन मरे हुए लोगों के नाम पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला।
8: बलवीर स्वामी,
7: हाँ,
8: इस पत्थर पर मरे हुए लोगों के नाम नहीं, बल्कि देश के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान न्योछावर कर देने वालों के नाम है। इन शहीदों के नाम से ही हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुर्बानी देने की प्रेरणा मिलती है। अगर तुमने इन शहीदों के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम शास्त्री के सहायक हो।
7: यशवंत, देखो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भावनाओं को पहचान नहीं सका। इन शहीदों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो देखो, इनके आगे मैं अपना शीश नवाता हूँ, ठीक है?
8: अच्छा अच्छा, खैर जाने दो। तुम कह रहे थे कि शास्त्री जी का संदेशा लेकर आए हो?
7: हाँ, शास्त्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं, अभी और इसी वक्त।
8: भला शास्त्री जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं?
7: भाई ये तो शास्त्री जी ही बताएंगे। एक काम करो, तुम मेरे साथ अपनी साइकिल लेकर अभी चलो।
8: देखो बलवीर, मेरी अपनी कुछ शंकाएं हैं।
7: हाँ,
8: पहले उनका समाधान करो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
7: भाई तुम्हारी तमाम शंकाओं का समाधान शास्त्री जी के पास है, जो भी पूछना उन्हीं से पूछना। अब तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो,
8: ठीक है चलो।
2: सब ठीक हो जाएगा जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
9: नारायणी
2: जी,
9: नारायणी
2: बोलो।
9: मेरे जैसे नकारा इंसान का मर जाना ही बच्चा है।
2: नहीं नहीं,
9: एक तो बेकार और ऊपर से बीमार।

0: इधर पति ने आंख मूंदी, उधर समाज की गिद्ध दृष्टि जम गई। आपको मेरी कसम, मैं कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना।
1: नारायणी, मैं जिंदा हूं ही कहां? अरे मैं तो अपनी लाश ढो रहा हूं, अपनी लाश। कुछ दिन बाद इस लाश से बदबू उठने लगेगी।
0: नहीं, नहीं।
1: तो तुम खुद ही मुझसे घृणा करने लगोगी।
0: नहीं,
1: हाँ घृणा।
0: ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, मेरा ना सही, इस बच्चे का तो ख्याल करो। आप नहीं रहे तो इसे पिता का दुलार कौन देगा, कौन देगा इसे पिता का दुलार?
1: मैं समझता हूँ नारायणी, पर मैं क्या करूँ, क्या करूँ नारायणी, मैं क्या करूँ, क्या करूँ नारायणी?
0: ये क्या, आप तो रोने लगे।
1: अरे नारायणी, रोना तो क्या करूँ, कितना विवश हूं मैं। अरे मुझे किसी का पति, किसी का पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं।
0: अगर आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आप चिंता ना कीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, आपका इलाज कराऊंगी, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, जल्दी अच्छे हो जाएंगे।
1: नहीं नारायणी, नहीं। देखो नारायणी, मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता।
0: नहीं, मुझे कोई दुख नहीं।
1: मेरी बात सुनो, तुम मेरी ब्याहता हो, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं कमाऊं और तुम घर संभालो।
0: लेकिन
1: मगर देखो, मेरी किस्मत देखो, कमाने तुम जाती हो और घर में मैं पड़ा रहता हूं। मैं अपंग बनकर, अपंग बनकर पड़ा रहता हूं।
0: ऐसा ना कहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, हमारे दिन भी फिरेंगे और फिर सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। हर रात के बाद भोर का उजियारा होता है, हमारी जिंदगी में भी सुख का उजियारा जरूर आएगा।
1: नहीं नारायणी, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
0: सुख का उजियारा जरूर आएगा, यकीन मानिए, आप ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे आप आराम कीजिए, आराम कीजिए।
1: ठीक नहीं होगा, नहीं होगा।
0: मुन्ना जा क्या है, मैं इसे चुप कराती हूँ।
1: जा, तू इसे जाकर चुप करा, मेरी बात छोड़, मैं आराम करता हूँ। जा, तू मुन्ने को संभाल, जा।
0: ना रो मुन्ने, ना रो, चुप हो जा मेरी लाडली। मैं तेरे लिए मेले से खिलौना लाऊंगी। हाँ मेरे बेटे, मैं तेरे लिए खिलौना लाऊंगी, गुड़िया लाऊंगी तेरे लिए। चुप हो जा मेरी लाडली, चुप हो जा मेरा बेटा। अरे तू तो और जोर से रोने लगा, लगता है तू भूखा है। मैं तुझे दूध पिलाती हूँ।
1: दूध पिलाती हूँ? दूध पिलाएगी कहाँ से? अरे शरीर में जान होगी तो दूध पिलाएगी ना, दूध पिलाएगी।
0: Oh, my God.

0: दिन कंपनी के दलालों ने सभा को सफल नहीं होने दिया। कंपनी नहीं चाहती कि दलित मजदूरों और दूसरे मजदूरों को उनका अधिकार मिले, और यही वजह है कि हमें बलबीर को तुम्हारे पास भेजना पड़ा। ये बलबीर कहाँ रह गया?
1: जी वो बाहर किसी से बतिया रहा है, बस आता ही होगा।
2: मैं हाजिर हूँ शास्त्री जी। जी
0: हाँ हाँ बलबीर
2: जी जी,
0: अब हम असल बात शुरू करते हैं।
1: शास्त्री जी आप बात शुरू करें।
0: देख यशवंत, तो दलितों का नेता है
1: जी,
0: सभी तेरा सम्मान करते हैं, तेरी बात मानते हैं।
1: सो तो ठीक है,
0: मुझे लगता है कि तेरे समाज के कुछ लोग हड़ताल के पक्ष में नहीं है।
1: नहीं नहीं शास्त्री जी, ऐसा नहीं है।
0: ऐसा ही है यशवंत, बिल्कुल ऐसा ही है। सभा वाले दिन हड़ताल के विरोध में उस स्त्री ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। वो स्त्री दलित लाइन में ही रहती है ना?
1: कौन? नारायणी?
0: हाँ शायद यही नाम होगा उसका। शायद वो कंपनी के अधिकारियों से मिली हुई है।
1: नहीं शास्त्री जी, नहीं शास्त्री जी, आपका शक बिल्कुल गलत है। नारायणी ऐसा नहीं कर सकती।
2: तो फिर उसने उस दिन हड़ताल का विरोध क्यों किया था?
1: अरे बलवीर, उसके पीछे कोई दूसरा कारण हो सकता है। अगर हड़ताल का मकसद हमारे हित से जुड़ा है तो उसे समझाने का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा।
0: गुड, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पैक पिएगा?
1: जी शास्त्री जी, मैं पीता नहीं।
0: हाँ पीना भी नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज है ये शराब। भाई हमने यूनियन का स्थानीय अध्यक्ष बलबीर स्वामी को बना दिया है, क्यों?
1: लेकिन शास्त्री जी, वो पहले वाले अध्यक्ष का क्या हुआ?
2: शास्त्री जी को उस पर विश्वास नहीं रहा। वो कंपनी के साथ मिलकर हड़ताल को बीच में ही खत्म करवा सकता है।
1: फिर तो उसे हटाकर अच्छा ही किया। कंपनी से ज्यादा हमें अपने बीच के गद्दारों से खतरा है।
0: बिल्कुल ठीक कहा तूने, बिल्कुल ठीक। अब एक बात ध्यान से सुन
1: जी,
0: दलित मजदूरों का जिम्मा तुझ पर रहा।
1: हाँ।
0: बलबीर स्वामी कल जाकर कंपनी के अधिकारियों को हफ्ते भर का नोटिस देगा, ठीक है?
1: जी।
0: अगर नोटिस पर कंपनी ने संज्ञान न लिया तो 20 तारीख से हड़ताल होगी।
1: सो तो ठीक है शास्त्री जी, लेकिन मजदूर मुझसे कुछ सवाल भी कर सकते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दूंगा?
0: कैसे सवाल?
1: वो हड़ताल से होने वाले नफा नुकसान का सवाल उठा सकते हैं।
2: हाँ शास्त्री जी, अब मजदूरों का दिल जीतने के लिए हमारे पास ठोस जवाब तो होना ही चाहिए ना।
0: यशवंत
1: जी,
0: तू अपने इलाके में दलित मजदूरों की सभा का आयोजन कर।
1: ठीक है,
0: मैं बलबीर स्वामी को सब समझा दूंगा। नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता
1: जी।
0: रही बात नफे की, तो हड़ताल होने से नफा ही नफा है। बता कब होगी ये सभा?
1: शास्त्री जी कल शाम को ठीक रहेगा?
0: हाँ ठीक रहेगा।
1: मेरा आपसे एक अनुरोध है।
0: अरे तू तो अपना खास आदमी है, अनुरोध क्यों करता है? तेरा तो हक है हम पर, अपना हक समझ कर क्या है? बोल।
1: इतना सम्मान देने के लिए शुक्रिया शास्त्री जी, वो मैं चाहता हूँ कि नोटिस कल की बजाय परसों दिया जाए।
0: ऐसा क्यों चाहता है तू?
1: शास्त्री जी मैं चाहता हूँ कि नोटिस सभा में सबके सामने पढ़कर सुनाया जाए, इससे मजदूरों के मन में रही सही शंका भी जाती रहेगी और मजदूर दिल खोल कर हमारा साथ देंगे।
0: भाई बहुत खूब, बहुत खूब यशवंत। तू मजदूरों की नब्ज अच्छी तरह पहचानने लगा है।
1: अरे शास्त्री जी।
0: ऐसा ही होगा।
1: अब शास्त्री जी, अगर अब मेरी जरूरत ना हो तो मैं चलना चाहूंगा, वो कल की सभा की तैयारियां भी करनी है ना मुझे।
0: ठीक है यशवंत, तू जा।
1: अच्छा शास्त्री जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। ये तूने बहुत अच्छा किया बलबीर स्वामी, जो इस दलित नेता को अपने वश में कर लिया। अरे स्थानीय राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यशवंत को अपनी मुट्ठी से निकलने मत देना, समझा? ये आदमी हमारे लिए दूर की कौड़ी है। हाँ।
2: आखिर सहायक किसका हूँ? आपका शास्त्री जी, आपका। मैं तो बस आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: बलबीर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे सर पर बना रहेगा।
2: शास्त्री जी, हड़ताल में चंदा भी तो खूब आएगा ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी।
0: देख बलबीर, यूनियन के चंदे से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। भाई अब अध्यक्ष तू है, अरे यूनियन के फंड का तू जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करना है।
2: धन्यवाद शास्त्री जी, धन्यवाद। अब शास्त्री जी, अंधेरा हो चुका है, आप कहें तो अंदर से गिलास और सोडा ले आऊं।
0: जा जा जा, जा ले जा।
2: जी शास्त्री जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी।

0: राम राम शास्त्री जी।
1: राम राम। तो आ गया यशवंत
0: जी, बलवीर स्वामी ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है।
1: हाँ यशवंत, मुझे तेरे से जरूरी बात करनी है।
0: शास्त्री जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है?

0: देख मेरी बात को समझने की कोशिश कर नारायणी, हड़ताल हम लोगों के भले के लिए ही हो रही है।
1: क्या हमारे भले के लिए? नेताजी, क्या भूखे पेट रहने में ही हमारी भलाई है? बच्चों को भूख से तड़पता देखने में हमारी भलाई है? नहीं नहीं, ऐसी भलाई ना तो आज तक मैंने कभी देखी है और ना सुनी है।
0: देख नारायणी, कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। त्याग कल के सुनहरे भविष्य की नींव है। और देख, नींव जितनी मजबूत होती है उस पर बनने वाली इमारत उतनी ही टिकाऊ होती है।
1: वाह वाह नेताजी वाह, तो आपने भी धूर्त नेताओं वाले तमाम लटके झटके सीख लिए। आपको तो बधाई देनी चाहिए बधाई।
0: खामोश खामोश हो जा नारायणी, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही नेतागिरी करनी आती है मुझे। अरे मैं तो अपने दलित भाइयों का भला चाहता। अपमान और शोषण की जिंदगी से दलित मजदूरों को उबारना ही मेरा मकसद है नारायणी।
1: अच्छा, तो जरा मैं भी तो सुनूं कि हड़ताल हमारा किस तरह भला करेगी।
0: अब वो यूनियन के अध्यक्ष बलबीर स्वामी आज शाम हम लोगों के बीच आएंगे और वही सारी बातें समझाएंगे।
1: समझाएंगे समझाएंगे या बहकाएंगे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो हमें हड़ताल में शामिल होने के लिए विवश करेंगे।
0: देख नारायणी, मैं तुझे अपना समझकर समझा रहा हूँ। हाँ।

0: मैं अपना मुंह सी लूंगी।
1: अच्छा अब चलता हूं।
2: अम्मा अम्मा।
0: अरे कौन है रे?
2: मैं हूं अम्मा, तेरा बेटा भृगु।
0: भृगु बेटा? अच्छा।
2: और अम्मा ये तेरी पोती पार्वती भी है।
0: अरे अरे भृगु बेटा, तुझे अपनी बूढ़ी माँ की सुधा आ गई है। अरे बेटा, तुझे देखने को तो हमारी आंखें कब से तरस रही थी। आजा बेटा आजा। ओ पार्वती आजा।
3: दादी
2: अम्मा, अब हम हमेशा के लिए आपके पास आ गए हैं।
3: हाँ दादी, अब हम आपके साथ रहेंगे।
0: ये क्या कह रही है पार्वती?
3: दादी, बापू को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है।
0: क्या?
2: हाँ अम्मा।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल आज 4,399 दिनों का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य मंत्रियों ने भी श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। नई दिल्ली में आज एनडीए की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में प्रत्येक विकासखंड, नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 18 जून की अवधि में जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तेज हवा और बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1 बजे हैं। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से लीजिए सुनिए आज का महिला कार्यक्रम।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी निरंजना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कैसी हैं आप? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपने परिवार और बच्चों के साथ स्वस्थ और खुश होंगी। सखियों, ये तो आप सभी जानती हैं कि प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के विकास में महिलाओं का योगदान अतुलनीय और बहुआयामी रहा है। वो न केवल मानव जीवन का आधार हैं, बल्कि परिवार से लेकर राष्ट्र निर्माण तक हर क्षेत्र की धुरी हैं। सखियों, कृषि की शुरुआत भी सबसे पहले महिलाओं ने ही की थी। उन्होंने ही पेड़ पौधों को पहचाना और इधर उधर घूमते हुए मानव को स्थायी रूप से रहना सिखाया और सभ्यता का निर्माण हुआ। सखियों, ये तो आप सभी जानती हैं कि एक स्त्री परिवार की प्रथम शिक्षिका होती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार को मानवीय मूल्य, नैतिकता और संस्कृति की परंपराएं सौंपती। माँ, बहन और जीवन साथी के रूप में महिला परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़कर रखती है और समाज को संतुलित बनाती है। नारी में वो शक्तिशाली ऊर्जा है जिसने घर को मंदिर बनाया, संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाया।

और समाज की नैतिक धुरी को स्थिर रखा। हम अगर आज की भारतीय नारी की बात करें तो आज विज्ञान, शिक्षा, राजनीति, कला और तकनीक हर क्षेत्र में वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। वे अपने कार्यस्थल पर निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान नारी ने आधुनिकता के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी सहज कर रखा है। नारी पुरातनता की गरिमा और आधुनिकता की क्षमता दोनों का सार एक साथ लेकर चल रही हैं। सखियों, चाहे घर हो, समाज हो या राष्ट्र हो, हमें अगर आपस में प्रेम और सामंजस्य रखना है तो उसके लिए एकजुटता जरूरी है, और वो आती है आपसी संवाद, शांति और विश्वास से। इसलिए हम हर साल 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, ताकि विश्व के लोगों के बीच आपसी प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहे। वे सभी एक साथ मिलकर खुशी के साथ रहें और साथ मिलकर इस गीत का आनंद लें।

0: सखियों, अभी आपने गीत का आनंद लिया, अब हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता महिलाओं के लिए योग। इसकी वार्ताकार हैं अपाला स्वामी।
1: योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। यह एक ऐसी पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ती है। योग भारत की प्राचीन परंपरा और विज्ञान का एक अनमोल उपहार है जिसको अपनाने से संपूर्ण स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। योग बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, महिलाओं एवं पुरुषों सभी के लिए उपयोगी है, पर महिलाओं के लिए योग का महत्व और भी अधिक है। महिलाओं का शरीर और जीवन चक्र पुरुषों से अलग होता है। वह अपने जीवन काल में किशोरावस्था, गर्भावस्था, मातृत्व, मेनोपॉज जैसे कई चरणों से गुजरती है। इन सभी चरणों में भारी मात्रा में हार्मोनल बदलाव होते हैं। आधुनिक युग में महिलाएं ना केवल घर परिवार बल्कि अपने करियर में भी फोकस कर रही है, जिसके चलते उन पर काम का बोझ और बढ़ गया है। इस कारण से वह अक्सर अपने स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दे पाती। इससे उनमें अनेकों शारीरिक व मानसिक समस्याएं, जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं, PCOD, PCOS जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, थायराइड डिसऑर्डर, मोटापा, तनाव जैसी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में योग बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। योग विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से शरीर को लचीला बनाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है। महिलाएं अक्सर घर व कार्यस्थल पर रोज एक ही तरह के काम बार बार करती है, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना। इस कारण शरीर के कुछ हिस्से तो अधिक सक्रिय हो जाते हैं जबकि अन्य हिस्से कम सक्रिय रह जाते हैं। साथ ही शरीर के कुछ हिस्सों की मांसपेशियों और जोड़ों में अधिक दबाव पड़ता है जिससे जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपने शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं के लिए सजगता लाए। योगासन शरीर के सभी हिस्सों को समान रूप से सक्रियता व खिंचाव लाता है। इससे शरीर लचीला बनता है, रक्त संचार बेहतर होता है, सभी अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और तनाव को कम करने व संतुलन लाने में मदद मिलती है। एक महिला अपने जीवन के किसी भी चरण में योगाभ्यास की शुरुआत कर सकती है, यह हमेशा लाभकारी ही साबित होता है। पर बेहतर होता है अगर वह अपने किशोरावस्था से ही योग की शुरुआत कर दे। इस उम्र में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। यह ऐसा समय है जिसमें लड़कियां पहली बार हार्मोनल बदलाव को महसूस करती है। इस उम्र में मासिक धर्म की शुरुआत होती है और अचानक से आए इस बदलाव को सहज रूप से लेना चुनौतीपूर्ण होता है। इससे लड़कियों में कंफ्यूजन, इम्पेशेंस, कंसंट्रेशन में कमी, अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाने की परेशानियां सामने आती है। साथ ही बदलती जीवन शैली के कारण उनमें इरेगुलर पीरियड्स, PCOD, PCOS जैसी समस्या काफ़ी आम होने लग गई है। इन सभी कारणों से मानसिक तनाव, त्वचा समस्याएं, चेहरे पर अत्यधिक बालों का होना, ऐंठन, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी की दिक्कत आती है। ऐसे में नियमित रूप से योग का अभ्यास जिसमें सूर्य नमस्कार, शीतलीकरण व्यायाम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कुछ ऐसे आसन जैसे वृक्षासन, भुजंगासन, भद्रासन, बालासन सभी मददगार होंगे। इनसे ध्यान केंद्रित करने में, मन को स्थिर व संतुलित करने में, मासिक धर्म के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। योग अभ्यास किशोर मन को स्थिरता और अनुशासन सिखाता है। युवावस्था में महिलाओं के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है अपने करियर व पारिवारिक जीवन में समन्वय स्थापित करना। इस दौरान उनके सर पर काम का बोझ, समाज व परिवार की अपेक्षाओं का बोझ और जीवन के कई पहलुओं को लेकर असमंजस की स्थिति से तनाव बढ़ता है। नींद में भी बाधा आती है। निरंतर योग का अभ्यास आत्म जागरूकता व सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। यह उन्हें सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। ऐसे सभी आसन जो पेल्विक एरिया और एब्डोमेन एरिया पर फोकस करते हैं, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। पेल्विक एरिया शरीर का वह हिस्सा है जो ब्लैडर, यूट्रस, वेजाइना और रेक्टम के हिस्से को कवर करता है। इसलिए आसन जैसे वीरभद्रासन, भूनमन आसन, मलासन, भद्रासन, हनुमान आसन, इन सभी अंगों को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं और फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। फिर जो एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण चरण आता है वो है गर्भावस्था। इस दौरान वजन बढ़ना, पीठ दर्द, थकावट और मानसिक चिंता आम समस्याएं होती है। कुछ आसन जैसे कटिचक्रासन कमर व पीठ को आराम देते हैं, मलासन, बद्धकोण आसन, सुप्त बद्धकोण आसन गर्भाशय को मजबूत करता है और प्रसव को आसान बनाता है। इसके अलावा मर्जरी आसन, विपरीत करनी भी प्रसव को सहज बनाने व पीठ दर्द में काफ़ी राहत देते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम और सांसों में ध्यान मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इस दौरान योग करने से डिलीवरी

0: ना वह पसीने आना जिसे हॉट फ्लैशेस कहते हैं, मूड स्विंग्स, हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी जैसे समस्याएं होती है। इस चरण में प्राणायाम, विशेषकर चंद्रभेदन प्राणायाम और शीतली प्राणायाम हॉट फ्लैशेस से निजात दिला सकते हैं। इससे चिड़चिड़ापन कम होता है और शरीर में ताजगी और ठंडक का एहसास होता है। वृद्धावस्था में जोड़ों में दर्द, हड्डियों की कमजोरी, तनाव, रक्तचाप आम है। हालांकि अगर कोई महिला अपने जीवन में पहले से ही योगाभ्यास करती आई है तो इन समस्याओं का कम सामना करना पड़ेगा। इस समय सरल आसन जैसे ताड़ासन, वज्रासन, त्रिकोणासन, शवासन, भुजंगासन काफ़ी लाभदायक होंगे। सभी आसनों को अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। इसके अलावा हल्का फुल्का पैदल चलना, सूक्ष्म व्यायाम के जरिए जोड़ों को सक्रिय रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान और प्राणायाम भी काफ़ी लाभदायक है। वृद्धावस्था में योग महिलाओं के आध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मन को शांत और आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। योग के माध्यम से एक महिला अपने जीवन को और अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकती है। योग अभ्यास के लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे योग करते समय सांस लेने की तकनीक, मुद्राएं और बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए। गलत तकनीक से करने से नुकसान भी हो सकते हैं। योग का अभ्यास शुरू करने से पहले किसी योग विशेषज्ञ और चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वह आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर उपयुक्त योगासन और अभ्यास की सिफारिश कर सकते हैं। सभी आसनों को समय देकर आराम से एवं ध्यानपूर्वक करना चाहिए। योग करने के लिए सुबह का समय और स्वच्छ एवं शांत स्थान सबसे उपयुक्त होता है। इस समय पेट खाली होना चाहिए, आरामदायक, लचीले और हवादार कपड़े पहनने चाहिए। इन कपड़ों से आपकी त्वचा सांस ले पाएगी और पसीना सूखेगी। इससे योग करते समय कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा और एकाग्र रहने में मदद मिलेगी। योग का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब इसे स्वस्थ जीवन शैली के साथ जोड़ा जाए। संतुलित आहार, समय पर सोना जागना और सकारात्मक सोच जीवन में योग के प्रभाव को और अधिक गहरा बनाते हैं। तो आइए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ, सुखमय और संतुलित जीवन का आनंद लें।
1: सखियों, अभी आपने वार्ता सुनी महिलाओं के लिए योग। इसकी वार्ताकार थी अपाला स्वामी। उम्मीद है आपको ये वार्ता जरूर पसंद आई होगी। सखियों, अब हम चर्चा करेंगे पंक्चुअलिटी पर। आप सभी जानती हैं कि समय की पाबंदी एक बहुत ही अच्छी आदत है, जिसे हमारे संस्कारों का एक अहम हिस्सा माना जाता है। समय पर किसी काम या मीटिंग में पहुंचना सिर्फ घड़ी की सुइयों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व का आईना है। जब हम समय पर पहुंचते हैं तो जाने अनजाने में हम सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सखियों, जो लोग समय के पाबंद होते हैं उन पर लोग आँख बंद करके भरोसा भी करते हैं। डिसिप्लिन और समय प्रबंधन किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। अगर हम स्वयं इस बात पर अमल करते हैं तो हमें देखकर यही संस्कार हमारे बच्चों में भी आते हैं। हम हमेशा हर जगह समय पर पहुंचते हैं तो बच्चे भी समय की पाबंदी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए बचपन से ही बच्चों में समय से उठने, समय से खाने, समय से खेलने और सोने की आदत डालें, ताकि वो आदत उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बने। और सखियों, आप एक काम ये भी कर सकती हैं कि एक चार्ट बनाकर उनके कमरे की दीवार पर लगा दें, ताकि उन्हें हर काम का समय याद रहे। छोटे बच्चों की सुबह की भागदौड़ से बचने के लिए रात में ही बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, बैग तैयार करके रखवा दें। जब बच्चे बचपन से ही समय पर काम करने के आदि हो जाते हैं तो उन्हें जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर काम करने पर उनकी प्रशंसा भी करें। और छोटे छोटे

सखियों, गर्मी का मौसम है, ऐसे में हर जगह पानी की किल्लत होने लगती है। लेकिन हम दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके पानी की हर एक बूंद को बचा सकते हैं। ये केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं, बल्कि भविष्य के जल संकट से बचने का प्रभावी कदम है। सखियों, ब्रश या मुंह धोते समय नल खुला ना छोड़ें, उपयोग के दौरान ही नल चलाएं। ऐसा करने से हर मिनट हम कई लीटर पानी बचा सकते हैं। नहाते समय शॉवर की जगह बाल्टी और मग का उपयोग करें, इससे पानी की खपत सीमित रहती है। फ्लश का उपयोग केवल ज़रूरत के अनुसार ही करें। घर में टपकते हुए नलों, पाइपों, फ्लश की मरम्मत तुरंत करवाएं। टपकने वाले नलों से सालाना कई लीटर पानी व्यर्थ हो जाता है। डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तभी करें जब वे पूरी तरह से भरे हों। आरओ का वेस्ट पानी एक बाल्टी में इकट्ठा करें। इसका उपयोग पोछा लगाने, बर्तन धोने या पौधों में डालने के लिए करें। सब्जियों या फलों को धोने के बाद बचे हुए पानी को फेंकने के बजाय गमलों में डालें। अपने घर की छतों पर आने वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए अंडरग्राउंड टैंक या हार्वेस्टिंग सिस्टम में इकट्ठा करें। ये ग्राउंड वाटर को बढ़ाने में अत्यधिक मददगार है। इस प्रकार सखियों, हम सभी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर जल संरक्षण में अपना सहयोग दे सकती हैं। सखियों, मन करता है कि हम आपसे और भी बातें करें, पर घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का। तो सखियों, आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सखी निरंजना को दे विदा लेने की अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।

श्रोताओं, आवश्यक सूचना सुनिए। आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों अथवा आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharati.gov.in एवं hopair@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे अर्चना जाटव के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं ये गारी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अर्चना जाटव के गाए लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की भेंट है। आज इसमें आप सुनेंगे स्मिता घांगरे करके गाए भजन।

अंतराल का समय पूरा हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सुन पाते हैं हार्टलेस फिल्म का गीत केके की आवाज़ में। गीत लिखा है सीमा सैनी ने और संगीत गौरव डागोनकर का है।

केके की आवाज़ में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रईस फिल्म से, जिसके बोल लिखे हैं मनोज यादव ने और धुन बनाई है जैम 8 ने।

0: केके की आवाज़ में अभी आपने रईस फिल्म का ये गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उन्होंने पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि ये योजनाएं उनके दिल में खास जगह रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कार्यकाल की सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज़ादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकलकर सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं।
1: हम सबका सौभाग्य है आज भारत की आज़ादी के बाद निर्वाचित रूप से सर्वाधिक अधिक अवधि तक काम करने का नया रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है। सर्वाधिक रूप से सक्षमता के साथ काम करने वाले पूरे देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक 80 करोड़ लोगों का तो पेट भर रहा है, 25 करोड़ लोगों का मकान दे रहे, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखाओं से बाहर ला रहे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनसेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विनम्रता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरंतर काम करता है, वही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज़्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। विदेशी मेहमानों ने इंदौर का मशहूर पोहा जलेबी का नाश्ता भी चखा। सम्मेलन में आज साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श होगा और शाम को द्विपक्षीय बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये नियम साल 2001 में लागू हुआ था, जिसके तहत 2 से ज़्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रावधान को तत्काल पोर्टल से हटाने और नया प्रारूप प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। वहीं भाजपा का आरोप है कि नटराजन ने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट के एक लंबित मामले की जानकारी छिपाई, जिसके आधार पर कल उनका नामांकन रद्द किया गया। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर व दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति भवन से इसकी औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। छिंदवाड़ा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के अकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों की जिला स्तरीय समन्वय समिति DLC की बैठक आज आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश व्यापक तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और ITI मंडला द्वारा कल सुरक्षा जवान, ड्रोन पायलट, सुरक्षा सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास, ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIYNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सबसे पहले सुनते हैं प्रेम कहानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनना चाहा है दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। साथ ही साथ ये फरमाइश हमें मिली है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदड़े, आरती जोंदड़े की, और सपना संगीता रोड इंदौर से ये गीत पसंद करने वाले हमारे श्रोता है लाल फतेह चंदानी, लीला, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया।

अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए हमें पत्र मिला है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से ये हमारे श्रोता हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और गोला बाजार बक्सर से इस गीत को पसंद किया है। बीना देवी आर्य, सबिता देवी आर्य, पूनम, पूजा, एस एन आर्य, रोशनी, अमृता, सुरभि और खुशबू, राजा बाजार चौक बिहिया खारा से पूनम देवी केशरी, संगीता देवी, बीना और प्रतिज्ञा केशरी आप सभी सुनना चाहते हैं। पारस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं ससुराल फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन इस गीत को पसंद किया है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। साथ ही साथ इस गीत को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और दंतरिंगी से भागवत वर्मा ने। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं ससुराल फिल्म का ये गीत।

हंसते जख्म इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत मदन मोहन का है और गीत लिखा है कैफी आजमी ने। इस गीत को पसंद किया है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ये हैं। और बत्ता परिवार के सदस्यों के नाम हैं मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम मोहम्मद राही, महराज जहां, ये हमारे श्रोता है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से और डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। ये हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। इसी के साथ इन्हीं के पत्र में हमारे जो अन्य नाम शामिल हैं वे हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। रूपाली मालवीय, अर्चित मालवीय और सुमन मालवीय, ये हैं होशंगाबाद रोड भोपाल के हमारे श्रोता। और इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं प्रेम पर्वत फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ ने, जानिसार अख्तर ने इस गीत को लिखा है और संगीत जयदेव का है।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनसेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर काम करता है, वही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज़ादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाया है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज़्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ की जाएगी 5 बजे से। 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की योगदान से है। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:33 पर, शाम 6:30 पर और रात 8:15 पर। क्षमा कीजिए, सांध्यकालीन सभा में रात 8:35 पर फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। सात बजकर 21 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनवाया जाएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 8 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है तुम सही हो मार्गी। ये नाटक आप सुनेंगे रात 10 बजे, जिसके लेखक है विमल कांत येंडे और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिए सरवर हुसैन का सारंगी पर बजाया राग पूर्या कल्याण। ये थी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और OTT वेव्स पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02:50 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। डीटीएच के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में सुनवाते हैं लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे अर्चना जाटव के गाए लोकगीत।

अर्चना जाटव के सर में, क्षमा कीजिए, स्मिता घोंगरेकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कुछ भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भोपाल केंद्र।

0: से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं और प्यार हो गया फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज में। गीत जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत तैयार किया है नुसरत फतेह अली खान ने।

परदेस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत रचना नदीम श्रवण की।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। बाबुल सुप्रियो और साथियों की आवाज़ में अब सुनते हैं इब्राहिम अश्क का लिखा ये गीत, जिसके लिए संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीरा कपूर की आवाज़ों में गीत लिखा है समीर ने और संगीत संदेश शांडिल्य का है।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: are you?
1: कभी खुशी कभी गम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम, अलका याग्निक और करीना कपूर की आवाज़ों में। संगीत संदेश शांडुल्य का था और गीत समीर का था। इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। समय हो चला है इस घंटे की खास खबरों का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने की बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। उद्योगपतियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज़्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कहकशा।

क्यों परवाज अपने जानो दिलवारे, के इस पर खेलते थे फातिमा की आंख के तारे। खजूरों की चटाई है।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसके अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला जंग लगी तलवार। सुनिए आज इसकी पांचवी कड़ी।
2: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, लिचू अपने बेटे जगन्नाथ से पीने के लिए पानी मांगता है। जगन्नाथ पानी लेने जाता है। लिचू अपनी पत्नी की लाश को गिद्धों चीलों द्वारा नोचकर खाए जाने के विभत्स दृश्य को याद करता है। शिबू और लिचू अपने समाज की दयनीय दशा और हड़ताल की भयावहता को लेकर बात करते हैं। जुड़वा भाई रामू और बामू ठाकुर साहब की चापलूसी करके उसके साथ नशा करते हैं। दोनों ठाकुर साहब को मजदूर यूनियन की गोपनीय बात बताते हैं। शिबू और यशवंत के बीच यूनियन नेताओं की मौका परस्ती को लेकर गंभीर चर्चा होती है। तभी शिबू को खांसी उठती है और बलगम के साथ खून निकलता है। यशवंत उसे टीबी होने की बात बताता है। शिबू यशवंत से खुलकर बात करता है। यशवंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अब आगे।

0: 나란히! 어, 나란히! 들어가러 와서도 콜, 나란히!
1: 콜, 레이호지!
2: नेताजी आप ही साथ हैं?
3: अब शिबू की तबीयत ठीक नहीं है, जरा खटिया तक इसे पहुंचाने दे।
2: अब आइए,
3: चल चल खटिया पर लेट जा शिबू।
2: क्या हुआ आपको?
3: नारायणी, इसे टीबी हो गई है, इसे आराम और अच्छे खाने पीने की सख्त जरूरत है।
2: अच्छे खाने की? घर में खाने के लिए तो होता नहीं, अच्छा खाना कहाँ से लाऊंगी मैं?
3: जैसे भी हो, शिबू की दवा दारू भी बराबर चलती रहनी चाहिए। देख, डॉक्टर ने खास हिदायत दी है।
2: आपने इनकी मदद की, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
3: अरे एहसान कैसा नारायणी, ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। अब अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा शिबू, अपना ख्याल रखना।
0: हाँ यशवंत जी, ठीक कहते हैं, मैं अपना ख्याल।
2: आप ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा जी।
0: रोज मीटिंग होती है।
4: भैया, यूनियन का हमको तो कुछ समझ नहीं।
5: मजदूर किसान भाइयों,
4: सुनो कुछ कह रहे हैं।
5: आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मजदूर हड़ताल में किसानों का क्या काम?
4: हाँ ठीक,
5: लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूनियन किसानों के हक की लड़ाई भी लड़ रही है।
4: अच्छा,
5: ये धरती हमारी माँ है, जब तक किसान और मजदूर अपने अधिकारों के प्रति चौकस नहीं होंगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं।
4: ये बात तो सही,
5: हमें एक होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी।
6: मजदूर किसान एकता
7: जिंदाबाद,
6: मजदूर किसान एकता
7: जिंदाबाद,
6: मजदूर किसान एकता
7: जिंदाबाद,
6: इंकलाब
7: जिंदाबाद,
6: इंकलाब
7: जिंदाबाद,
6: इंकलाब।
5: शांत साथियों, शांत। यूनियन चाहती है कि जमीन रखने की सीमा 150 बीघा से घटाकर 60 बीघा कर देनी चाहिए।
4: हाँ, 60 बीघा
5: से तो जमीन से किसानों को खदेड़ना बंद होना चाहिए।
4: हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
5: अधिया पर खेती करने वालों को जमीन पर पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कर लेना बंद होना चाहिए। होलसेल व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ब्याज का इंतजाम हो, और भी बहुत से नियम बनाने चाहिए। लेकिन इन मांगों को पूरा करवाने के लिए मजदूरों और किसानों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल को सफल बनाना होगा। किसानों मजदूरों को क्रांति करनी होगी, क्रांति।
6: मजदूर किसान एकता
2: शास्त्री जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
8: शास्त्री जी, कहाँ है शास्त्री जी? शास्त्री जी तो अभी तक आए नहीं हैं।
2: क्या, शास्त्री जी अभी तक नहीं आए? तो तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें शास्त्री जी समझ रही थी।
8: यशवंत, लगता है ये महिला पहली बार सभा में आई है, इसे बता कि हम कौन है।
3: अरे नारायणी
2: जी,
3: नारायणी, ये शास्त्री जी के एजेंट बलबीर स्वामी है।
2: एजेंट? ये एजेंट का क्या मतलब होता है?
3: एजेंट अंग्रेजी का शब्द है नारायणी।
2: अब मैं क्या जानू अंग्रेजी विंग्रेजी?
3: एजेंट को अपनी हिंदी भाषा में दलाल कहते हैं।
5: ए, ए, ए, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? और ये किस पे हंस रहे हो तुम लोग?
2: दलाल पर तो जमाना हंसता है, फिर हम तुम पर हंस रहे हैं, तो इसमें हैरानी की क्या बात है?
5: क्या कहा, मैं और दलाल? नहीं, मैं तो शास्त्री जी का सहायक हूँ। सहायक?
2: लगता है दलाल को अब सहायक कहा जाने लगा है। कोई बात नहीं, सहायक जी बताइए तो जरा, हड़ताल कब तक चलेगी?
5: हड़ताल? हाँ, 15 दिन के भीतर कंपनी हमारे आगे झुक जाएगी। कंपनी को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी, तब हर मजदूर खुशहाल होगा।
6: इस बात की गारंटी दे सकते हैं?
9: बताइए क्या गारंटी है इस बात की?
5: देखिए, अभी हमारे बीच शास्त्री जी आने वाले हैं और गारंटी भी वही देंगे। भाइयों, शास्त्री जी हमारे बीच आ चुके हैं।
0: अरे
5: आप लोग जोरदार तालियां बजाकर शास्त्री जी का स्वागत कीजिए। अब मैं यूनियन के दलित प्रतिनिधि यशवंत से अनुरोध करूंगा कि वो शास्त्री जी को मजदूरों की ओर से गुलाब के फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत करें। लो ये हार लो और शास्त्री जी के गले में डाल दो।
3: लाइए बलवीर भाई। शास्त्री जी लीजिए।
10: धन्यवाद धन्यवाद साथियों। साथियों आज हमने दलित के हाथों हार पहनकर दलितों को सम्मान दिया है। हमारी नजर में दलित भी इंसान है, उनके साथ भेदभाव की नीति का खात्मा होना चाहिए।
11: क्या बात है, क्या बात है।
10: हम सभी को मिलकर इस दिशा में पहल करने की जरूरत है।
5: शास्त्री जी
7: जिंदाबाद।
5: शास्त्री जी
7: जिंदाबाद।
5: शास्त्री जी संघर्ष करो,
7: हम तुम्हारे साथ हैं।
5: शास्त्री जी संघर्ष करो,
7: हम तुम्हारे साथ हैं।
5: दलित नेता यशवंत भाई
7: जिंदाबाद। जिंदाबाद।
5: दलित नेता यशवंत भाई
7: जिंदाबाद। जिंदाबाद।
10: साथियों साथियों, यूनियन आप लोगों के लिए 2 साल से आंदोलन कर रही है। यह हड़ताल आर पार की लड़ाई होगी। मजदूर किसानों को आशंका सता रही होगी कि हड़ताल के लिए धन कहां से आएगा। धन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनियन की देश भर में 7 शाखाएं खुल चुकी हैं। हर शाखा से धन आएगा। दिल्ली मुख्यालय ने भी मदद करने का आश्वासन दिया है।
2: बलबीर स्वामी ने कहा है कि कंपनी 15 दिनों के अंदर हमारी शर्तें मान लेगी। क्या आप इस बात की गारंटी देंगे?
10: 15 दिन लगे या महीना, कंपनी को हमारी शर्तों के आगे झुकना ही होगा। साथियों मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई भी मजदूरों का साथ दे रहे हैं। जब किसान भाइयों के हित की बात आएगी तो मजदूर भाई भी किसान भाइयों के साथ खड़े होंगे। इस बात का सबूत आज यहाँ किसान भाइयों की मौजूदगी है।
11: किसान मजदूर एकता।
10: मुझे सूचना मिली है कि सरप्लस मजदूरों की लिस्ट लगा दी गई है, छटनी की जाने वाली है। कंपनी के इस हिमाकत का विरोध करने के लिए हमारे पास हड़ताल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या हमारे मजदूर हड़ताल के लिए तैयार है?
2: क्या होगा हड़ताल से? कंपनी कहती है कि काम नहीं तो पगार नहीं। पगार बिना हम अपना पेट कैसे भरेंगे? क्या इन भाषणों से? नहीं नहीं, हमें नहीं करनी हड़ताल।
9: हाँ, हमें नहीं करनी हड़ताल, नहीं करनी हड़ताल।
3: अरे नारायणी, ये तू क्या गजब कर रही है? इस वक्त तेरा शांत रहना ही अच्छा होगा।
12: अरे यशवंत, तू नारायणी के कान में क्या फुसफुसा रहा है रे? ठीक ही तो कह रही है नारायणी। अरे हड़ताल करवा कर क्यों तू चीलो गिद्धों को निमंत्रण दे रहा है?
13: भाइयो, हम नारायणी की बात का समर्थन करते हैं। हम हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।
9: हम हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।
10: साथियों साथियों साथियों, मेरी बात सुनो। आज हम हड़ताल की तारीख घोषित करने वाले थे, मगर लगता है कि हमारे बीच कंपनी के कुछ चमचे भी मौजूद हैं, जो कंपनी के इशारे पर मजदूरों के बीच फूट डालना चाहते हैं। हमारा आंदोलन शुरू होने से पहले ही इसे नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, मगर हम कंपनी के इन दलालों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे।
13: भाइयों, ये शास्त्री झूठ बोल रहा है। अरे चलो भाई चलो, पेट पालने का इंतजाम करें, घर पर बच्चे राह देख रहे होंगे। अरे चलो चलो।
9: भाइयों, भाषणों से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी पड़ती है।
10: सारे किए कराए पर पानी फिर गया।
3: क्या करें शास्त्री जी, कुछ समझ में नहीं आ

0: इस पत्थर को क्या देख रहे हो यशवंत?
1: अब्बा,
0: इस पर स्वतंत्रता आंदोलन में 1921 में शहीद हुए अनाम लोगों के नाम खुदे हुए हैं।
1: हाँ, वही पढ़ रहा हूँ। अरुण कुमार उर्फ लाल आजाद, सरयू प्रसाद, भगवान सिंह, रामनाथ सिंह और गरीब हुसैन।
0: अरे यशवंत, अरे अभी तुम नौजवान हो, तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं हमें। तुम्हें बहुत बड़ा लीडर बनना है। तुम यूनियन की वर्दी का सम्मान करना सीखो। भाई, इन मरे हुए लोगों के नाम पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला।
1: बलवीर स्वामी,
0: हाँ,
1: इस पत्थर पर मरे हुए लोगों के नाम नहीं, बल्कि देश के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान न्योछावर कर देने वालों के नाम है। इन शहीदों के नाम से ही हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुर्बानी देने की प्रेरणा मिलती है। अगर तुमने इन शहीदों के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम शास्त्री के सहायक हो।
0: यशवंत, देखो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भावनाओं को पहचान नहीं सका। इन शहीदों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो देखो, इनके आगे मैं अपना शीश नवाता हूँ, ठीक है?
1: अच्छा अच्छा, खैर जाने दो। तुम कह रहे थे कि शास्त्री जी का संदेशा लेकर आए हो।
0: हाँ, शास्त्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं, अभी और इसी वक्त।
1: भला शास्त्री जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं?
0: भाई, ये तो शास्त्री जी ही बताएंगे। एक काम करो, तुम मेरे साथ अपनी साइकिल लेकर अभी चलो।
1: देखो बलवीर, मेरी अपनी कुछ शंकाएं हैं।
0: हाँ,
1: पहले उनका समाधान करो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
0: भाई, तुम्हारी तमाम शंकाओं का समाधान शास्त्री जी के पास है, जो भी पूछना उन्हीं से पूछना। अब तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो,
1: ठीक है, चलो।
2: सब ठीक हो जाएगा जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
3: नारायणी
2: जी,
3: नारायणी,
2: बोलो।
3: मेरे जैसे नकारा इंसान का मर जाना ही अच्छा है।
2: नहीं नहीं,
3: एक तो बेकार और ऊपर से बीमार।
2: पानी दो क्या?
3: नहीं, बीमारी भी कोई छोटी मोटी नहीं, टीबी है मुझे, टीबी। एक दिन मेरी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगी ये महामारी।
2: शुभ शुभ बोलो जी, औरत तभी तक जिंदा रहती है जब तक उसका सुहाग बना रहता है। इधर इधर पति ने आंख मूंदी, उधर समाज की गिद्ध दृष्टि जम गई। आपको मेरी कसम, मैं कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना।
3: नारायणी, मैं जिंदा हूं ही कहां? अरे मैं तो अपनी लाश ढो रहा हूं, अपनी लाश।
2: अरे
3: कुछ दिन बाद इस लाश से बदबू उठने लगेगी।
2: नहीं नहीं,
3: तो तुम खुद ही मुझसे घृणा करने लगोगी।
2: नहीं,
3: हाँ घृणा।
2: ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, मेरा ना सही, इस बच्चे का तो ख्याल करो। आप नहीं रहे तो इसे पिता का दुलार कौन देगा? कौन देगा इसे पिता का दुलार?
3: मैं समझता हूँ नारायणी, पर मैं क्या करूँ, क्या करूँ नारायणी, मैं क्या करूँ, क्या करूँ नारायणी?
2: ये क्या? आप तो रोने लगे।
3: अरे नारायणी, रोना तो क्या करूँ, कितना विवश हूँ मैं। अरे मुझे किसी का पति, किसी का पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं।
2: अगर आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आप चिंता ना कीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, आपका इलाज कराऊंगी, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, जल्दी अच्छे हो जाएंगे।
3: नहीं नारायणी, नहीं। देखो नारायणी, मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता।
2: नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है।
3: मेरी बात सुनो, तुम मेरी ब्याहता हो, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं कमाऊं और तुम घर संभालो।
2: लेकिन
3: मगर देखो, मेरी किस्मत देखो। कमाने तुम जाती हो और घर में मैं पड़ा रहता हूँ। मैं अपंग बनकर पड़ा रहता हूँ।
2: ऐसा ना कहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, हमारे दिन भी फिरेंगे और फिर सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। हर रात के बाद भोर का उजियारा होता है, हमारी जिंदगी में भी सुख का उजियारा जरूर आएगा।
3: नहीं रानी, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
2: सुख का उजियारा जरूर आएगा, यकीन मानिए, आप ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे आप आराम कीजिए, आराम कीजिए।
3: नहीं होगा,
2: मुन्ना जा क्या है, मैं इसे चुप कराती हूँ।
3: जा, जा, तू इसे जाकर चुप करा, मेरी बात छोड़, मैं आराम करता हूँ। जा, तू मुन्ने को संभाल, जा।
2: ना रो मुन्ने, ना रो, चुप हो जा मेरी लाडली। मैं तेरे लिए मेले से खिलौना लाऊंगी। हाँ मेरे बेटे, मैं तेरे लिए खिलौना लाऊंगी, गुड़िया लाऊंगी तेरे लिए। चुप हो जा मेरी लाडली, चुप हो जा मेरा बेटा। अरे तू तो और जोर से रोने लगा, लगता है तू भूखा है। मैं तुझे दूध पिलाती हूँ।
3: दूध पिलाती हूँ, दूध पिलाएगी कहाँ से? अरे शरीर में जान होगी तो दूध पिलाएगी ना, दूध पिलाएगी।
4: Oh, my God.

0: राम राम शास्त्री जी।
1: राम राम, तो आ गया यशवंत
0: जी। बलवीर स्वामी ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है।
1: हाँ यशवंत, मुझे तेरे से जरूरी बात करनी है।
0: शास्त्री जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
1: उस दिन कंपनी के दलालों ने सभा को सफल नहीं होने दिया। कंपनी नहीं चाहती कि दलित मजदूरों और दूसरे मजदूरों को उनका अधिकार मिले, और यही वजह है कि हमें बलबीर को तुम्हारे पास भेजना पड़ा। ये बलबीर कहाँ रह गया?
0: जी वो बाहर किसी से बतिया रहा है, बस आता ही होगा।
2: मैं हाजिर हूँ शास्त्री जी। जी
1: हाँ हाँ बलबीर
2: जी। जी
1: अब हम असल बात शुरू करते हैं।
0: शास्त्री जी आप बात शुरू करें।
1: देख यशवंत, तो दलितों का नेता है
0: जी,
1: सभी तेरा सम्मान करते हैं, तेरी बात मानते हैं।
0: सो तो ठीक है।
1: मुझे लगता है कि तेरे समाज के कुछ लोग हड़ताल के पक्ष में नहीं है।
0: नहीं नहीं शास्त्री जी, ऐसा नहीं है।
1: ऐसा ही है यशवंत, बिल्कुल ऐसा ही है। सभा वाले दिन हड़ताल के विरोध में उस स्त्री ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। वो स्त्री दलित लाइन में ही रहती है ना?
0: कौन? नारायणी?
1: हाँ शायद यही नाम होगा उसका। शायद वो कंपनी के अधिकारियों से मिली हुई है।
0: नहीं शास्त्री जी, नहीं शास्त्री जी, आपका शक बिल्कुल गलत है। नारायणी ऐसा नहीं कर सकती।
2: तो फिर उसने उस दिन हड़ताल का विरोध क्यों किया था?
0: अरे बलवीर, उसके पीछे कोई दूसरा कारण हो सकता है। अगर हड़ताल का मकसद हमारे हित से जुड़ा है तो उसे समझाने का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा।
1: गुड, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पैक पिएगा?
0: जी शास्त्री जी, मैं पीता नहीं।
1: हाँ पीना भी नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज है ये शराब। भाई हमने यूनियन का स्थानीय अध्यक्ष बलबीर स्वामी को बना दिया है, क्यों?
0: लेकिन शास्त्री जी, वो पहले वाले अध्यक्ष का क्या हुआ?
2: शास्त्री जी को उस पर विश्वास नहीं रहा।

0: कंपनी के साथ मिलकर हड़ताल को बीच में ही खत्म करवा सकता है।
1: फिर तो उसे हटाकर अच्छा ही किया। कंपनी से ज्यादा हमें अपने बीच के गद्दारों से खतरा है।
2: बिल्कुल ठीक कहा तूने, बिल्कुल ठीक। अब एक बात ध्यान से सुन।
1: जी।
2: दलित मजदूरों का जिम्मा तुझ पर रहा।
1: हाँ।
2: बलबीर स्वामी कल जाकर कंपनी के अधिकारियों को हफ्ते भर का नोटिस देगा, ठीक है?
1: जी।
2: अगर नोटिस पर कंपनी ने संज्ञान न लिया तो 20 तारीख से हड़ताल होगी।
1: सो तो ठीक है शास्त्री जी, लेकिन मजदूर मुझसे कुछ सवाल भी कर सकते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दूंगा?
2: कैसे सवाल?
1: वो हड़ताल से होने वाले नफा नुकसान का सवाल उठा सकते हैं।
0: हाँ शास्त्री जी, अब मजदूरों का दिल जीतने के लिए हमारे पास ठोस जवाब तो होना ही चाहिए ना।
2: यशवंत
1: जी,
2: तू अपने इलाके में दलित मजदूरों की सभा का आयोजन कर।
1: ठीक है,
2: मैं बलबीर स्वामी को सब समझा दूंगा। नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
1: जी।
2: रही बात नफे की, तो हड़ताल होने से नफा ही नफा है। बता कब होगी ये सभा?
1: शास्त्री जी, कल शाम को ठीक रहेगा?
2: हाँ ठीक रहेगा।
1: मेरा आपसे एक अनुरोध है।
2: अरे तू तो अपना खास आदमी है, अनुरोध क्यों करता है? तेरा तो हक है हम पर, अपना हक समझ कर क्या बोल।
1: इतना सम्मान देने के लिए शुक्रिया शास्त्री जी, वो मैं चाहता हूँ कि नोटिस कल की बजाय परसों दिया जाए।
2: ऐसा क्यों चाहता है तू?
1: शास्त्री जी, मैं चाहता हूँ कि नोटिस सभा में सबके सामने पढ़कर सुनाया जाए। इससे मजदूरों के मन में रही सही शंका भी जाती रहेगी और मजदूर दिल खोल कर हमारा साथ देंगे।
2: भाई बहुत खूब यशवंत। तू मजदूरों की नब्ज अच्छी तरह पहचानने लगा है।
1: अरे शास्त्री जी।
2: ऐसा ही होगा।
1: अब शास्त्री जी, अगर अब मेरी जरूरत ना हो तो मैं चलना चाहूंगा, वो कल की सभा की तैयारियां भी करनी है ना मुझे।
2: ठीक है यशवंत, तू जा।
1: अच्छा शास्त्री जी, नमस्कार।
2: नमस्कार। ये तूने बहुत अच्छा किया बलबीर स्वामी, जो इस दलित नेता को अपने वश में कर लिया। अरे स्थानीय राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यशवंत को अपनी मुट्ठी से निकलने मत देना, समझा? ये आदमी हमारे लिए दूर की कौड़ी है। हाँ।
0: आखिर सहायक किसका हूँ? आपका शास्त्री जी, आपका। मैं तो बस आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ।
2: बलबीर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे सर पर बना रहेगा।
0: शास्त्री जी, हड़ताल में चंदा भी तो खूब आएगा ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी।
2: देख बलबीर, यूनियन के चंदे से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। भाई अब अध्यक्ष तू है, अरे यूनियन के फंड का तू जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करना है।
0: धन्यवाद शास्त्री जी, धन्यवाद। अब शास्त्री जी, अंधेरा हो चुका है, आप कहें तो अंदर से गिलास और सोडा ले आऊं।
2: जा जा जा, जा ले जा।
0: जी शास्त्री जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, ज

0: देख मेरी बात को समझने की कोशिश कर नारायणी, हड़ताल हम लोगों के भले के लिए ही हो रही है।
1: क्या हमारे भले के लिए? नेताजी, क्या भूखे पेट रहने में ही हमारी भलाई है? बच्चों को भूख से तड़पता देखने में हमारी भलाई है? नहीं नहीं, ऐसी भलाई ना तो आज तक मैंने कभी देखी है और ना सुनी है।
0: देख नारायणी, कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। त्याग कल के सुनहरे भविष्य की नींव है। और देख, नींव जितनी मजबूत होती है उस पर बनने वाली इमारत उतनी ही टिकाऊ होती है।
1: वाह वाह नेताजी वाह, तो आपने भी धूर्त नेताओं वाले तमाम लटके झटके सीख लिए। आपको तो बधाई देनी चाहिए बधाई।
0: खामोश खामोश हो जा नारायणी, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही नेतागिरी करनी आती है मुझे। अरे मैं तो अपने दलित भाइयों का भला चाहता, अपमान और शोषण की जिंदगी

0: ही से दलित मजदूरों को उबारना ही मेरा मकसद है नारायणी।
1: अच्छा, तो जरा मैं भी तो सुनूं कि हड़ताल हमारा किस तरह भला करेगी।
0: अब वो यूनियन के अध्यक्ष बलबीर स्वामी आज शाम हम लोगों के बीच आएंगे और वही सारी बातें समझाएंगे।
1: समझाएंगे समझाएंगे या बहकाएंगे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो हमें हड़ताल में शामिल होने के लिए विवश करेंगे।
0: देख नारायणी, मैं तुझे अपना समझकर समझा रहा हूँ। हाँ।
1: क्या आप मुझे अपना समझते हैं?
0: अरे नारायणी, वो मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल। देख, मेरी बात मान और शाम को होने वाली सभा में अपनी जुबान बंद रखना, समझी?
1: ठीक है, मैं अपना मुंह सी लूंगी।
0: अच्छा, अब चलता हूँ।
2: अम्मा, अम्मा।
3: अरे कौन है रे?
2: मैं हूँ अम्मा, तेरा बेटा भृगु।
3: भृगु बेटा।
2: और अम्मा, ये तेरी पोती पार्वती भी है।
3: अरे भृगु बेटा, तुझे अपनी बूढ़ी माँ की सुधा आ गई है। अरे बेटा, तुझे देखने को तो हमारी आंखें कब से तरस रही थी। आजा बेटा, आजा। ओ पार्वती, आजा
1: दादी।
2: अम्मा, अब हम हमेशा के लिए आपके पास आ गए हैं।
1: हाँ दादी, अब हम आपके साथ रहेंगे।
3: ये क्या कह रही है पार्वती?
1: दादी, बापू को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है।
3: क्या?
2: हाँ,
1: अब हम यहीं रहेंगे। बापू को यहाँ कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा।
3: ना पार्वती, ना, यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा बेटा।
2: ये तुम क्या कह रही हो अम्मा?
3: हम सच कह रहे हैं बेटा। अरे मजूरन की हड़ताल होने वाली है ना।
1: क्या?

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत कोई भी पंचायत सचिव अपने गृह ग्राम या ससुराल की पंचायत में नहीं रह सकेगा। जिस पंचायत में सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उप सरपंच बन जाएगा, वहां से भी तबादला किया जाएगा। और प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 5,39,00,000 से अधिक हितग्राहियों को 74,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मुफ्त अनाज बांटा जाएगा।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी। मैं हूं आपका दोस्त आयुष सक्सेना। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने पश्चिम एशिया में तनाव को बढ़ा दिया है, और इसका असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा स्रोत, सुरक्षा और विदेश नीति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। भारत की विशेष स्थिति ये है कि उसके अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। ऐसे में भारत ने संतुलित और सावधानीपूर्ण रुख अपनाते हुए शांति और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। इस संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि, व्यापारिक मार्गों पर खतरा और दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आए हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम में समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने क्या रुख अपनाया है और भारत सरकार ने अपने नागरिकों तथा राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। भारत के लिए ये स्थिति काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों देशों के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। एक ओर अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है, वहीं इजराइल रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भारत का करीबी सहयोगी है। दूसरी तरफ ईरान भी भारत के लिए ऊर्जा और तेल के स्रोत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है। ऐसे में भारत ने इस पूरे संघर्ष के दौरान संतुलित और शांतिपूर्ण रुख अपनाने की कोशिश की है। भारत सरकार ने शुरुआत से ही कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीतिक माध्यम से होना चाहिए। भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता दूसरे देशों में और पश्चिम एशिया में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर रही है। वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय छात्र, कामगार और व्यवसायी रहते हैं। संघर्ष बढ़ने के बाद भारत ने अपने दूतावासियों के माध्यम से भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की और लगातार स्थिति पर नज़र रखी। ज़रूरत पड़ने पर भारतीयों को सुरक्षित निकालने की तैयारी भी की गई। विदेश मंत्रालय लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है ताकि लोग सुरक्षित क्षेत्रों में रहें और अनावश्यक यात्राओं से बचें। इसके अलावा भारत के सामने आर्थिक चुनौतियाँ भी खड़ी हुई हैं क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का काफ़ी तेल विदेशों से आयात करता है और पश्चिम एशिया तेल आपूर्ति का प्रमुख क्षेत्र है। युद्ध बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली है। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत, महंगाई और परिवहन लागत पर भी पड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है
1: परिवहन।
0: इसके अलावा भारत के सामने आर्थिक चुनौतियाँ भी खड़ी हुई हैं क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का काफ़ी तेल विदेशों से आयात करता है और पश्चिम एशिया तेल आपूर्ति का प्रमुख क्षेत्र है। युद्ध बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेज़ी देखने को मिली है। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत, महंगाई और परिवहन लागत पर पड़ा है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा व्यापारिक मार्गों का है। पश्चिम एशिया के समुद्री रास्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि संघर्ष बढ़ता है और समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो भारत के व्यापार और आयात निर्यात पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत ने अब तक काफ़ी संतुलित और समझदारी के साथ स्थिति को संभालने की कोशिश की है। भारत की विदेश नीति हमेशा शांति, संवाद और वैश्विक स्थिरता पर जोर देती रही है। यही कारण है कि भारत लगातार सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील कर रहा है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि कैसे ये संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका प्रभाव देश विदेश के बाजारों पर भी दिखाई देता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। अगर हम भारतीय रुपये की बात करें तो जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित माने जाने वाली संपत्तियों और मुद्राओं की ओर रुख करते हैं। ऐसी परिस्थिति में विदेशी निवेश का प्रवाह प्रभावित हो सकता है जिसका असर रुपये की स्थिति पर पड़ता है। रुपये में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव आयात और निर्यात पर भी दिखाई देता है। इस विषय पर आगे भी हम चर्चा करेंगे एक प्यारे से गीत के बाद।

दोस्तों, पहले भाग में हमने अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस अपील की जिसने देश भर में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कुछ समय के लिए संयम और जिम्मेदारी के साथ आर्थिक निर्णय लेने का आग्रह किया है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बचत करने, सोने की अनावश्यक खरीदी से बचने, स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने तथा संसाधनों को सोच समझकर उपयोग करने की बात की है। लेकिन सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी अपील क्यों की? दरअसल भारत अपनी ज़रूरत के एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। कच्चा तेल, सोना और कई अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं विदेशों से आती हैं। जब पश्चिम एशिया जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले तेल की कीमतों में असर पड़ता है। तेल महंगा होने का मतलब है कि भारत को अब वही तेल खरीदने के लिए पहले से अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। इसी तरह भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में से एक है। जब हम विदेशों से अधिक सोना खरीदते हैं तो उसके बदले भी बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च करते हैं। यदि ऐसे समय में तेल और सोने दोनों का आयात बढ़ जाए तो देश के विदेश मुद्रा भंडार पर ज़्यादा दबाव पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक ताकत का महत्वपूर्ण आधार होता है। इसी के माध्यम से देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, आवश्यक वस्तुओं का आयात करता है और आर्थिक संकटों का सामना करता है। इसलिए सरकार चाहती है कि वर्तमान परिस्थितियों में देशवासी थोड़ा सावधानी बरतें ताकि अनावश्यक आयात कम हो और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। यदि करोड़ों लोग थोड़ी थोड़ी बचत करें, पेट्रोल और डीजल का समझदारी से उपयोग करें और विदेशों से आने वाली वस्तुओं की खरीद कम करें तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने इसे केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी और देश हित से जुड़ा विषय बताया है। अब बात करते हैं कि हम युवा इस दिशा में क्या योगदान दे सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि देश की बड़ी समस्याओं का समाधान केवल सरकार या बड़े व्यवसाय ही कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में देश की ताकत उसके नागरिकों से बनती है और युवाओं की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। हम अपने जीवन में कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटी दूरी के लिए वाहन का उपयोग ना करना, सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग को अपनाना, बिजली और पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना, भारतीय वस्तुओं को प्राथमिकता देना और सोच समझकर खर्च करना। हम स्थानीय व्यापारियों और भारतीय निर्माताओं को समर्थन करके भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। जब हम स्थानीय वस्तुएं खरीदते हैं तो न केवल रोजगार बढ़ता है बल्कि देश का पैसा देश के भीतर ही घूमता है। इसके अलावा आज के डिजिटल युग में एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी है, सही जानकारी का प्रसार। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैलती हैं। एक जागरूक युवा के रूप में हमें केवल विश्वसनीय जानकारी साझा करनी चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। दोस्तों, देशभक्ति केवल विशेष अवसरों पर व्यक्त किए जाने वाली भावना नहीं है। सच्ची देशभक्ति तब दिखाई देती है जब हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं जो समाज और देश दोनों के लिए लाभदायी हों। यदि हम ऊर्जा बचाते हैं, संसाधनों का सम्मान करते हैं, जिम्मेदारी से खर्च करते हैं और देश हित को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो यही हमारी व्यवहारिक देशभक्ति होती है। और जब करोड़ों युवा ऐसा सोचने लगते हैं तो कोई भी चुनौती देश की प्रगति को रोक नहीं सकती।

दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, भारत पर उसके प्रभाव और प्रधानमंत्री जी की अपील के बारे में चर्चा की। लेकिन इस पूरे विषय से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पहलू है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा किसी भी देश के विकास की नींव होती है। उद्योगों को चलाने से लेकर परिवहन, कृषि और हमारे दैनिक जीवन तक हर क्षेत्र ऊर्जा पर निर्भर है। इसलिए किसी भी देश के लिए यह सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है कि उसे लगातार और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं भारत के कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर निर्भरता की। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देशों में से एक है, लेकिन अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब ये है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं या तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। पश्चिम एशिया के देशों से भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, इसलिए जब इस क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएँ भी बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि भारत लगातार अपनी ऊर्जा के साधनों में बदलाव लाने और नए विकल्प खोजने के प्रयास करता रहता है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसे रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहा जाता है। इसे आप देश की ऊर्जा आपातकालीन व्यवस्था भी कह सकते हैं। भारत ने विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े भूमिगत भंडार लगाए हैं जहां कच्चे तेल का संग्रह किया जाता है। यदि किसी कारण अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति बढ़ती है या अचानक कोई संकट उत्पन्न हो जाए तो इन भंडार का उपयोग करके कुछ समय तक देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हम किसी आपात स्थिति के लिए घर में आवश्यक वस्तुओं का कुछ अतिरिक्त भंडार रखते हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत की ऊर्जा

रक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन दोस्तों, केवल तेल के भंडार बनाकर रखने से ही भविष्य की सारी चुनौतियों का समाधान नहीं होता। इसलिए भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और हरित हाइड्रोजन जैसे स्रोत न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि वे भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता को भी कम करते हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में स्वच्छ और प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग और अधिक बढ़ाया जाए, ताकि देश ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, ऊर्जा सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम भी बिजली की बचत करके, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करके और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दिखाकर इस दिशा में योगदान दे सकते हैं। युद्ध और वैश्विक संकट हमें ये याद दिलाते हैं कि किसी भी देश की वास्तविक ताकत केवल उसकी सेना या अर्थव्यवस्था में नहीं, बल्कि उसकी तैयारी, आत्मनिर्भरता और दूरदर्शिता में होती है। और भारत ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारत ने हमेशा शांति, संवाद और सहयोग का मार्ग अपनाया है। साथ ही देश ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं, संसाधनों का सम्मान करें और अपने दैनिक जीवन में ऐसे निर्णय लें जो देश हित में हों। इन्हीं विचारों के साथ मैं आयुष सक्सेना आपसे विदा लेता हूँ। आशा है कि दुनिया में शांति, आपसी मेलजोल और सहयोग का वातावरण बना रहे तथा भारत निरंतर प्रगति और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल इसी समय पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अंतराल के बाद हमारा अगला कार्यक्रम।

0: सुनाते हैं आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ, 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और?
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
6: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
7: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
8: कवि हेमंत देवलेकर।
9: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म चौधवी का चांद से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है रवि का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत और मैं हूं आपके साथ साधना। अगला गीत सरस्वती चंद्र फिल्म से, मुकेश की आवाज़ है, गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म में लता मंगेशकर के साथ मुकेश को। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

फिल्म संगीत का ये गीत आप सुन रहे हैं साजन फिल्म से। एस पी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ है, गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का। इसके बाद आप सुनेंगे संगम फिल्म में लता मंगेशकर के साथ मुकेश को।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। यह विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 5,39,00,000 से अधिक हितग्राहियों को 74 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा मुफ्त अनाज बांटा जा चुका है। और सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में PV सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को हराया, वहीं तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिंचियान को मात दी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: दंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: आज अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
3: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
3: हैं। फिर क्या होता है विमलेश?
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
3: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
3: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
3: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
2: जी।
3: फिर कॉफी परोसी जाती है।
2: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
3: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
2: जी।
3: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
2: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
2: जी।
3: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
2: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
3: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
2: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

0: केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील। चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना। देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ, कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा
1: जी।
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार।

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हां,
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ, तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
4: हाँ। मतलब
0: ये कि इस नदी में इस

0: दर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: अच्छा अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
1: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
2: वांडी पेरियार?
1: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
2: जी,
1: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
2: अच्छा,
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
2: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
2: अच्छा,
1: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां

0: तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत कभी खुशी कभी गम, अलका याग्निक के साथ सोनू निगम की आवाज़ है। गीत लिखा अनिल पांडे ने, संगीत है संदेश शांडिल्य का।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं मैंने प्यार किया में लता मंगेशकर के साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम को। गीत लिखा है देव कोहली ने, संगीत है राम लक्ष्मण का।

उदित नारायण के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। लीजिए एक सूचना आपको दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना है। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटेस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों पर एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल भोपाल@प्रसारभारती.gov.in और hopearbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों के निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी के राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन

0: ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के दो सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ICC ने डॉक्टर सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। लीजिए एक नजर डालते हैं आज के शेष कार्यक्रमों पर और कल प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर में 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे ग्राम सभा। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर अमर बहादुर सिंह से ली गई भेंट वार्ता, खरीफ फसलों हेतु मिट्टी की तैयारी में सावधानियां और बुंदेली समाचार लोकरंग। रात 8 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 इंफ्रास्ट्रक्चर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 पर। रात 9:30 चर्चा का विषय, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। रात 10 नाटक तुम सही हो गार्गी, इसके लेखक हैं विमलकांत एंडे, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। इसका समय रहेगा रात्रि 10:00। 10:30 पर ब्रिक्स कृषि सम्मेलन पर विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। ये तो थे हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले आकाशवाणी और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल 8:30 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:02 पर। 9:15 पर राजेश लाल के गाए भजन आप सुन सकेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रमों में। रात सुबह 9:30 नाटक पसंद अपनी अपनी, इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी, रूपांतरकार दिनेश राय। 10:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीत सागर, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। सुबह 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12:00 आपकी फरमाइश, 12:30 संग्रहालय से में सुनिए जंग लगी तलवार का भाग 6। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होंगे।

दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 बजे आपकी फरमाइश होगी। फिल्म संगीत संध्या सभा में 5:33 पर, 6:30 पर आनंद लिया जा सकेगा। शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आपको सुनवाया जाएगा। 7:21 पर कल शाम आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा ममता वाजपेयी से ली गई भेंट वार्ता, मानसून के दौरान किचन गार्डन और बगीचे की देखभाल और बुंदेली समाचार। रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष साइंस एंड टेक। 8:35 पर फिल्म संगीत होगा। 9:30 बजे फिल्म संगीत और 10 बजे आपकी फरमाइश का आप आनंद ले सकेंगे। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में रहमत अली खां का राग रागेश्वरी में सरोद वादन आपको सुनवाया जाएगा।

हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आज उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो गए हैं, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। शाम को श्री मोदी ने भारत मंडपम में भाजपा एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहाँ सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के लालघाटी स्थित गुफा मंदिर पहुंचे और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व प्रार्थना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजन अर्चन कर भगवान हनुमान से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई पहचान बना रहा है। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने श्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि
5: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और

0: निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और केवल यही नहीं, उन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार इस देश का नेतृत्व करते रहे, इसी कामना के साथ आज इस कार्यक्रम का हमने आयोजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बार बैठक का विषय विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में समावेशी मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों मानव पूंजी, रोजगार, स्वास्थ्य एवं पोषण और सभी के लिए समानता पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल विचार विमर्श करेंगे। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने आज ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प और एक जिला एक उत्पाद योजनाओं के तहत प्रदर्शित उत्पादों में रुचि दिखाई। रीवा के GI टैग प्राप्त सुंदरजा आम और अन्य किस्मों का स्वाद लेकर प्रतिनिधियों ने उनकी गुणवत्ता की सराहना की। मंडला की मिलेट क्वीन लहरीबाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी प्रतिनिधियों को आकर्षित किया। मृगनैनी, प्रकृत शिल्क, हेम्प क्लोदिंग के स्टॉलों पर प्रदर्शित पारंपरिक एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की भी मेहमानों ने प्रशंसा की। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट और भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में कथित अनियमितताओं के आधार पर कल खारिज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 10 वर्षों में रतलाम जिले में हजारों गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्राप्त हुआ है। पेश है हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव पूर्ण जांच और सुरक्षित मातृत्व देने का अभियान रतलाम जिले में भी 10 साल पूरा कर चुका है। अब तक हजारों माताओं और नवजातों को इस योजना से नवजीवन मिला है। रतलाम के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100% प्रसव पूर्ण जाँच का लक्ष्य सफलतापूर्ण हासिल भी किया जा रहा है। विशेषकर आदिवासी अंचल में समय रहते उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनके कार्ड पर लाल स्टीकर भी लगाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रसव के 45 दिन बाद तक निरंतर फॉलो अप और महीने की 9, 8 और 27 तारीख को महिलाओं को लैब टेस्ट पूरी तरह निशुल्क हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि पिछले 5 सालों में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में अच्छी कमी आई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। इस खास मौके पर पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी कुल सचिवों और प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये नियम साल 2001 में लागू हुआ था जिसके तहत 2 से ज़्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। वहीं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कोई भी पंचायत सचिव अपने गृह ग्राम या ससुराल की पंचायत में नहीं रह सकेगा। जिस पंचायत में सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच बन जाएगा वहां से भी तबादला अनिवार्य होगा। वहीं 10 साल या उससे अधिक समय से एक ही

जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर तथा दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आज बागेश्वर धाम पहुंचकर भाजपा विधायक अरविंद पटेरिया के साथ पूजा अर्चना एवं कन्या पूजन किया। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत शहडोल जिले में जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों के पंजीयन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। मंदसौर में 132.67 करोड़ रुपये की लागत से 1000 कैदियों की क्षमता वाली आधुनिक जिला जेल के निर्माण को अंतिम स्वीकृति मिल गई है। समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल खंडवा में आयोजित की जाएगी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना परिसर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 50 ग्राम कोटवारों को पुलिस की कार्यप्रणाली, शांति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। और कटनी में छात्रों की सुरक्षा एवं बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले की जर्जर एवं मरम्मत योग्य 82 शालाओं का कायाकल्प किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनबे वाले हमारे सभी भैया हरन को भौजी बिन्ना हरन को आरती की राम राम। और भैया हरो कैसे हाल चाल है आप औरन के, और देखो कैसो काम काज चल रहा है। तो भैया हरो सांची कहें तो इतने गर्मी पड़ रही है सो दोपहरिया में कछु काम करवे को मन ही नहीं होता ही है ना, बस ऐसा लगता है कि तनक सुस्ता लें आराम कर लें। इतनी गर्मी हो रही है कहूँ बाहर भी जावे को मन नहीं हो रहा, और संजा बीरिया भी भैया आ रहा हो जा टाइम इतनी गर्मी हो रही कि काम करवे को मन ही नहीं होत। तो भैया रो देखो बात तो जो है कि बिना काम के कछु नहीं होते ही है ना, कछु काम बनाते का बिल्कुल नहीं भाई। जितनी हमारे मेहनत करें उतो ही हमें नीको फल मिले, और जितनी अपन खेतन की अगर अपन बात करें तो यदि अपन नौरे जितनी अदल बदल करके फसल बोहें उतनी अपन खेत से अच्छो लाभ ले पाएँ, अच्छी फसल अपन का मिले। तो भैया सीधी सच्ची बात करें तो देखो आज अपन अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं फसल चक्र से। भैया देखो अपने पुरखा कहते थे ना कि जैसो खाओ अन्न वैसो रहे मन, तो जो बात में पूरी दम है पूरी सत्यता छिपी है। अब भैया पहले को ज़माने में कहा होता तो कि खेतन की माटी सोना उगलती हती है ना, काहे से तब की खेती करवे को एक अलग सलीका हतो एक अलग समझदारी हती, और आज अपन जो बात कर रहे हैं वही समझदारी की यानी कि फसल चक्र यानी कि फेर बदल करके फसल बोवे की। भैया अरे तनक ठंडे दिमाग से सोचो, अगर हम रोजीना एक ही तरीका को भोजन कर रहे हैं तो ना तो अपन खा स्वाद मिले है और ना शरीर खा ताकत। ऐसी भैया रो जई सोच अपने खेतन की माटी पे भी लागू होते। अगर हमारे हर साल हर मौसम में एक ही जैसी फसल अगर लेते हैं भैया, अब जैसे जैसा

गेहूं तो अगले साल भी अपन ने गेहूं ले लाए, जा साल धान बोए तो अगले साल भी अपन धान ले रहे। तो भैया क्या होता है कि खेत की माटी के जो पोषक तत्व हैं वे सब खत्म हो जाते हैं, माटी कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर बामे बीमारी कीड़ा मकोड़ा भी लग जाते हैं सो अलग। तो भैया हरो फसल चक्र को सीधो सो मतलब है कि अपन और हेर फेर करके फसल बोए। अगर जा साल हम और गेहूँ बो रहे तो अगली साल अपन कछू दलहनी फसल जैसे चना मटर मूँग उड़द ऊखो बो दें। इससे का फ़ायदा हुआ कि देखो अपने धरती की माटी की ताकत बढ़ जाते। तो भैया हरो दलहनी फसल जैसे चना है अरहर है ई की जड़ में का होता है कि गांठे होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को खींच के माटी में जमा कर देते, तो उसे का होते भैया खेतन का कुदरती यूरिया मिल जाते। और भैया हरो दूसरे कीड़ा मकोड़ा के चक्र भी टूट जाते हैं। अगर अपन और एक ही फसल लेते रहते तो उतने कीड़ा अपनों घर बना लेते, और जब फसल अपन बदल जाए हैं बदल के वो हैं तो कीड़न को कछु जब खाए को नहीं मिले तो भैया बे अपने आप ख़त्म हो जाएँ। और एक और फायदा बताएं आपको, इसे का है कि अपन खरपतवार से भी अपन खां छुटकारा मिलते, पानी की बचत होते। काहे से भैया रे कछु फसल में पानी कम लगते और कछु फसल में पानी ज़्यादा चाहने होते, तो यदि हम और अदला बदली करके फसल बोत हैं तो भैया देखो पानी की बचत होते, कुआं बोरिंग को पानी भी बचत है। और एक ज़रूरी बात आपको और बता दें भैया रो कान खोल के सुन लो कि हमेशा अपन का जब बात याद में रखने हैं कि पहले जब अपन जैसा अगर गहरी जड़ वाली फसल यानी कि अरहर या कपास बो रहे तो अगली साल हम उथली जड़ वाली फसल जैसे गेहूं है धान है ऊखो बोए। इसे माटी के हर कोने से बराबर अपन को पोषण मिलत रहे। तो आज के ज़माने में भैया हम तो ये कहें कि खेती की लागत तो देखो बढ़ती जा रही है ना, खाद और दवा में हम और कितों पैसा लगाते। अगर हम फसल चक्र के तरीका से खेती करते हैं फसल चक्र अपनाते हैं तो भैया रासायनिक खाद की ज़रूरत आधी रह जाए, और जब लागत कम हुई है पैदावार अच्छी हुई है तो भैया मुनाफा तो अपने आप दुगना हो जाए है ना। तो भैया हर चतुर किसान कहता है ना कि वही है जोन बाजार देख के माटी परख के खेती करते। तो आज के बाजार में भैया दालन को तिलहन वाली फसल को कितो अच्छो दाम मिल रहा हो जो तो हम सभी जानते हैं, तो काहे फिर हम एक ही जैसी फसल लें। तो भैया हमेशा याद रखें अपन का फसल चक्र अपनाने हैं अपनी खेती में, उसे का है माटी की सेहत अच्छी रहे, और जब फसल अच्छी मिले तो भैया जब धरती मैया खुश हुए तो घर में लक्ष्मी भी आए है ना। तो भैया जे तो हो गई हमारे किसान भैया हरन की बात चर्चा। अब अपने कछु भैया हरें ऐसे हैं जौन लकड़ी को काम बड़ो अच्छो कर लेते, राजमिस्त्री को काम बड़ो अच्छो जानते है ना, लोहे को काम है कुम्हारी को काम है, जे सब काम बड़े अच्छे से कर रहे। तो अब उनके काम को बढ़ावे के लाने उन्हें आत्मनिर्भर बनावे के लाने भैया देखो शासन कई योजनाएं चला रही है, और उन्हीं योजनाओं में से भैया एक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इको भैया उद्देश्य भी जो ही है कि जौन अपने पारंपरिक कारीगर भैया हरे हैं उन्हें पहचान मिले उनके काम को सम्मान मिले, तो जी के लाने शासन उन्हें विश्वकर्मा सर्टिफिकेट देते और संगे संगे एक आईडी कार्ड यानी

अपने पारंपरिक कारीगर भैया हरे हैं उन्हें पहचान मिले, उनके काम को सम्मान मिले, तो जी के लाने शासन उन्हें विश्वकर्मा सर्टिफिकेट देते और संगे संगे एक आईडी कार्ड यानी पहले तो जी के लाने शासन उन्हें विश्वकर्मा सर्टिफिकेट देते और संगे संगे एक आईडी कार्ड यानी

से लिंक होने चाहिए, है ना। संगे संगे राशन कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी चाहेंगे। तो भैया आप ये सब चीज़ें जब आप लेके जाओ CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र में, तो उतने भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दें हैं। और जब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाए है भैया, तो आपको जब मोबाइल पे जानकारी आ जाए तो आप जी को लाभ उठा सकते हो और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो भैया देखो, काम की बात करें तो काम में भी मन तभी लगाते ना जब कछु बीच बीच में अपना मनोरंजन भी होता रहे। तो भैया चर्चा अपन आगे करत रहें, अब काहे ना एक लोकगीत आप सबको सुनवादा हो जाए। तो चलो हम और आप सुनते हैं रतनलाल कुशवाहा साथियों के स्वर में ये दादरा।

0: तो भैया अब हम आपको जानकारी दिलावे जा रहे हैं मछली पालन के लिए तालाबों की तैयारी। और हमारे कई भैया हरे हैं जो देखो खेती तो करते हैं, संगे संगे मत्स्य पालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, काहे से उमे भी अच्छा लाभ मिलते हैं। तो उनके लाने तो भैया जानकारी बड़ी ही उम्दा रहे। तो चलिए आपको हम जानकारी दिलवाते हैं श्री BL मीणा जी से, और इनसे भेंट कर रहे हैं श्री सोहन सिंह। तो चलो भैया हरे चलते हैं डॉक्टर श्री BL मीणा जी के पास और लेते जानकारी मछली पालन के लिए तालाबों की तैयारी जय विषय पे।
1: किसान भाइयों, हम खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय करते हैं। जहाँ पर सुविधाएं होती हैं उद्यानिकी के पौधे भी लगाते हैं, और जहाँ पर तालाबों की सुविधाएं होती हैं वहाँ पर मछली पालन भी करते हैं। बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात के पूर्व जो हमारे तालाब हैं उनकी किस तरह तैयारी की जाए जिससे भविष्य में उत्तम गुणवत्ता का मछली पालन किया जा सके। मछली पालन के पूर्व तालाबों की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं संयुक्त संचालक मत्स्य श्री BL मीणा। मीणा साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मीणा साहब, जहाँ पर हमारे मछली पालक भाइयों के पास तालाब हैं वो किस तरह अपने तालाबों की देखरेख करें, किस तरह उनको बनाएं जिससे मछली पालन है सफलतापूर्वक किया जा सके।
2: धन्यवाद सर। किसान बहनों भाइयों, मछली पालन के लिए प्राथमिक आवश्यकता तालाब की होती है। नील क्रांति योजना अंतर्गत स्वयं की भूमि में स्वयं के व्यय अथवा बैंक ऋण से आप तालाब बनाते हैं तो 7 लाख रुपया देने का प्रावधान है, जिसमें सामान्य जाति या OBC के लिए 40% अनुदान राशि है और SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 60% अनुदान राशि दी जाती है। इस प्रकार आप अपने स्वयं की भूमि में तालाब बनाकर मत्स्य पालन कर सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, तो वो निराश ना हो उसके लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत तालाब 10 साल के लिए पट्टे पर उपलब्ध कराए जाते हैं। 1 से 10 हेक्टेयर का जल क्षेत्र ग्राम पंचायत के माध्यम से 10 साल के लिए पट्टे पर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें लागत बहुत कम है और फायदा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि लीज राशि मात्र 500 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष वर्ष आती है पट्टे की। इसी प्रकार 10 से 100 हेक्टेयर का जो जल क्षेत्र जनपद पंचायत के माध्यम से स्थानीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को 10 साल के लिए पट्टे पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी लीज राशि मात्र 200 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष है। इसी प्रकार 100 हेक्टेयर से ऊपर का जो जल क्षेत्र है वो जिला पंचायत के माध्यम से स्थानीय मछुआ सहकारी समितियों को 10 साल के लिए पट्टे पर उपलब्ध कराया जाता है। पट्टे पर प्राप्त जलाशयों में मछली पालन के लिए पट्टा राशि मत्स्य बीज इम्पुस्ट के लिए भी विभाग के द्वारा 1,50,000 रुपये अनुदान राशि मछुआ सहकारी समितियों को दी जाती है। जो ग्राम पंचायत के 1 से 10 हेक्टेयर के तालाब है उसके लिए मछुआ सहकारी समिति का होना आवश्यक नहीं है। स्थानीय लोगों को जो उसी ग्राम पंचायत में निवास करते हैं प्रथम प्राथमिकता जो वंशानुगत मछुआ जाति के व्यक्ति होते उनको दी जाती है। अगर वो उपलब्ध ना होने की दशा में अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को अथवा सामान्य व्यक्तियों को भी 10 साल के लिए पट्टा दिया जाता है। इसी प्रकार जब आपके पास तालाब उपलब्ध हो जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा मौसम है, बारिश लगने वाली है और तालाब की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए तालाब की गहराई कम से कम

0: से 1.5 मीटर होना बहुत आवश्यक है। शासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं में तालाब बनाए जा रहे हैं, इसके पट्टे के द्वारा भी आप लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं, और नहीं किए हैं तो आप जो भी चिन्हांकित तालाब है इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य पालन अधिकारी सहायक संचालक कार्यालय स्थापित है, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं। नवीन तकनीकी में देवास जिले में एक किसान है जिसने 3 एकड़ मतलब 108 मेट्रिक टन मछली प्रति वर्ष उत्पादन ले रहा है, लेकिन बहनों भाइयों इसमें लागत भी बहुत ज्यादा है। लागत 52 लाख की है, एक साल में लागत निकाल के लाभ भी 56 लाख का है। पुराना जमाना गया, प्राकृतिक संसाधनों पर जीवित रहना चाहते थे, आजकल विभिन्न प्रकार की नवीन नवीन तकनीकी चल रही है, इसके अंतर्गत विभाग के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है, आउट ऑफ स्टेट विजिट कराई जाती है, जहाँ पे अच्छा उत्पादन भावी किसान भाइयों को पहुँचाया जाता है, वहाँ से आप लोग सीख के आए। जैसे जब आपका तालाब है तो उसके लिए बरसात से पूर्व अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसकी डिसल्टिंग करना बहुत ही आवश्यक है। डिसल्टिंग का मतलब होता है कि उसको बखर दिया जाए और उसमें चूना का छिड़काव किया जाए। चूना जो है पीएच वैल्यू के लिए बहुत ही आवश्यक है, इससे मतलब एक प्रकार की खेती है, इसमें जैसे कि खाद बहुत जरूरी है, तो इसके लिए गोबर भी डालना बहुत आवश्यक है। गोबर डालने से उसकी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, प्लैंकटन बनेंगे, और मछली के लिए प्लैंकटन बहुत आवश्यक है। जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन दो प्रकार के होते हैं, तो जू प्लैंकटन जो होता है वो मछली का भोजन होता है। अब जैसे ही आपके तालाब में पानी प्रवेश करता है, पानी बाहर निकलता है, दो स्थान होते हैं, एक तो तालाब में पानी आएगा वहाँ पे भी आप जाली लगा सकते हैं, और जहाँ से पानी निकास होगा वहाँ पे भी आप जाली जरूर लगाएं ताकि उसमें अनावश्यक मछलियाँ ना आए, और आपका जो मछली संचयन करेंगे उसमें मछली का बच्चा बाहर ना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है। इसके साथ ही जैसे ही तालाब आपका पानी भर जाता है उसमें खरपतवार जैसे खेती के साथ साथ अनावश्यक वनस्पतियाँ पैदा हो जाती है, ऐसी अनावश्यक मछलियाँ रहती है, उसको समाप्त करने के लिए महुआ की खल्ली सबसे बेस्ट साधन है, ये आप तालाब में डाल सकते हैं ताकि जो मांसाहारी मछली है जो अन्य मछलियों को खा जाती है वो उसमें समाप्त हो जाएगी। पालने योग्य जो मछली है कतला है, रोहू है, मृगल है, ये देसी कार्प है। कतला एक साल में 3 केजी तक की हो जाती है, तालाब के सरफेस फीडर यानी तालाब की ऊपरी सतह का भोजन करती है। रोहू मछली जो है तालाब के मध्य स्तर का भोजन करती है जो 1 केजी तक की हो जाती है 12 महीने में। रोहू मछली बॉटम फीडर यानी तालाब की निचली सतह का भोजन करती है 1 केजी तक की हो जाती है। इसी प्रकार विदेशी कार्प में सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प प्रमुख रूप से पाली जाती है। सिल्वर कार्प 3 केजी तक की एक साल में हो जाती है, ग्रास कार्प 3 केजी तक की हो जाती है। ग्रास कार्प नाम से ही लग रहा है कि जिस तालाब या जलाशय में एक्वेटिक बीड्स है, जली पौधे हैं, हाइड्रेला प्लांट्स है, उसमें डालेंगे वो बहुत अच्छी बढ़त करेगी। इसके साथ ही कॉमन कार्प आप बहुत अच्छी पड़ जाती है। कॉमन कार्प मछली उन तालाबों में डालें कि जो तालाब मौसमी है, ये मछली बहुत अच्छी बढ़ती है। और इसके साथ ही जो बड़े बड़े सिंचाई जलाशय हैं जिनमें 12 मासी पानी रहता है उनमें नेचुरल फीडिंग रहती है, उसमें फीडिंग डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अपने ग्वालियर में पेशारी सिंचाई जलाशय और बड़े बड़े जलाशय हर्षी डैम है, तो इनके लिए प्राकृतिक भोजन ही पर्याप्त होता है, सिर्फ मत्स्य संचयन किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि मत्स्य बीज दो प्रकार का होता है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। पेरेंटिक केयर यानी माँ बाप के लक्षण बच्चों में आते हैं। जो मछली बड़ी बड़ी होती है उसके जो बीडर्स होते हैं उससे जो बच्चा तैयार किया जाता है वो बच्चा बढ़ता है, और जो मछली छोटी छोटी होती है उससे अगर बच्चा तैयार कर लिया गया है तो जिसके माँ बाप ही छोटे छोटे हैं उसका बच्चा क्या बढ़ेगा। सभी किसान बहनों भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मत्स्य बीज संचयन में विशेष सावधानी रखें। मत्स्य बीज के लिए जिला अधिकारी या संभागीय अधिकारी के माध्यम से आप लोग प्रमाणित बीज डालें तो निश्चित है कि आपको फायदा होगा। मत्स्य पालन के साथ अन्य व्यवसाय भी है, जैसे कि मछली पालन के साथ पोल्ट्री का भी आप कर सकते हैं। पोल्ट्री कम फिश कल्चर बोलते हैं, पोल्ट्री की जो बीड्स होती है वो सीधा 55% प्रोटीन पाई जाती है, वो मछली का भोजन होती है। इसी प्रकार डेयरी कम फिश कल्चर यानी जहाँ तालाब है वहाँ पर आप डेयरी भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि भैंस है, भैंस तालाब में तैरना जरूर जाएगी, उसको गर्मी लगती है वो गोबर करेगी, वो सीधा मछली का भोजन होता है। पिगरी कम फिश कल्चर मत्स्य पालन के साथ भी कर सकते हैं। ट्रापा कम फिश कल्चर सिंघाड़ा भी आप लगा सकते हैं, ये अतिरिक्त आय मछली पालन के साथ साथ आपको हो सकती है। एक बहुत अच्छी स्कीम हमारी लॉन्च हुई है, ढाबा कम फिश कल्चर। आपका तालाब रोड के किनारे है तो वहाँ पे आप ढाबा के पास भी तालाब बना सकते हैं, और उस तालाब में ढाबा की झूठन सामग्री बचती है वो सीधा मछली का भोजन होती है, और वही ताजी मछली निकाल के बना के बेचेंगे। आत्मनिर्भर बनना है, निराश नहीं होना है, आपको जिला अधिकारियों से मिलना है।
1: मीणा जी, चलते चलते हमारे मछली पालक भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: कि विभाग के द्वारा तमाम हितग्राही मूलक योजनाएं मछली पालन के लिए चलाई जा रही है कि जो तालाब सूखे हुए हैं उसके लिए आप डिसेल्टिंग अवश्य करें, उसके लिए आप बखर चला दें। डिसेल्टिंग का मतलब बखर, बखर चलाने के बाद उसमें चूना का छिड़काव करें, गोबर का छिड़काव करें, ताकि उसकी चूना पीएच वैल्यू को कंप्लीट रखता है, उसके जो अनावश्यक कीड़े होते वो नहीं पनप पाते हैं। और गोबर, जैसे कि खेती में खाद बहुत ज़रूरी है, इसी प्रकार उसमें मतलब एक्वेटिक बीड्स वगैरह जिससे प्लैंक्टन तैयार होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, जो कि मछली का भोजन है, ये बहुत आवश्यक है। जाली लगा लें आवागमन के स्थान पर, ये तैयारी कर लें। अगर आपका तालाब सूखा नहीं है जिसमें पहले से पानी है, तो उसमें बार बार जाल चलाकर अनावश्यक मछलियाँ, खरपतवार बोलते जिसको, वो आप हटा दें। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके तालाब में फिर भी कुछ ऐसी मछली आ जाती है, तो उसके लिए महुआ की खल्ली डालें और मछली संचयन से कम 15 दिन पहले ये कार्रवाई कर लें। इसके बाद आप मछली संचयन करें। और मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है, और वो जो मैंने महसूस किया है, कि आप मछली डालने में कंजूसाई ना करें, इसका विभागीय अधिकारी के ही मार्गदर्शन में ही डालें और प्रमाणित बीज डालें, तो वो बीज निश्चित बढ़ेगा और आपको उसका फायदा मिलेगा।
1: मीणा साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे मछली पालक भाइयों को मछली पालन के पूर्व तालाबों की किस तरह तैयारी करें जिससे भविष्य में मछली पालन कर अच्छा लाभ कमा सकें, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इस जानकारी से हमारे मछली पालक भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत।
2: तो भैया रो देखो, अबे हमारे मछली पालन के लिए तालाबों की तैयारी जा विषय पे श्री बी एल मीणा जी से जानकारी ले रहे थे, और इनसे भेंट कर रहे थे सोहन सिंह भैया। तो भैया हरो देखो कितने अच्छी उनने जानकारी दी। तो हम तो ये कहें कि जौन हमारे किसान भैया रे यदि मछली पालन कर वो चाह रहे हैं, तो वे जा तरीका से यदि मछली पालन कर रहे हैं तो उन्हें जा से अच्छो लाभ मिले। और भैया रो अब कछु चर्चा हो जाए। भैया रो देखो, जब हम सड़क पार करते हैं या रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, तो रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय भैया कछु कछु बातन पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो का है कि तनक हमने लापरवाही दी नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। अब भैया देखो का है कि जब हम रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, फाटक पार करते, तो भैया सबसे पहले तो हमें जो देख लेना चाहिए कि कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही, कहीं रेलगाड़ी तो नहीं आ रही। और भैया अगर फाटक बंद है ना, तो हम जो समझ जाएँ कि भैया देखो ट्रेन आवे बारी है, तो हम भैया तनक रुक जाएँ, इंतज़ार कर लें। जो नहीं है कि अरे हमने देखी कि अरे ट्रेन तो नहीं आ रही, तो चलो फाटक के नीचे से तनक झुक के अपनी गाड़ी निकाल लें, तो भैया ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले भैया हम अपने तनक रुक जाएँ, फाटक खुलवे को इंतज़ार करें, बाकी बाद ही अपन रेलवे क्रॉसिंग पार करें। अब भैया कई जगह तो कहा होता है कि फाटक बंद रहते, और कई जगह कहा होता है कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग होते, तो ऐसी जगह पर भैया हमें क्या करना है कि अगर हमें रेलवे क्रॉसिंग पार करनी है, ट्रेन की पटरी पार करनी है, रेलवे की पटरी पार करनी है, तो भैया सबसे पहले हम दाईं तरफ देखें, बाईं तरफ देखें, और कान लगा के जा सुनवे की कोशिश करें कि कहूँ रेलगाड़ी की आवाज़ तो नहीं आ रही। और भैया जब हम निश्चिंत हो जाएं कि रेलगाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही है, बाकी बाद ही हम अपनी जो रेलवे क्रॉसिंग है बाईपार करें। तो अगर हम भैया देखो जा तरीका से अगर अपन अब समझदारी से काम ले हैं, तनक जानकारी अगर अपन को हुई है, तो भैया अपन बड़ी सी बड़ी दुर्घटना घटवे से अपन बच सकते हैं। अब भैया देखो क्या है कि जब हम रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, तो हम जो नैया की कान में हमने जो ईयरफोन है वे लगा लाए, और हमें सुनाई नहीं पड़ रही, हम देख ही नहीं रहे हैं, और गाना बज रहा हो, गाना में इतने मगन है कि जब हम पटरी पार करते हैं तो क्या है हमें ट्रेन की आवाज़ ही नहीं सुनाई देती। तो ऐसी गलती भी नहीं करने, अगर हम पटरी पार करवे जा रहे हैं तो भैया मोबाइल अपनों बंद कर दें, कान में से ईयरफोन निकाल दें, और निश्चिंत हो जाएं कि ट्रेन नहीं आ रही है, बाकी बाद ही हम रेलवे क्रॉसिंग पार करें। तो भैया जा तरीका से अगर हम रहें, तो देखो दुर्घटना जो है घटवे से है ना, कौनो दुर्घटना घटवे से अपन बच सकते हैं। और भैया चल एक गीत आपको और अब हम सुनवाई दे रहे हैं, तो विनोद कुमार सेन के स्वर में अब हम सुनते हैं ये जोनार गीत।

तो भैया रे देखो, अबे हम और अन्य विनोद कुमार सेन के स्वर में ये जोनार गीत सुनो, मोरे राम से करो ना ररियां जनकपुर की सखियां। तो देखो तो भैया कितो नौनो गीत अबे हम और अन्य सुनो। और अब देखो जावे की बेरा हो रही है, तो हम आपसे आज्ञा लें, लेकिन बासे पहले कल के अपने चौपाल कार्यक्रम में हम आपको का सुनवावे जा रहे हैं, का जानकारी दवावे जा रहे हैं जी के बारे में बता दें। तो कल देखो भैया आ रहे हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता में बदलाव जा विषय पे भेंट वार्ता आपको सुनवाएं जी में श्री अखिलेश सिंह रेनवाल जानकारी दें हैं। और संगे संगे भैया देखो चर्चा तो हुई है ही, और मनोरंजन के कार लाने आप और इनके लाने लोकगीत भी हम आपको सुनवाएं। और अब देखो जावे की बेरा हो रही, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। सभी को आरती की, राम राम, जय जवान जय किसान।

0: interview with Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs, on India's new anti-terror doctrine. Interviewer was Dr. Sriram Chaulia. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार की 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हिना फिल्म से, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ है, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

आप सुन रहे हैं विवाह फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है पामेला जैन, श्रेया घोषाल ने। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाज़ों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी

0: पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र

अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: तो युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ

0: प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है। और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
2: Aaj desh ka har nagrik Vikasit Bharat ke sapne se bhara hua. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: Earlier, the National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved, praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Moving the resolution, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu said it is a historic tribute to India's longest serving elected Prime Minister Narendra Modi.
3: It is a historic tribute to India's longest serving continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time at the right place, Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor and our innovator, working with a single agenda, that is nation first, a principle that all of us has constantly keep it in mind.
1: The meeting also focused on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India, under Mr. Modi's leadership, has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister in consecutive terms. With 4,399 days of continuous service as an elected Prime Minister, Mr. Modi has surpassed the previous record held by former Prime Minister Jawaharlal Nehru, who served for 4,398 continuous days. Meanwhile, the Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project, covering the Koteshwar Road to Airport corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometres with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometres, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport.
4: आज कैबिनेट में तीन फैसले लिए गए।
5: Three decisions were taken in today's cabinet meeting. One decision concerns the expansion of the Ahmedabad metro, while other two relate to Amravati, the new capital city being developed in Andhra Pradesh. The cabinet approved the Ahmedabad metro phase 2A corridor from Koteshwar Road to the airport in Amravati. Several central government offices will be brought together in a single complex. Two projects have been approved for this purpose, a residential complex and an office complex.
4: तो residential complex है और एक office complex है।
1: The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production-Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme, with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The approved applicants span key focus segments of the PLI scheme, including man-made fiber, MMF apparel, MMF fabrics, and technical textiles, further strengthening India's position as a global hub for value-added textile manufacturing. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System, GNSS, jammers for the Indian Navy, with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, Bara Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards empowerment of the youth.
6: In the past 12 years, the government has given focus to the youth power of the nation. India's next generation reforms have now turned into a reform express with youth power at its core. Young Indians are central to building a developed India and shaping the country's future across sectors. More than 12 crore new entrepreneurs have received PM Mudra Yojana loans, giving wings to the dreams of youth. The government is empowering youth to drive employment and self-reliance, and youth becoming job creators, not job seekers. A female entrepreneur from Raipur in Chhattisgarh, Isha Patel, shared her inspiring journey from cooking at home to establishing a successful cafe business.
7: Many young people feel that they lack funding, but often they are not aware of the various government schemes available to support them. My suggestion would be to do some research on these opportunities. For example, there are schemes like Mudra Loan and the PM EGP Loan, along with several other loans that are available without requiring collateral.
6: More than 60 lakh youth have been benefited under the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana. Over 1.6 crore youth have been trained under PM Kaushal Vikas Yojana. A growing pool of skilled talent is powering the Make in India initiative. 12 lakh appointment letters distributed through Rozgar Melas, turning employment dreams into reality. More than 2.2 lakh startups generated over 23 lakh job opportunities and 16 lakh innovation projects developed by students, providing a powerful foundation to the startup ecosystem. An entrepreneur, Shilpa from Warangal in Telangana, said Startup India initiative is catalyzing startup culture and building a strong and inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship.
8: Startup India is a commendable idea which is giving a platform to lot of youngsters with new business plans, new business ideas. And if you observe, you can see lot of new business coming up on this platform, which we have never seen before.
6: Under the PM Setu scheme, 60,000 crore rupees allocated for the modernization of 1,000 ITIs, equipping youth with industry-ready skills. The country's youth power, with government's support, is bringing a new dawn for India. With Anupam Mishra, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
1: India has condemned the attack on the commercial vessel Setubelo off the coast of Oman today. External Affairs Ministry said in a statement that of the 24 Indian crew on board, 21 Indians have been rescued so far and 3 Indians are reportedly missing. It informed that the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at the Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo. Sindhu's pre-quarterfinal match will be against compatriot and world number 39, Isharani Barua. Tanvi Sharma also showed signs of returning to form with a 21-12-22-20 win over world number 11, Chiu Pingchian of Chinese Taipei. Tanvi will face Malvika Bansod. The India Meteorological Department today said a wet spell is likely over northwest India till the 13th of this month under the influence of western disturbance. It has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northwest and northeast India during the next 5 to 7 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
9: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए. कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है. मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है. काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है. हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है. इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया. वजारत दिफा पैरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफे के लिए 20 एडवांस्ड जैमर्स खरीदेगी. और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दिलाया कि मुल्क की 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को यकीनन पूरा किया जाएगा और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के एतमाद को मुस्तहकम किया है. जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मुल्क के आवाम ने कांग्रेस की एतमाद शिकनी के बाद एनडीए सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क के आवाम ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला जाना इस बात का इजहार है कि एनडीए की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
9: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है. उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने तवील अरसे तक अपनी खिदमत करने का मौका फराहम किया.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे. इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
9: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी विकसित भारत का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब अब किसी एक फर्द, हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की इक्तसादी और ढांचा जाती इस्लाहात नजरियाती यकीन का नतीजा हैं, न कि सियासी मजबूरी का।
4: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
9: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और

0: साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाएख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
2: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, आप थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1,60,00,000 से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरुनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप कायम किए गए हैं, जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। पीएम सेतु स्कीम के तहत 1,000 IITs की जदीद कारी के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम PLI के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमू तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर का अंदाजा है। मंजूरशुदा दरख्वास्त गुजार PLI स्कीम के अहम शोबों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं, जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 770 करोड़ रुपए के कर्जेजात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निज़ाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाज़ों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा

0: Chaka bir şey.
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
4: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की हस्तक्षेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी। इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
2: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
0: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखा कि जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने, यहाँ आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्युनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व करते पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी ही थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूँ कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइन्स खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूँ।
2: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
4: देखिये, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी

0: जी प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से, जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हुई। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें, इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है, आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड रेशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी, आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो

0: वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है, बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सब से बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितने ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा हुआ पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, तो पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज के जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल, वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर सेक्शन की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
0: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना, भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ, क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि

0: भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है। पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल जो हमारे यहाँ आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान सर्वोच्च बलिदान दिया उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवन थे या बिल्डिंग थे उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदल कर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारत के भविष्य, भारत नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा का विषय है

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है नाटक तुम सही हो गार्गी। इसके लेखक हैं विमल कांत एंडे, प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल।
1: प्रस्तुत है नाटक तुम सही हो गार्गी, लेखक विमल कांत एंडे, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: अरे भाई क्या हुआ, चाय मिलेगी या नहीं या बाहर से पीकर आना पड़ेगा? आधा घंटा हो गया, एक कप चाय नहीं मिली।
1: आ रही हूँ भाई। तुम तो बस ऑफिस से लौटे नहीं कि चीख पुकार मचाने लगते हो, बड़ी मुश्किल है।
0: अरे मुश्किल क्या है, घड़ी देखो 6 बज रहे हैं, 6:30 बजे से आ गया था
1: भाई। इतना वक्त तो लगता ही है ना चाय बनाने में।
0: अब बस भी करो भाई, जब मैं ऑफिस से आया था तब तुम स्टडी रूम में थी, चाय बनाने तो अभी गई हो ना।
1: अगर मैं स्टडी रूम में थी भी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
0: मुझे तुम्हारे स्टडी रूम में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वहाँ रहकर जो तुम करती हो ना, मतलब जो गलत फहमियाँ पाल रखी हैं उसे लेकर जरूर प्रॉब्लम होती है। अरे गार्गी मैडम, जमीन पर रहो, जमीन पर। ये सपने देखना छोड़ो कि तुम कोई बहुत बड़ी कहानीकार या साहित्यकार और पता नहीं क्या क्या बन गई हो। अरे मजाक नहीं है ये सब, है स्कूल कॉलेज की मैगजीन में कभी कोई चीज छप जाए या किसी तटपुंजीय पेपर में कोई कहानी कविता छप जाए तो कोई प्रेमचंद या गालिब नहीं बन जाता है?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, किसी महिला लेखक का नाम तो तुम्हें याद आया नहीं होगा। अरे तुम्हें तो प्रेमचंद या गालिब के अलावा कोई नाम याद भी नहीं है। और कोई महिला, वो भला क्या लिख पढ़ सकती है बेचारी। महिलाएं तो बनी ही हैं केवल तुम लोगों के घर संभालने के लिए, बच्चे पालने के लिए, खाना बनाने, कपड़े धोने और सेवा करने के लिए। तुम लोगों के अहम को तो केवल यही सोचकर, यही मानकर संतुष्टि मिलती है ना? कभी नहीं सोचते कि महिलाएं अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती।
0: अरे अरे अरे, अब कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो तुम्हें? अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, गलती हो गई भैया, माफ करो, सॉरी। अच्छा ये बताओ, क्या कोई नई कहानी लिख रही हो, हैं? जो चाय बनाने के चक्कर में बीच में छोड़कर उठना पड़ा इसलिए खींच रही हो?
1: यूं ही कागज पर कलम घसीट रही थी, शायद कोई कहानी ही बन जाए।
0: अरे यार अब बस भी करो, हैं? माफी तो मांग ली ना, तुम्हारी ये बड़ी खराब आदत है, बात को खींचती बहुत हो। अरे रबर को भी ज्यादा खींचने से वो भी टूट जाता है मैडम। खाने में क्या बना रही हो आज तुम?
1: देखते हैं क्या बन सकता है जल्दी से।
0: जल्दी से क्यों, आज कोई प्रोग्राम है क्या? अरे अभी तो बस 6 ही बजे है ना।
1: हाँ मगर मुझे आज कहानी खत्म करनी है, आज रुक गई तो कहानी का अंत जो सूझ रहा है शायद याद ना रहे। बड़ी मुश्किल कुछ अच्छा सूझा है, शायद इससे पूरी कहानी उठ जाएगी।
0: हे भगवान, कहानी उठ जाएगी, जैसे अभी सो रही है। पता नहीं कहानी लिखने की क्या खप्त सवार हुई है। अरे कोई मजाक है कहानी लिखना, ये सब कुछ किया धरा है उस नालायक समीर का। वाह भाभी क्या लिखती हैं, है? आप देखना एक दिन बड़ी लेखक बनेंगी, हम सबका नाम रोशन करेंगी, नालायक कहीं का। अरे खुद तो गार्गी को चढ़ाकर चला गया और भुगतना पड़ रहा है मुझे। चल बेटा तुशीर, और कर ले, पढ़ी लिखी से शादी।

0: समीर, ये जरूरी नहीं कि हर बार केवल लड़के ही गलत हों। मैंने जो तुम्हें बताया उससे क्या लगता है?
1: भाभी, मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की बिना किसी ठोस वजह के इतना बड़ा कदम उठा सकती है। दूसरी तरफ वो लड़का, वो भला इतनी आसानी से इतना बड़ा कलंक लेने को राजी कैसे हो सकता है? भाभी, बात कुछ जमी नहीं।
2: कौन सी बात नहीं जम रही छोटे सरकार, हम भी तो सुने। अरे ये बेचारा समीर अपने बड़े भाई के सामने क्या राय देगा? मैडम ये अच्छी तरह जानता है कि इसका भाई कितना इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है।
1: भाभी और भैया, आप एक दूसरे पर छीटा कशी छोड़िए, नहीं तो मैं चला।
0: अरे अरे नहीं समीर, हम तो मजाक कर रहे थे। क्यों मिस्टर वर्मा?
2: यस यस मिसेज वर्मा, बिल्कुल मजाक कर रहे थे, मगर मजाक मजाक में एक बात तो सही निकली गई कि बंदा इंटेलिजेंट है।
1: भैया फिर से।
2: अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था।

0: हाँ, कौन सी बात थी जो जम नहीं पा रही थी देवर भौजाई को?
1: भैया, भाभी की कहानी के मुख्य पात्र की शादी को केवल 4 महीने ही हो पाए हैं, मगर
0: मगर क्या?
2: मगर ये कि लड़की और उसके घर वालों ने मिलकर कोर्ट में तलाक का केस दायर कर दिया और कारण भी कोई खास नजर नहीं आ रहा।
0: क्या मजाक है, ये कैसी कहानी है? कहीं ऐसा भी होता है कि बिना किसी खास वजह के तलाक का केस, और वो भी 4 महीने के अंदर?
1: तभी तो मैं भाभी से कह रहा था, जरूर कोई खास वजह होगी, तभी तो बात तलाक तक पहुंची, और वो भी लड़की वालों की तरफ से। मुझे लगता है लड़का कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना भैया?
0: बिल्कुल। अरे गड़बड़ क्या, कोई दूसरा चक्कर होगा। बेचारी लड़की, अरे उसका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा तलाक से।
2: बेचारी लड़की, अरे तो मर्दों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि लड़कियां तो हमेशा बेचारी नजर आने लगती हैं। सारी गड़बड़ी लड़कों की ही लगती है। मैं पूछती हूँ, क्या लड़की का कोई चक्कर नहीं हो सकता? वो गलत नहीं हो सकती?
0: हो सकता है मैडम, जरूर हो सकता है, मगर आप भूल रही हैं, अगर प्रॉब्लम लड़की की है तो तलाक लड़के वालों की पहल पर होता है। अरे यहां तो मामला ही उल्टा है।
2: तुशीर, तुम सही कह रहे हो, मगर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल ये कहानी एक हकीकत है। जब मैंने सुनी, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, क्या कोई पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की ऐसा भी कर सकती है?
0: देखो, बात तब तक साफ नहीं होगी जब तक तुम सिलसिलेवार पूरी बात नहीं बताओगी। आखिर हुआ क्या, तलाक की नौबत 4 महीने में क्यों आ गई? मगर अभी तो फैसला आना बाकी होगा ना।
2: तो शेर, तलाक फाइल भी हुआ और फैसला भी 6 महीने के भीतर आ गया, तलाक मिल गया।
0: समझा, मगर ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई गंभीर मामला ना हो। हमें पूरी बात बताओ, शायद पूरी चर्चा के बाद कोई अच्छा हल कहानी का सूझ जाए।
1: हाँ हाँ,
2: चलो यही सही। ये ऐसे दो परिवारों के बीच घटी घटना है जो हम तुम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं। दोनों ही परिवार शिक्षित अच्छी पृष्ठभूमि वाले हैं। लड़के के परिवार में 2 लड़के और माता पिता, और लड़की के परिवार में लड़की की माँ और मामा और उनका परिवार। लड़की इकलौती है और उसके पिता नहीं हैं। दोनों ही परिवारों ने बच्चों की शिक्षा में अपना जीवन लगा दिया। MBA के बाद लड़का बहुराष्ट्रीय कंपनी में अधिकारी के रूप में, और BE के बाद लड़की इंजीनियर के पद पर काम पाने में सफल रहे। दोनों को अलग अलग शहरों में नौकरी मिली। जैसा होता ही है, रोजगार पाने के बाद, अच्छी आर्थिक स्थिति में आने के बाद, लड़की की माँ योग्य दामाद और लड़के के अभिभावक सुशील सुंदर शिक्षित बहू की तलाश में जुट गए। सारी औपचारिकताओं के बाद वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। तुशीर, यकीन मानो, विवाह में जो भी सम्मिलित हुए सबने न केवल अभिभावकों को बधाई दी बल्कि वर वधु को भी बधाई देते हुए कहा कि भाई तुम्हारी तो राम सीता और शिव पार्वती की जोड़ी है।
1: अच्छा,
0: वाह, अगर ऐसा था तो फिर बीच में तलाक कहां से आ टपका?
2: तो शेर, मैंने जो जाना जो समझा वो ये है कि उसके पीछे लड़की का अति महत्वाकांक्षी होना है। जीवन के प्रति, रिश्तों के प्रति उसका नजरिया, उसकी सोच, सभी ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। शायद इसीलिए उसकी बुद्धि ने उससे नाता तोड़ लिया। वो इतनी स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो गई कि उसे अपनी सोच के आगे सब कुछ निरर्थक लगने लगा।
0: गार्गी, अरे क्या बेकार की बातें कर रही हो, ऐसा भी होता है कहीं? अरे लड़की चाहे कैसी भी हो, उसकी महत्वाकांक्षाएं कितनी भी बड़ी चढ़ी हो, मगर वो अपना जीवन या अपना विवाह दांव पर नहीं लगाती, और वो भी इतनी जल्दी।
2: ठीक कहते हो, मगर आजकल की लड़कियों के तौर तरीके, सोच, और यहाँ तक कि उनकी आत्मनिर्भरता की स्थिति ने उनमें बड़ा बदलाव ला दिया है। आज की नौजवान पीढ़ी के लिए करियर सबसे ज्यादा अहम हो गया है। तो शिर, यकीन जानो, मेरी सोच तुम्हारी सोच से अलग नहीं है। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही मैं भी सोचती हूँ, मगर इस घटना ने मुझे अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया।
0: गार्गी, बात अभी भी अधूरी है, खुल के बताओ ना भाई।
1: हाँ,
2: इस मामले में मुझे कई बार तुम्हारी बातें याद आईं। तुशिर, तुम कहते हो ना, गार्गी, आजकल की लड़कियां अजीब होती जा रही हैं। एक हाथ में मिनरल वाटर की बॉटल, दूसरे में मोबाइल पकड़े, मॉडर्न कपड़े, और वो हिंग्लिश, यानी ना हिंदी ना अंग्रेजी, अजीब बातचीत की शैली। ये सब परिवर्तन आज की लड़कियों, उनके क्रियाकलापों के साथ साथ उनकी सोच पर भी होता जा रहा है। खैर, विवाह की पहली रात नव विवाहित लड़की ने अपने पति के सामने अजीब सी शर्त रखी।
0: पहली रात शर्त?
2: हाँ।

0: पहली ही रात और शर्त भी बेतुकी। उसने कहा, हम लोग अभी अलग अलग ही रहेंगे जैसा कि शादी के पहले थे। पहले मुझे अपना करियर बनाना है, अपनी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंचना है, ये सब उसके बाद भी हो सकता है। तुषिर, तुम सोच रहे होगे कि ये सुनकर लड़के पर क्या बीती होगी।
1: हाँ बिल्कुल, अभी मैं यही पूछने वाला था।
2: अजीब बात है,
0: सन्नाटे में रह गया लड़का। सिर्फ इतना ही पूछ पाया, अगर करियर को इतना महत्व देना था तो शादी क्यों की? जानते हो तुषिर, जवाब क्या मिला?
2: क्या?
0: लड़की ने कहा, वो तो माँ और मामा का मन रखने के लिए जरूरी था, वरना उसका वश चलता तो वो शादी ही नहीं करती।
1: भाई वाह, शादी भी की तो माँ और मामा के कारण। देवी जी तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। अजब तमाशा है, घर की कुछ फिल्मी लगती है लड़की।
3: भाभी, अगर लड़की नहीं चाहती थी शादी करना तो क्या उस पर दबाव डाला गया था? करियर बनाने की बात तो हजम नहीं होती भाभी, यहाँ कोई दूसरा ही चक्कर लगता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की कहीं और शादी करना चाहती हो और माँ और मामा के दबाव के कारण मजबूरन उसे कहीं और शादी करनी पड़ी हो? भैया आपको क्या लगता है?
1: हाँ संभावना तो है ही, और करियर वाली बात तो अच्छा खासा मजाक लगती है भाई।
3: हाँ
0: मुझे भी अटपटा लगा था जानकर, कहाँ करियर और कहाँ शादी। अगर करियर को महत्व देना ही था तो शादी कुछ सालों के लिए और टल जाती, माँ और मामा को मना लेती, उनके सामने अपनी इच्छा रखती। आखिर शादी का इतना बड़ा आयोजन बिना इच्छा के जबरदस्ती हो सकता है भला? मैंने मामले की तह में जाने की कोशिश की। मुझे पता चला कि लड़की की माँ सालों से अपने भाई के यहाँ ही रहती है। लड़की और उसकी माँ दोनों ही मामा पर आश्रित हैं। लड़की के मामा ने भाई होने का फर्ज अच्छी तरह निभाया है, दोनों का पूरा ध्यान रखा है। मामा के ही कारण भांजी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर पाई और अब नौकरी कर रही है। मगर दूसरी तरफ शायद लड़की के लालन पालन या संस्कार देने में लड़की की माँ और मामा दोनों से ही थोड़ी चूक हो गई। पिता के ना रहने के कारण सोच में आत्म केंद्रित भाव और जिद्दीपन ने लड़की के मन में गहरी पकड़ बना ली। तुषिर, तुम तो जानते ही हो, उम्र के इस पड़ाव में जब आधुनिकता भौतिकवादी सोच किसी भी आत्मनिर्भर युवा से जुड़ती है तो उसे लगता है उसकी सोच, उसका भविष्य उसकी मुट्ठी में है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहती हो गार्गी।
3: हाँ
0: दरअसल आज के युवा नौकरी पाते ही खुद को बंधन मुक्त और महत्वपूर्ण मानने की भूल कर बैठते हैं, जबकि जीवन के अनेक पड़ाव और कड़वे अनुभव उनके सामने आने शेष होते हैं।
1: तुम ठीक कहती हो गार्गी, पहले ऐसी सोच नौजवान लड़कों में ही थी, मगर अब बराबरी का दावा करने वाली लड़कियों में भी कम नहीं है। अच्छा फिर आगे क्या हुआ?
0: तुषिर, लड़के लड़कियों से ज्यादा भावुक होते हैं, किसी भी तरह का झटका सहने की शक्ति उनमें कम होती है, ये तो तुम जानते ही हो ना।
1: हाँ।
0: लड़के ने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने के पहले अपने स्तर पर धैर्य पूर्वक जीवन की ऊंच नीच, करियर से जुड़े सच और भविष्य के प्रति आशावान रहने की सोच जैसे हर बिंदु पर लड़की को समझाने और मनाने की पूरी कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 10 दिनों के बाद ही दोनों को अपने अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होना था। तनाव मुक्त दोनों ही रहे होंगे या फिर लड़का ज्यादा तनावग्रस्त रहा होगा। लड़की को फिर भी यह तसल्ली तो रही होगी कि जैसा वो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। लड़के ने लगातार फोन करके, यहां तक कि वीकेंड जाकर उसे समझाने मनाने की भी बहुत कोशिशें की, मगर लड़की टस से मस होने को तैयार नहीं हुई।
3: भाभी बात पक्की है, जरूर चक्कर कोई दूसरा होगा, क्यों भैया?
1: हाँ यार, अब तो पता नहीं क्यों मुझे भी यकीन होने लगा है, अब भला कोई लड़की बिना किसी कारण के ऐसा कर सकती है? फिर क्या हुआ गार्गी?
0: 1 महीना होने को 2 दिन बाकी थे कि अचानक लड़की के मामा और माँ ने लड़के वालों के यहाँ जाकर उनसे साफ शब्दों में तलाक की मांग की। माँ और पापा अवाक रह गए। पूछा, क्या हुआ ऐसा जो आप लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? हमें बताइए, हम देखते हैं, अगर लड़के की कोई गलती हो तो उसे समझाएंगे। तलाक किसी भी मामले का हल नहीं है, और फिर अभी समय ही कितना हुआ है, शादी को महीना भी तो पूरा नहीं हुआ, अभी दोनों बच्चे हैं, किसी से भी कोई गलती हो सकती है, अगर हुई है।

0: तो हम सभी मिलकर उसे सुधार लेंगे। लड़की के मामा ने जवाब दिया, हमारी लड़की आपके लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। हम कारण आपको नहीं बताना चाहते, बस हमें तलाक चाहिए। वकील से कह दिया है, पेपर मिलते ही लड़के के साइन करवा के भेज दीजिए।
1: वाह भाई वाह, क्या शादी और क्या तलाक। फिर क्या हुआ भाभी?
0: होना क्या था, माँ बाप ने लड़के से जानकारी ली तो सच्चाई पता चली। मगर लड़के के पिता संतुष्ट नहीं थे, उन्हें लगा कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। वो लड़की से मिलने भी गए उसके शहर में जहां वो काम कर रही थी। लड़की ने उनसे बात करने से मना कर दिया। उसने कहा वो उनके लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। शादी उसने माँ और मामा के कहने पर की थी। मामा की बड़ी इच्छा थी कि वो उनकी पसंद से शादी करे। चूंकि मामा के यहाँ माँ वर्षों से रहती आई है, वो भी यही चाहती थी। बस इसलिए उसने शादी के लिए हाँ की। लड़की को समझाने बुझाने के सारे प्रयास व्यर्थ गए। अगले 20 दिनों में ही तलाक के पेपर लड़के के परिवार को मिल गए। पेपर पढ़कर तो लड़के के घर जैसे धमाका ही हो गया। तलाक का कारण लड़के की नपुंसकता बताया गया था। रोष और ग्लानी से भरे लड़के के माँ बाप ने लड़की वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। ये भी कहा कि इस झूठे आरोप वाले तलाक के पेपर पर वो लड़के के हस्ताक्षर नहीं करवाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में जाकर लड़के की मेडिकल रिपोर्ट जमा करेंगे और सारा मामला साफ हो जाएगा।
2: यस, बिल्कुल सही है। अरे मजाक थोड़ी है तलाक, ऐसे कैसे हो जाएगा?
0: मगर हो गया तुषिर। लड़की के मामा ने कहा, जब हमारी लड़की आपके लड़के के साथ रहना ही नहीं चाहती तो तलाक के अलावा रास्ता ही क्या है? तलाक का कारण भी जानबूझकर इसलिए दिया गया है कि इससे तलाक जल्दी मिल जाता है। नहीं तो तलाक मिलना भी आसान नहीं है, वर्षों लगते हैं। और फिर कारण कोई भी हो, जब हमारी लड़की को तलाक चाहिए तो कारण भी तो ऐसा देना पड़ेगा जो तलाक जल्दी दिलवाए। इसीलिए नपुंसकता का कारण दिया है।
2: और लड़के के माँ बाप मान गए उनकी बात?
0: नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते के अंदर दहेज की मांग के आरोप के साथ वकील का नोटिस, धमकियों का सिलसिला और लड़के और उसके माँ बाप की गिरफ्तारी का अंदेशा जोर पकड़ने लगा। मामले की संवेदनशीलता और इससे होने वाले परिणामों के अंदेशों ने लड़के के परिवार को तोड़ दिया। लड़का दूसरे शहर में माँ बाप से अलग और उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इस आशंका से लड़के के माँ बाप ने उसे पेपर्स पर साइन करवा दिए। कोई विकल्प ही शेष नहीं था। तुम जानते हो समीर, हमारे देश में सैकड़ों केस बरसों बरस तक फैसलों का इंतजार करते रहते हैं, मगर पता नहीं कौन सी ताकत होती है जो कुछ मामले फटाफट निपटाती है कि यकीन ही नहीं होता इतनी त्वरित गति से फैसला होगा। खैर, तलाक मिल गया और सारा मामला निपट गया।
1: बाप रे, लेकिन आगे क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, अभी शादी को साल भी नहीं बीता था और तलाक हो गया। लड़का और उसका परिवार गहरे तनाव में आत्मग्लानी के साथ जी रहे हैं। लड़का अब तक ये झटका झेल नहीं पाया है, बीमार है। कंपनी से कहकर उसने अपनी पोस्टिंग देश के बाहर करवा ली, मगर वहां भी तनाव और संताप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस पर लगाया गया झूठा आरोप उसे चैन नहीं लेने दे रहा है।
2: और लड़की?
0: लड़की मजे में है तुषिर, अपने और परिवार के निर्णय को सही साबित करने के लिए जहां तहां तलाक की झूठी वजह का बखान करने वाली लड़की और उसका परिवार, वो तो ठीक होगा ही होगा। आगे क्या होगा, माँ और लड़की के मामा क्या करेंगे, ये पता नहीं चल पाया।
1: मगर भाभी, समाज या बिरादरी से तो ये बात छुपी नहीं है ना? लड़की के परिवार वाले और यहां तक कि खुद लड़की अगर ऐसी बातें कर रही है तो ये फिर उसके लिए भी तो अच्छा नहीं है, और लड़के का जीवन तो अकारण ही बर्बाद।
0: ठीक कह रहे हो समीर, एक पढ़े लिखे सुसंस्कृत लड़के और प्रतिष्ठित सामाजिक स्थिति वाले परिवार के लिए ये हालात कैसे होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लड़के के माँ बाप ने सबसे पहले ये कोशिश की कि लड़के को उसकी वर्तमान स्थिति से उबारा जाए। उन्हें डर था कहीं उनका लड़का आत्मग्लानिवश कुछ कर ना बैठे। बीच में परिचितों और रिश्तेदारों की पूछताछ और ताक झांक लगातार उनकी हिम्मत तोड़ती रही, और फिर से उन्हें अपने आप को संभालना पड़ा। हर घड़ी यही लगता कहीं कोई उनके बेटे या बहू के बारे में तलाक के कारण न

0: मैंने पहले ही कहा था, लड़कियों के प्रति सहानुभूति दर्शाना आम होता है। ऐसे में लड़के के या उसके परिवार की बात न तो कोई मानेगा और न कोई सच्चाई समझने की कोशिश करेगा। तुम्हें सोचो, क्या ये संभव है कि लड़का और उसका परिवार लोगों को लड़के की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता फिरे या ये कहता फिरे कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं?
1: कह तो तुम ठीक रही हो, मगर क्या ये गलत नहीं होगा कि इतना बड़ा झूठा कलंक सिर पर ढोया जाए?
0: बस कहानी यहीं आकर रुक गई। लड़की या उसका परिवार क्या करेगा, लड़के वालों का अगला कदम क्या होगा, यही कहानी का अंत है। सोचो सोचो तुम लोग और बताओ।
2: भाभी, मुझे लगता है इस मामले को फिर से कोर्ट में ले जाना चाहिए। आखिर हार मानने से कैसे काम चलेगा? लड़की और उसके परिवार को पता तो चले कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने का परिणाम क्या होता है।
1: समीर, यहां मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर यह मामला फिर से कोर्ट में जाता है तो पहली बात तो यह है कि दोनों परिवारों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लोग तमाशा देखेंगे, फिर से आरोप प्रत्यारोप और लोगों के लिए नया तमाशा बनेगा, और इससे ज्यादा नुकसान लड़के के परिवार को ही उठाना पड़ेगा। लोग लड़के पर लगे तलाक के कारण का चटखारे लेकर बखान करेंगे और वो टूट जाएगा। और कहीं लड़की वालों की ओर से कोई झूठी FIR दर्ज होती है तो नई मुसीबत का सबब बनेगी। समीर, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर और हर कसौटी पर कसकर इस बंधन की नींव रखी है। इसे दो परिवारों की आत्माओं का बंधन माना जाता है। यह सामाजिक संरचना और समाज को गतिशील बनाने के लिए एक मर्यादित परंपरा के रूप में स्थापित है। मगर अगर आपसी तालमेल नहीं है, मन एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो शादी विवाह अर्थहीन होकर रह जाती है। अब हमारी शादी को ही देखो, पूरे 12 साल हो गए हैं। क्यों गार्गी? हम लड़ते हैं, रूठते हैं, मान जाते हैं, मगर शादी के पवित्र बंधन को लांघने या नकारने का विचार न तो कभी मेरे मन में आया और ना ही तुम्हारी भाभी के मन में। अब यहां तो ठीक उल्टा है। शादी की पहली ही रात लड़की अपने पति से कहती है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। अजीब लगता है भाई। मेरी राय में तो कहानी का अंत यह होना चाहिए कि इसे हम समय के भरोसे छोड़ दें। गार्गी, समय बड़े से बड़े घाव भर देता है। हर समस्या का समाधान वक्त के गर्भ में होता है। समय ही तुम्हारी कहानी के पात्रों को कोई ना कोई हल जरूर सुलझाएगा। वैसे गार्गी, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना?
0: तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो, मगर मेरी सोच तुम दोनों से मेल नहीं खाती। समीर के सुझाए अंत के साथ कई परेशानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा कोई केस आसानी से नहीं निपटता, और इस बार अगर लड़के वालों को केस दायर करना होगा, अपना पक्ष रखना होगा, तो निश्चित है कि यह मामला लंबा खिंचेगा। ये बात तो तुम लोग समझ गए होगे कि लड़की वाला पक्ष न केवल साधन संपन्न है, बल्कि कोर्ट के दांव पेंचों से वाकिफ भी है। बस फिर होगा ये कि और ज्यादा अपमान, और ज्यादा जग हंसाई, ये सब कुछ अलग से होगा। और तुषिर, अगर तुम्हारा सुझाव भी माना जाए तो इससे भी समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि समाधान की बाट जोहने के लिए समय गंवाना बुद्धिमानी नहीं है। और फिर ये भी तो तय नहीं है कि समस्या का हल कितने समय के बाद निकल कर आएगा। क्या ये उचित होगा कि वक्त के भरोसे एक ऐसा परिवार, खासकर वो लड़का जो निरपराध है, यूं ही तनाव के बीच जीता रहे? क्या ये उसके प्रति नाइंसाफी नहीं होगी?
1: हाँ गार्गी, तुम ठीक कहती हो। वक्त के, भाग्य के या फिर ईश्वर के भरोसे समस्या नहीं हल होने वाली। लेकिन आखिर में होगा क्या?
0: जैसा मैंने बताया है कि तलाक का फैसला तो हो गया। इससे जाहिर है कि लीगली अब ये शादी टूट गई। लड़की ने पहले ही लड़के के साथ न रहने का निर्णय ले रखा है, यानी मानसिक रूप से अब दोनों में आपसी मेल की कोई संभावना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बस एक ही रास्ता बनता है कि लड़के का परिवार उसके पुनर्विवाह के लिए तुरंत कोशिश करे। मुझे मालूम है तुम दोनों यही कहना चाह रहे हो कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तलाक में दर्शाए गए कारण को गलत साबित करने वाले मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ अगर कोशिश की जाए तो ये संभव हो सकता है। थोड़ा कठिन जरूर होगा, लड़की वालों को यकीन दिलाना मुश्किल हो सकता है, मगर फिर भी ये हो सकता है। लड़के वालों को बिना कोई बात छिपाए लड़के की फिर से शादी करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए,

0: और मुझे यकीन है कि आखिर उनको सफलता जरूर मिलेगी। झूठ आखिर झूठ होता है, आज नहीं तो कल इसका अंत होगा। लड़के की शादी से दो फायदे होंगे, पहला ये कि लड़का और उसका परिवार आत्मग्लानी से मुक्त हो जाएगा, और दूसरा ईश्वर ने चाहा तो उनके परिवार में आने वाली संतान खुद ही आरोप लगाने वालों के लिए करारा जवाब होगी। यही और मात्र यही कहानी का अंत मुझे नजर आता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है गार्गी। मुझे लगता है कि तुम्हें मैं हमेशा अंडर एस्टिमेट करता रहा अब तक। अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। अरे मुझे आज तो कहना ही पड़ेगा, तुम सही हो गार्गी।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक तुम सही हो गार्गी, लेखक विमलकांत एंडे, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कटियार। श्रोताओं, आज देश और दुनिया की नजरें मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पर टिकी हैं, जहां वैश्विक स्तर के ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन में ब्रिक्स देशों सहित करीब 20 देशों के कृषि मंत्री, नीति निर्माता और कृषि विशेषज्ञ जुट रहे हैं। इस वर्ष भारत बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी की थीम के तहत इस बड़े मंच का नेतृत्व कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच यह सम्मेलन न केवल भारत बल्कि दुनिया के छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। आज हमारे रेडियो स्टूडियो में इस विषय के बड़े स्तंभ और नीतिगत मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री सिराज हुसैन जी, जो कि पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव हैं और वर्तमान में ICRER में सीनियर विजिटिंग फेलो हैं। आपकी विशेषज्ञता सरकारी नीतियों, खाद्य प्रशासन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लागू करने में है। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता सैनी जी, जो जानी मानी कृषि अर्थशास्त्री और ऑर्कस पॉलिसी रिसर्च की फाउंडर व CEO हैं। आपकी विशेषज्ञता डेटा ड्रिवन कृषि, ग्रामीण आजीविका, जेंडर इंक्लूजन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल पर है।
2: इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत दास सर, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
1: आपके अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल सिराज हुसैन जी आपसे है।
2: सर, आपके पास केंद्रीय सचिव के रूप में कार्य करने का एक लंबा अनुभव है और भारत की इस बार की जो ब्रिक्स सम्मेलन की थीम है वो रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए आने वाले वर्षों में ब्रिक्स देशों की खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर मुख्य नीतिगत प्राथमिकताएं क्या कुछ होनी चाहिए, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
3: देखिए, दो चार चीजें बहुत अहम है। एक तो ये है कि कैसे इंडिया की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाए
2: जी,
3: क्योंकि ब्रिक्स के कई देशों के मुकाबले में हमारी उत्पादकता कम है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन फिर भी गुंजाइश है। और कुछ देश इसमें ऐसे हैं ब्रिक्स के मेंबर जिनकी उत्पादकता हमसे भी कम है, तो उनको हमसे सीखने का मौका मिल सकता है। दूसरी बात, एक अहम बात यह है कि कई ब्रिक्स देश ऐसे हैं जैसे ब्राजील है या रूस है या अर्जेंटीना है, जिनकी आबादी बहुत कम है और उनका खेती का रकबा बहुत ज्यादा है, तो उनके यहाँ फूड सिक्योरिटी की कोई समस्या नहीं है। और कुछ देश ऐसे हैं जिनमें हमारा देश भी शामिल है, जहाँ फूड सिक्योरिटी एक बहुत अहम चीज है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी तरीके से वो इजिप्ट के लिए, इथियोपिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और हम कह सकते हैं कि ईरान के लिए भी किसी हद तक चैलेंज है, क्योंकि ईरान भी हमसे बहुत चावल इम्पोर्ट करता है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो पूरी तरह काफी हद तक इंडिया पे डिपेंडेंट है अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, तो एक दूसरे से सीखने का काफी मौका मिल सकता है।
2: जी बिल्कुल ठीक कहा सर। सर, इस सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है वो लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं पर रखा गया है। अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो नीतियों को लागू करने के आपका अपना जो अनुभव है उसके आधार पर क्या मानते हैं कि ब्रिक्स देश मिलकर इन छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए किस प्रकार से आपस में सहयोग कर सकते हैं?
3: देखिए, ये जो छोटे और सीमांत किसान का मसला है ना, ये तो हमारा मसला है और किसी हद तक चाइना का मसला हो सकता है। बाकी जैसा मैंने पहले कहा कि ब्राजील में, रूस में, अर्जेंटीना में तो बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, उनकी तो आबादी बहुत कम है, उनके यहाँ ये नहीं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो खेती ही नहीं है, तो ये मसला कहाँ से होगा? ईरान में भी ये मसला नहीं है
2: जी।
3: लेकिन हमारे देश में औरतों का कंट्रीब्यूशन कृषि में बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में जो उनके मर्द हैं वो दूसरे राज्यों में जाके अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, जिसमें उनको निस्बतन बेहतर मजदूरी मिल जाती है। तो काफी हद तक औरतें हमारे यहाँ कृषि में काम कर रही हैं। और हमारे यहाँ आप देखिए कि इनहेरिटेंस लॉज भी अमेंड हुए और उनमें ये कहा गया कि औरतें भी अब इनहेरिट कर सकती हैं जमीन को, कृषि की जमीन को, लेकिन कई राज्यों ने उसको भी लागू नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आज भी अगर किसी की मौत हो जाती है और उसकी लड़की की शादी हो चुकी है, तो उसकी लड़की को वो जमीन नहीं मिलेगी
2: जी। ये एक बड़ा मसला है
3: जी।
2: जी हेलो
3: जी जी
2: जी सर, अगला सवाल है मेरा सर, भारत के पास FCI जैसी एक विशाल खाद्य भंडारण और वितरण प्रणाली मौजूद है, क्या ब्रिक्स के अन्य देश भारत के इस बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से कुछ सीख सकते हैं ताकि वैश्विक स्तर पर जो जीरो हंगर की समस्या है उसको कम किया जा सके?
3: देखिए ये बात सही है कि हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरे देश को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है
2: जी।
3: मगर ये कार्बोहाइड्रेट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है
2: जी।
3: हम प्रोटीन की या और न्यूट्रिएंट्स की फूड सिक्योरिटी अभी तक नहीं उपलब्ध करा पाए हैं और कई देश इसमें ऐसे हैं जिसमें इजिप्ट है, ईरान है, जहां कई तरह के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहे हैं उन देशों में भी। तो हमारे यहाँ जो ये FCI का रोल है वो खाली डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है बल्कि वो प्रोक्योरमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो वो प्रोक्योरमेंट का रोल इजिप्ट वगैरह में इसलिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास इतना उत्पादन नहीं है कि वो उस सरप्लस उत्पादन को प्रोक्योर करें और डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन उनके यहाँ भी काफी बड़े प्रोग्राम चलते हैं जिसमें वो लोगों को मिसाल के तौर पे नान प्रोवाइड करते हैं और कुछ और खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब कई देशों में फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए देश डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी इसके बारे में अक्सर अर्थशास्त्री लिखते रहते हैं कि बजाय इसके कि इतना बड़ा फूड कॉर्पोरेशन का सिस्टम आप चलाएं, प्रोक्योरमेंट करें, फिर हजारों किलोमीटर उसको ले जाएं गेहूं और चावल को और वहां फिर से स्टोर करें, उससे बेहतर ये है कि आप सीधा कैश ट्रांसफर करिए। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार तो प्रोवाइड नहीं करती है, मिसाल के तौर पर दालें
2: जी,
3: लेकिन प्राइवेट सेक्टर खुद उन दालों को प्रोक्योर करता है उत्पादन करने वाले प्रदेशों से और उन दालों को उन राज्यों तक सप्लाई करता है जहां उसका उत्पादन नहीं होता है। तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है जिसको मुझे लगता है कि ब्रिक्स के देश डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा और ब्राजील वगैरह में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेके काफी काम हुआ है तो उसको भी हमें समझना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए।

0: सर, इस इंदौर के आज के सम्मेलन में आज पहले ही दिन भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। तो भारत और रूस, चूंकि रूस एक बड़ी शक्ति है और काफ़ी बड़ा लंबा हमारे सहयोग भी रहा है भारत और रशिया का, तो इस ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर क्या कुछ संभावनाएं देखते हैं भारत और रशिया के बीच में आने वाले समय में?
1: देखिए, हम रूस से एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो
0: जी
1: हमारे लिए रूस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सनफ्लावर ऑयल वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। तो और हम भी रूस को कई चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह, हमारा एक्सपोर्ट रूस को बढ़ सकता है।
0: जी
1: तो ये दोनों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो इस पे डिस्कशन करें, कोई किसी डील तक पहुंचे। असल में पूरी दुनिया में जो ये जियो पॉलिटिक्स है, इसने दुनिया को इस तरह से बांट रखा है, हमको इस तरह से प्रेशराइज करता रहता है अमेरिका के, आप रूस से ये नहीं खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, तेल नहीं खरीदेंगे। ये
0: जी
1: सारी चीजें बैकग्राउंड में चली गई हैं।
0: जी अगर हम खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं की बात करें, तो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में इस प्रकार के जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो कि कई सारे देशों के साथ मिल के लिए जाते हैं, इनका क्या महत्व आपको लगता है?
1: नहीं, देखिए, ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे कंट्रीज से बातचीत करने से कई चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं, कई चीज़ें हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका फराहम कर सकती हैं। उन कंट्रीज को ये मालूम हो सकता है कि हमारा देश कई चीज़ों में कितना एडवांस हो चुका है, हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से ग्रो हो रही हैं, तो प्रोसेस फूड के प्रोडक्ट हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के सम्मेलनों से ये मौका मिलता है दोनों, जो भी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कि वो अपने देश की स्ट्रेंथ को किस तरीके से औरों को समझाएं और क्या मौके हो सकते हैं कि हम अपनी सप्लाई चेन को इस तरह से बनाएं कि हमारे यहाँ जंग होने से भी वो डिस्टर्ब ना हो। अब आप देखिए कि ये जंग हो रही है जो इसराइल ने और अमेरिका ने करी है ईरान पे, इसकी वजह से पूरा जो हमारा बासमती चावल का एक्सपोर्ट है वो प्रभावित है। ईरान इतना बड़ा हमारा इम्पोर्टर था, वो प्रभावित है। तो ये सब चीजें ना हो, हम समझते हैं कि ये अहम बैठक है।
0: जी अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें, तो यहाँ की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए इस स्तर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन किस प्रकार से नए अवसर खोल सकते हैं, इस बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: देखिए, मध्य प्रदेश सोयाबीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है और वहाँ सोयाबीन की उत्पादकता 1 टन पर हेक्टेयर से भी मगर कम ही चल रही है, जबकि वो अर्जेंटीना में, ब्राजील में 3 टन पर हेक्टेयर है। तो
0: जी
1: वहाँ पर ये डिस्कशन जरूर करना चाहिए कि क्या वजह है। हालांकि वहाँ पर जो भी सोयाबीन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो
0: जी
1: हमारे जो मध्य प्रदेश के एक्सपर्ट हैं वो ब्राजील और अर्जेंटीना से बात करें कि समझें कि उनके यहाँ नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन कहाँ होता है, उसकी क्या उत्पादकता है, उसकी क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। तो कई तरह की चीजें डिस्कस हो सकती हैं इस तरह के सम्मेलनों में। मक्का का भी उत्पादन मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है,
0: जी
1: मगर वो इन देशों से काफी कम है, तो उसको भी समझने की जरूरत है कि क्या ऐसी तब्दीलियां लाई जाएं कि मक्का का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़ाया जा सके।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर। अब अगर हम इस पूरे ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस को, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही ऑर्गेनाइज की गई है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत सारी नई टेक्निक्स और इनोवेशंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेसिफिकली हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो स्वयं मध्य प्रदेश से आते हैं, और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में कई सारे इनोवेशन उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में किए हैं। तो उनके विजन को और भारत की जो कृषि का एक स्ट्रक्चर है जिसमें इनोवेशन भी बहुत कुछ हो रहा है, उन सबको किस प्रकार से आप देखते हैं?
1: नहीं, ये अच्छा है। देखिए, लगातार इनोवेशन से, साइंटिफिक डिस्कवरीज से ही कृषि आगे बढ़ती है। तो हम समझते हैं कि हमारे देश में जितना कृषि में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसको और बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि ऐसी वेराइटीज़ आएँ जो सूखे को रेजिस्ट कर सकें, बाढ़ को रेजिस्ट कर सकें। अब इस साल एल नीनो की वजह से सूखा पड़ने की संभावना है, जो वेराइटीज़ रिलीज हुई हैं पिछले 2-3 साल में वो किसानों तक पहुंचाई जाएं। तो ये काफी चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में जब कृषि मंत्री जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम सिंचाई का एरिया बढ़ाने, तो ये बहरहाल उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: जी
1: लेकिन यहाँ भारत सरकार के स्तर पर भी इस तरह की चीजें जब वो करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि हमारी उत्पादकता और बढ़ जाएगी।
2: इस चर्चा में अब हम रुख करते हैं अपने अगले एक्सपर्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं
0: हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता सैनी जी, जो कि एक कृषि अर्थशास्त्री हैं। श्वेता जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि एक कृषि अर्थशास्त्री के रूप में आप इस बात को कैसे देखती हैं कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम किसान की आर्थिक स्थिति और उसकी रोजी रोटी में किस प्रकार से सुधार आएगा?
3: थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ब्रिक्स या कोई भी एक जो ट्रेडिंग ब्लॉक होता है, जब एक हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे हम अलग अलग देशों को इकट्ठा करते हैं, तो आइडियाज का, टेक्नोलॉजीज का एक आदान प्रदान का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है। कई बार बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं देशों के बीच में, वो भी इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सॉल्व करे जाते हैं। तो अगर मैं एक किसान हूँ और इस मीटिंग का मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टाइम ऑफ द ईयर है जब ग्लोबली बहुत ज्यादा सप्लाई चेन डिसरप्टेड हैं, इस दौरान अगर हम ये मीटिंग करते हैं, ये वो ब्लॉक है जो G7 कंट्रीज, जो वर्ल्ड ओवर सबसे बड़ा ब्लॉक माना जाता है, ये जो ब्रिक्स देशों का ब्लॉक है, इसका GDP कवरेज उससे भी कहीं ज्यादा है। तो इस ब्लॉक के इकट्ठा होना एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। इंडिया इसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, वो बहुत ही बड़ा एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और मध्य प्रदेश में होल्ड करने का हमने ये पढ़ा है, मध्य प्रदेश कह रहा है कि 2026 फार्मर वेलफेयर ईयर है और ब्रिक्स मीटिंग को वहां होल्ड करने के लिए वी फील बिल्कुल सही लोकेशन भी चूज करी गई है। तो टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान, ट्रेड का फैसिलिटेशन होना, ये सारे फायदे लो हैंगिंग हैं और दिख रहे हैं अगर ये बातचीत अच्छी रही, जो बहुत उम्मीद है रहेगी एग्रीकल्चर के लेवल पे, तो फायदे आते दिख रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक है मैम। अगला सवाल है मेरा क्लाइमेट चेंज और मौसम के अनिश्चित मिजाज को लेकर, जिसके चलते खेती पर भारी आर्थिक चोट पहुंचती है। ब्रिक्स देश आर्थिक रूप से व्यावहारिक और क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी जलवायु अनुकूल फूड सिस्टम बनाने के लिए किस प्रकार से काम कर सकते हैं?
3: मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगी, जो हमारे ब्रिक्स देश हैं वो प्लस इंडिया, इंडिया पीछे नहीं है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के अंदर, चाहे सीड हो, चाहे टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन हो, इस सारे के अंदर इंडिया भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये जो आदान प्रदान होगा, ये हम सिर्फ एज इंडियंस इनसे सीखेंगे नहीं, हम भी इनको अपना एक्सपीरियंस, बल्कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स का एक्सपीरियंस है, इनको बता पाएंगे। क्योंकि रशिया जैसे कंट्री फॉर एग्जाम्पल उनका लार्ज होल्डर है, लेकिन चाइना स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, तो हमारे पास भी बहुत सक्सेस स्टोरीज है इनके साथ शेयर करने के लिए। बट ये बिल्कुल सही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करना, AI का यूज करना एडवाइजरीज बनाने के लिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज बनाना। अब इन लोगों के पास GM क्रॉप्स हैं जो शायद हमारे देश में अभी दिख नहीं रही आती हुई, तो और क्या ही हम कर सकते हैं टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्लाइमेट रेजिलियंस के टूवर्ड्स, और इवन सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ क्लाइमेट का थ्रेट नहीं है, जियोपॉलिटिकल थ्रेट भी है। तो इन दोनों नजरियों से ये ब्लॉक की मीटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है।
0: अभी आपने एक शब्द का जिक्र किया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये क्या है और क्या कुछ बड़ी भूमिका हो सकती है ब्रिक्स देशों के बीच इस कॉन्फ्रेंस को लेकर आगे आने वाले?
3: देखें, हमारे पास 145 मिलियन फार्मर्स हैं
0: जी।
3: इनका एवरेज लैंड होल्डिंग साइज 1 हेक्टेयर है। हमने एग्री स्टैक और अलग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPIs के थ्रू इन सब फार्मर्स को एक जगह एक डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रही है। इनके थ्रू हम इनको एडवाइजरीज भी भेजेंगे, इनसे हम इनपुट्स भी लेंगे। तो हमने एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली क्रिएट किया है। आज की डेट में अभी इसके फायदे दिख नहीं रहे हैं, बट आने वाले सालों में विस्तार भी आ रहा है, हमको दिखेगा। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI के समय में ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम सारे देश एक दूसरे से सीख सकते हैं कि कैसे AI को यूज करके, फॉर एग्जाम्पल सॉइल के अंदर हम किस टाइम पे पानी दें और कब ना दें। वो वैसी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया में भी करती हैं, बट वो स्केल नहीं कर रही हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। तो कैसे हम इसको इकोनोमाइज कर सकें, तो ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम। इस सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसमें महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर एक विशेष सत्र भी रखा गया है, और कृषि क्षेत्र में जेंडर इंक्लूजन की यदि हम बात करते हैं तो आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का बदलाव जरूरी है और इस समिट से क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है?
3: तो देखें, जेंडर के अंदर हमारे पास अगर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखें तो ज्यादातर जितनी लाइफ स्टॉक की एक्टिविटीज है वो विमेन ऑफ द हाउस होल्ड करती है, और हमारे यहाँ पे गाय और भैंस की जो मिल्क यील्ड है जनरली जो पहली चीज तो देसी और कमर्शियल हाइब्रिड के बीच में देसी की तादाद बहुत ज्यादा है और एवरेज एनिमल की यील्ड बहुत कम है। तो हम लोग इस ब्रिक्स मीटिंग के जरिए लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज के अंदर एंड नॉट जस्ट डेयरी के अंदर बट बी कीपिंग के अंदर, फिश एक्वाकल्चर के अंदर बहुत कुछ आदान प्रदान हम सीख सकते हैं। कैसे ही एक वैल्यू चेन बनाई जाती है ताकि हम नेट कैसा ले, अगर हमने फिश को कैच कर लिया तो उसको कैसे सॉर्टिंग करें, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे इंडियन फार्मर मात खाता है और इन देशों के बहुत लर्निंग्स हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं। तो जेंडर के लिए, एलाइड एक्टिविटीज के लिए कैसे ही सॉर्टेड सीमन हम सब्सिडाइज कर सकते हैं, इन सारे नजरियों के लिए ब्रिक्स की मीटिंग हमको लगता है और एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत यूजफुल रहती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम, और निश्चित ही ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस है अपने सारे उद्देश्यों की पूर्ति कहीं ना कहीं करती हुई दिख भी रही है, क्योंकि एक दिन हो चुका है और आज दूसरा सत्र है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है मैम आपसे, एफएओ के अनुसार जो आंकड़े हैं हमारे, दुनिया में लगभग 2 अरब से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और ब्रिक्स देश जो की दुनिया की लगभग आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 यानी जीरो हंगर को हासिल करने के लिए कृषि उत्पादकता और बाजार लिंकेज को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है?
3: तो आप एक चीज देखें, जब हमारे पास एग्रीकल्चर होता है तो जो लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, ये तीन चीजें सबसे जरूरी होती हैं। तो हमारे पास जो लैंड है वो सीमित है और जिस रेट पे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंड खराब हो रहा है या खेती से बाहर जा रहा है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपनी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव करने का एक्सेप्ट फॉर हमें क्रॉप की यील्ड्स बढ़ानी ही पड़ेगी। सो क्रॉप के अंदर न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन हमको जरूरत पड़ेगी और ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यील्ड, क्योंकि अगर हम कोई भी अपनी क्रॉप देखें, सोयाबीन देखें, डेयरी की यील्ड देखें, तो हम आधे पे लगभग बैठे हैं ग्लोबल एवरेज के। तो ये देश ऑफकोर्स जीएम के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड सिर्फ एक जरिया नहीं है, कई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है जो ये दूसरे देश देखते हैं। सो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमारे देश के लिए सेंट्रल रहेगी, लैंड एक बॉटलनेक बनेगा। तो ये जो आदान प्रदान ऑफ आइडियाज है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत यूजफुल रहता है कि कैसे हम सेम पीस ऑफ लैंड से उतनी वैल्यू जनरेट कर सकें कि हम तकरीबन 1.4-1.5 बिलियन लोगों का पेट भी भर सकें, प्लस हम दुनिया में भी दे सकें। हमने सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहा है, हमारे अपने चावल, हम अपलीस 22 से 23 मिलियन टन हर साल चावल बाहर भेजते हैं, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ चावल है। कैसे हम इन वैल्यू चेन्स को डीपन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो उगता है और थोड़े सरप्लस में हम बाहर भेजें, तो ये आदान प्रदान नॉट जस्ट न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी बट इनकम्स ऑफ फार्मर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव रहेगा।
2: इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब अगले एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि
0: हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत दास सर, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सर आपसे मेरा सवाल है कि बदलते भू राजनीतिक हालातों और सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों को देखते हुए ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार में सहयोग को बढ़ाना इस वक्त कितना जरूरी हो गया है?
4: सर्वप्रथम अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ इस वार्तालाप में सम्मिलित होने से मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आपने जो सवाल पूछा है या आज के हालात में बहुत ही प्रासंगिक है। विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई चेन में रुकावट आ रही है
0: जी,
4: खासकर अनाज के क्षेत्र में हो या फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हो। तो जो ब्रिक्स के देश हैं, यदि उन पे हम अपनी निगाह दोहराएं
0: जी,
4: तब हम यह पाएंगे कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे भारत हुआ, चीन हुआ, ब्राजील हुआ, रशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ये सब कृषि उत्पाद में काफी आगे हैं, काफी सक्षम हैं
0: जी।
4: इतना ही नहीं, इनमें से कुछ देश तो फर्टिलाइजर भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो फार्म मशीनरी है वो भी एक्सपोर्ट करते हैं
0: जी।
4: लेकिन यह भी वास्तविकता है कि ब्रिक्स देशों के आपस में जो कृषि व्यापार है
0: जी,
4: उसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं, संभावनाएं हैं, अवसर हैं, उनको पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया है
0: जी।
4: और इसमें तरह तरह के कारण है इसके लिए। एक तो यह है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स हैं या खाद्य सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है। फिर सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हुआ, उसमें भी काफी भिन्न तरीके के सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हैं। फिर जो बाजार की जानकारी

0: है यह भी पर्याप्त तरीके से उपलब्ध नहीं है। फिर
1: जी
0: जो नियामक प्रक्रिया हुआ या पद्धति हुआ, जिसे हम रेगुलेटरी प्रोसेसेस कहते हैं,
1: जी
0: ये भी काफी अलग किस्म के हैं। तो यदि इन सब मुद्दों पर आपसी सहयोग हो सके, या जो टेक्निकल टर्म्स में जिनको कहते हैं सैनिटरी फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स,
1: जी
0: यदि इनमें सहयोग हो सके, इनमें आपसी जिसको कहते हैं म्यूचुअल रिकग्निशन,
1: जी
0: अलग अलग ब्रिक्स देश एक दूसरे के एसपीएस स्टैंडर्ड्स को रिकग्नाइज करें, और फिर बाजार की जानकारी और उपलब्ध हो,
1: जी
0: तब इससे ब्रिक्स देशों के आपसी व्यापार में अवश्य बढ़ोतरी होगी। तो इस लिहाज से जो ब्रिक्स देशों की मीटिंग भारत की अध्यक्षता में चल रही है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट मैं समझता हूँ।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर भारत इस बार जो ब्रिक्स की ये बैठक चल रही है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने 2021 की जो अपनी पिछली चेयरशिप है उसके नतीजों को आगे बढ़ाते हुए कृषि व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में क्या कुछ भूमिका अभी तक निभाई है, और अब ये जो करंट मीटिंग चल रही है इसको लेकर क्या कुछ आप देखते हैं इसका भविष्य?
0: देखिए, हर एक वर्ष ये ब्रिक्स की मीटिंग होती है और कुछ कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनती है ब्रिक्स देशों में, और एक वर्ष से अगले वर्ष और उससे फिर अगले वर्ष में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होता है। और जिन मुद्दों पर सहमति हुई थी 2021 में और अभी जो मुद्दे हैं ब्रिक्स देशों के सामने में, उसमें काफी हद तक मैं समझता हूं कि समन्वय है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब 2021 की ब्रिक्स मीटिंग हुई थी भारत की अध्यक्षता में, उसमें यह तय किया गया था कि जो एक ये है ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म,
1: जी
0: उसको सुदृढ़ किया जाएगा। और इस बार की मीटिंग में यह जानकारी आ रही है कि कैसे और सुदृढ़ किया जाए। तो उसमें एक जो मुद्दा रहेगा जिसको कहते हैं नॉलेज टू एक्शन हब, मतलब सहयोग किया जाए ब्रिक्स देशों के अनुसंधान की संस्थाओं के साथ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ, फिर जो एक्सटेंशन सिस्टम्स हैं अलग अलग ब्रिक्स देशों में, फिर जो स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में, और इस टाइप के इस किस्म की सहयोग से यह उम्मीद की जा सकती है कि जो रिसर्च से जो ज्ञान आता है
1: जी
0: उसको वास्तविक तौर पर किसान अपने खेत में कैसे इस्तेमाल कर सके। तो यह चीज, इस चीज की बातचीत हुई थी 2021 में, और उसके अब कॉन्क्रीट नतीजे इस मीटिंग में आएंगे। एक और मैं उदाहरण देता हूं कि 2021 की मीटिंग में यह तय किया गया था कि ब्रिक्स देश जो इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड्स हैं,
1: जी
0: जिनको कहते हैं एसपीएस स्टैंडर्ड्स,
1: जी
0: उनको ब्रिक्स देश हार्मोनाइज, समन्वय लाने की कोशिश करेंगे आपस में,
1: जी
0: और इस बात को फिर से दोहराई जाएगी यह उम्मीद की जा सकती है, और कुछ प्रैक्टिकल तरीके के उदाहरण के द्वारा यह बतलाया जा सकता है कि किस प्रकार समन्वय लाया जा सके अलग अलग ब्रिक्स देशों के एसपीएस स्टैंडर्ड्स में और उनके सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स में। तो यह कहना उचित होगा कि 2021 में जिन मुद्दों पर सहमति हुई थी, उनमें से कुछ मुद्दों पर इस मीटिंग में और आगे ले जाया जाएगा।
1: जी सर मेरा अगला सवाल है, आपकी जो हालिया पुस्तक है जिसमें आपने गैट और WTO वार्ताओं की रणनीतियों पर चर्चा की है, ब्रिक्स देशों के बीच कृषि सब्सिडी, मार्केट एक्सेस और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए वैश्विक व्यापार मंचों पर किस प्रकार की आम सहमति बननी चाहिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं?
0: धन्यवाद मेरे पुस्तक का रेफरेंस लाने के लिए। जब हम देखते हैं कि विश्व व्यापार के निगोशिएशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो कृषि निगोशिएशंस चले थे 2003 से 2008 के बीच में, तब उन निगोशिएशंस में एक कोएलिशन बनी थी कुछ देशों की,
1: जी
0: जिसके लीडरशिप में ब्राजील, हिंदुस्तान, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सब थे।
1: जी
0: और इन लोगों ने, इन देशों ने जब हाथ मिलाया, तब विकसित देश की सब्सिडी पर काफी सहमति बन गई थी कि किस प्रकार इन सब्सिडीज को घटाया जा सकता है। लेकिन जब विकसित देशों ने पाया कि वो उनको कंसेशंस देना पड़ेगा, तब वे इन वार्ताओं से अलग हट गए।
1: जी
0: लेकिन यह जानना जरूरी है कि जब ये देश, जो कि ब्रिक्स के भी सदस्य थे और अभी भी हैं, जब उन्होंने हाथ मिलाया, जब वे एक होकर उन्होंने निगोशिएट किया, तब जो विश्व के बड़े बड़े ताकत है, यूरोपियन यूनियन हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, उनकी एक न चली। तो इसमें जो निष्कर्ष निकलता है कि यदि ब्रिक्स देश एक होकर निगोशिएट करें, तब उनकी आपसी ताकत निगोशिएटिंग टेबल पर बहुत बढ़ जाती है।
1: जी
0: और यह एकमात्र तरीका है जिससे कि वो ट्रेड निगोशिएशंस में विकसित देशों के सामने अपनी बात सुदृढ़ तरीके से रख सकते हैं और अपनी बात विकसित देशों को मना भी सकते हैं।
1: जी
0: इसीलिए यह एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स देशों का, जिसमें विश्व व्यापार के निगोशिएशंस में वो एक राय लेकर, एक आम सहमति बनाकर आगे बढ़ सकते हैं।
1: मेरा अगला सवाल है, इंदौर सम्मेलन के चार प्रमुख विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नवाचार शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर कृषि तकनीकों के आदान प्रदान में आने वाली बौद्धिक संपदा आईपीआर या फिर व्यापार संबंधी अड़चनों को ब्रिक्स देश मिलकर कैसे सुलझा सकते हैं?
0: देखिए, जो कृषि क्षेत्र का भविष्य है
1: जी
0: वो जैविक प्रौद्योगिकी से डिटरमिन होगा, जीनोमिक्स से डिटरमिन होगा, जीन एडिटिंग से डिटरमिन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिटरमिन होगा। तो इन सब चीजों के बारे में ब्रिक्स देश आपस में यदि सहमति बना सकें,
1: जी
0: तब यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और निश्चित रूप से ब्रिक्स से कॉन्फ्रेंस अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल होगी। इसी आशा के साथ आज हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। वाकई आज आप तीनों विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके ये साफ हो गया कि इंदौर का ये ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सिर्फ बैठकों का दौर नहीं, बल्कि दुनिया की आधी आबादी के पेट भरने, हमारे अन्नदाताओं की आय बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने का एक महासंकल्प है। ब्रिक्स वाटिका में लगने वाले पौधे इस बात का प्रतीक है कि हम एक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। श्री सिराज हुसैन जी, श्वेता सैनी जी और श्री अभिजीत दास जी, आप तीनों ने आज अपने बहुमूल्य समय और विचारों से हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को लाभान्वित किया, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, इंदौर की मालवी संस्कृति और मेहमान नवाजी के बीच चल रहे इस सम्मेलन से जो कुछ भी अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे खेतों और खलिहानों को समृद्ध करेगा। आज के इस विशेष चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन पर विशेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार और फिर उसके बाद अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता

0: ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening.